पे चलते हैं हम, ये राज आज तुमको बताते हैं हम, ये राज आज

0: 7.8 FM आनंद रहा आनंद लुटा।
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता।

0: उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं

0: कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: करदर्शन।

मेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपके बीच लेकर आई हूँ ज्ञान की कुछ बातें। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं जिसकी एक सुंदर सी अभिव्यक्ति है, क्षमा। हर मनुष्य की अपनी एक अभिव्यक्ति होती है जिसमें क्षमा एक मुख्य अभिव्यक्ति है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि मेरे बहुत पहले मेरे पास एक मेरी एक फ्रेंड है जो कि जैन धर्म से बिलोंग करती है। उसके कुछ मैसेज आए जिसमें उनके द्वारा पूरे साल किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या न देना और दूसरों को मतलब क्षमा याचना की गई थी। तो दरअसल जैन पंथ का एक पर्युषण पर्व मनाया गया जाता है जिसके इसके लिए 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा होता है, जिसके अंतर्गत सभी मातावलंबी जो है क्षमा की भावना रखने का प्रयास करते हैं। हम पाते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में भी अपने गुनाहों की तौबा करने की और सभी की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए शबे बारात पर्व, जिसका अर्थ होता है मुक्ति की रात, मनाया जाता है। उनका मानना है कि इस रात को साल भर का लेखा जोखा अल्लाह के लिए पेश किया जाता है। लोग रात भर जाकर इबादत करते हैं। और ईसा मसीह जी ने भी उनका भी कहा है कि वह बाइबल में इस प्रकार से उनका मिलता है कि जिन लोगों ने आप तुम क्षमा करोगे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, मतलब जिन लोगों के पाप को आप क्षमा करेंगे तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिन लोगों के पाप तुम क्षमा नहीं करोगे तो वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब ईसा मसीह जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यानी कि हर धर्म में, हर पंथ में क्षमा की बात करता ही है। हर धर्म क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कहा तो ये भी जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। नहीं, परंतु हम समझते हैं कि बड़ों को ही नहीं छोटों को भी क्षमा चाहिए।

क्योंकि जो घटनाएं अब तक पश्चिमी देशों में से सुनने में आती थी वैसी ही अब भारत वर्ष में भी सुनाई देने लगी है। एक नगर में एक 9 वर्षीय स्कूली छात्रा द्वारा अपनी शिक्षिका की चाकू से हत्या कर दी गई। इसमें तो मतलब इससे तो यही पता चलता है ना कि क्षमा करने और क्षमा लेने का महत्व छोटे बड़े सभी के लिए बराबर का है। क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए विशाल हृदय चाहिए, सभ्य और विराट हृदय। संस्कृति की एक सुंदर अभिव्यक्ति है क्षमा। क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए भी विशाल हृदय चाहिए। सामान्य शिष्टाचार के कारण या बिना दिल की गहराई के किसी से छोटी मोटी भूल या गलती होने पर क्षमा मांग लेना या कर देना या खेद प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रास्ते चलते कभी स्पर्श हो तो या किसी की बात समझ न आने पर अन्य दैहिक कार्य व्यवहार में छोटी गलती होने पर सॉरी कहना अच्छे संस्कार है। परंतु होता क्या है जब किसी से जानबूझकर अपमानित करने के संकल्प से काम क्रोध लोभ अहंकार या विकारवश शारीरिक दुर्व्यवहार किया या हृदय भेदी शब्द बाणों की बौछार की तब क्या हम दिल के स्नेह की गहराई से क्षमा कर पाते हैं क्या? गलती फिर न होगी ऐसा स्वीकार करने के बाद भी गलती करने पर क्या स्नेह का सागर बन स्नेह की रत्नों का भेद कर दे सकते हैं क्या? हाँ, वृक्ष की तरह पत्थर स्वीकार करके फल दे सकते हैं क्या? यदि इसका उत्तर हाँ है तो सचमुच हम क्षमा और स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा शिव की सच्ची देवी संतान है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए।

सुस्वागत है आपका ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आगे की चर्चा हम जारी रखते हुए एक सुंदर अभिव्यक्ति क्षमा की ओर। सक्षम होते हुए भी क्षमादान महानता है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गले हो। अर्थात क्षमा उसे ही शोभा देती है जिसके पास विष हो। जहाँ हम सक्षम नहीं थे वहाँ मजबूरी वश दिल पर पत्थर रखकर किसी को क्षमा कर देना या क्षमा मांग लेना जारी रखते हुए एक सुंदर अभिव्यक्ति क्षमा की ओर। सक्षम होते हुए भी क्षमादान महानता है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गले हो। अर्थात क्षमा उसे ही शोभा देती है जिसके पास विष हो। जहाँ हम सक्षम नहीं थे वहाँ मजबूरी वश दिल पर पत्थर रखकर किसी को क्षमा कर देना या क्षमा मांग लेना यह भी अच्छी बात है क्या? परंतु सक्षम होते हुए भी किसी के दुर्व्यवहार व्यवहार पर भी उसे ना समझ समझ कर क्षमा दान देना आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भावनाएं स्वतः ही दिल की गहराई को से जागृत हो जाना वास्तव में महानता है। ऐसे सच्चे संत वास्तव में उस चंदन की लकड़ी की तरह है जो सर्वगुणों से सुगंधित है, जिस पर अनेक विषधर लिपटे रहने पर भी वह सुगंध देने के गुणों का त्याग नहीं करती। एक है समदर्शी समव्यवहारी और एक है समदृष्टा ही क्षमाशील। जितना दुरूह है काम की कालीमा के वश दुशासन कीचक या भस्मासुर वन नारी का अपमान करने पर क्षमा कर पाना, धरती माँ की तरह गड्ढा करने वाले को भी धारिणी बनकर रत्न फल प्रदान करना कितना विराट हृदय चाहिए। आज गाली देने वाले को गले लगाना तो दूर की बात है, जिन्हें हम स्वजन मानते हैं उनके प्रति एक शब्द भी किसी अन्य द्वारा कहे जाने पर अधिकतर हम शुभ भावना के पुष्प छिपा कर रख लेते हैं। कई बार बात तक करना पसंद नहीं करते, वह जीवन पर्यंत वह क्रम चलता है। तो यह तो क्रम चलता रहता है, मेरा कोई अपना नहीं, कोई पराया ही नहीं, सभी के लिए समदर्शी समव्यवहारी समदृष्टा भाव वाला ही किसी को भी किसी भी गलती पर क्षमा कर सकता है। एक होता है दया भाव, अपकारी पर भी उपकार करने की भावना दया भाव से ही जागृत होती है, होगी ना? अभी नादान है, ना समझ है, भले ही बुद्धिमान है लेकिन कहते हैं किसी अवगुण की वशीभूत है। ऐसे स्मरण मात्र से गलती करने वाले को क्षमा करने के लिए का भी भाव आ जाते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक साधु पुराने से फटे हुए कपड़े पहनकर राग शरीर में लपेटे एक गांव से गुजर रहा था। गांव के शैतान बच्चों ने उस पर रेत कंकड़ फेंकने शुरू कर दिए, परंतु साधु ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और चलता रहा। तो आगे एक व्यक्ति ने भी एक पत्थर बच्चों की तरह साधु के ऊपर फेंक दिया जो सिर में जाकर लगा। साधु रोने लगा। एक समझदार व्यक्ति ने पूछा कि जब बच्चे धूल कंकड़ मार रहे थे तब आपने कुछ भी नहीं कहा, जब आप अब आप रो रहे हो तो क्या कहते हैं? साधु ने कहा कि बच्चे तो नादान थे, ना समझ थे, परंतु यह तो बड़ा था, समझदार था। हम समझते हैं कि ऐसे स्थिति में समझदार और उम्र में बड़े में को नादान समझकर क्षमा कर देने में

आत्मिक संतुष्टि होती है। एक होता है विश्व बंधुत्व के भाव, एक होता है विश्व बंधुत्व के भाव मतलब किसी के द्वारा क्रोध में आकर दुर्व्यवहार या शारीरिक उत्पीड़न किए जाने पर क्षमा केवल वही कर सकते हैं जो समस्त संसार को अपना समझते हैं, हर कदम पर शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने ही माता पिता बंधु बांधव द्वारा कुवचन कहे जाने पर जिस प्रकार सहन कर लिया जाता है उसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भाव जागृत होने पर क्षमा स्वतः ही कर दिया जाता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर आकर मिलते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। क्षमा एक सुंदर अभिव्यक्ति, सभी के प्रति सम्मान भाव, सम्मान भाव या समान भाव होने पर ही क्या होता है, अवगुण चित्त पर नहीं आएगा, यानी कि और क्षमा कर सकेंगे। मतलब परम पिता परमात्मा शिव के अव्यक्त महावाक्यों के अनुसार सम्मान देने वाला सबके दिल में मान्य स्वतः बन जाता है। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को सम्मान देना देना नहीं, लेना है। ब्रह्मा बाबा ने आदि देव होते हुए भी, ब्रह्मा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सभी बच्चों को सदा सम्मान दिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह के बीज होने। विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी आत्मा भी हम तभी बन सकते हैं, तभी हम इसका अनुभव करते हैं जब हम आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। सम्मान देने वाले बच्चे ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है, क्योंकि जिनको सम्मान देता है उन द्वारा दिलों की क्या होती है, दुआएं मिलती है जो सहज स्वमान याद दिलाती है। और अगर सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं तो सम्मानदाता बनो। हाँ, कोई कैसा भी है इसे सम्मान देना है, ऐसे नहीं कोई सम्मान दे तो मैं दूं, नहीं, यह तो बिजनेस हो गया ना, दाता नहीं हुआ। सम्मान दो तो मन में संकल्प रहता है, हाँ, यह हो, यह बदले में, यह ऐसा करे, वह करने लगे लग जाए। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन करना। एक होता है, एक है क्षमा करना, दूसरा है क्षमा मांग लेना। तो इसमें क्या होता, केवल क्षमा करना ही नहीं लेकिन गलती होने पर क्षमा मांग लेने के लिए देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। हाँ, और हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हम तो बड़े हैं, यह कोई हमारा बॉस है क्या, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचने वाले लोग गलत होने पर भी क्षमा मांगना तो दूर, झुकना भी पसंद नहीं करेंगे। केवल मुख द्वारा क्षमा मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु हृदय से अपनी कमी को स्वीकार कर क्षमा मांग लेने वाले ही अनेक प्रकार के टकराव और तनाव से सहज मुक्ति मिल जाती है उन्हें। गलती स्वीकार करने पर गलतियों को कई बार क्या होता है, माफ भी हो जाती है। कितनी गलतियां जो होती है वो माफ भी हो जाती है उसकी, जो दिल से अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। और जिन्हें पश्चाताप होता है ऐसे क्या होता है, सृह हृदय माफी मांगने में संकोच करते हैं, नहीं करते हैं। और लोग उन्हें क्या करते हैं, उन्हें माफ भी कर देते हैं।

कभी कभी हम गलतियों पर पर्दा डालने के लिए क्या करते हैं, झूठ छल कपट का सहारा लेते हैं। बाद में उस गलती को सार्वजनिक हो जाने पर हम क्या करते हैं, कोई भी माफ करने पर संकोच करता है। लोग भले ही स्वयं कैसे भी हों, हाँ, परंतु दूसरों से सच्चाई की अपेक्षा अवश्य रहती है। नारियों में भक्त शिरोमणि मीरा होया पश्चिमी विद्वान सुकरात दोनों ने ही जहर के, क्या कहते हैं, जहर के प्याले को खुशी से पी लिया था और क्षमा कर दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक आदिदेव ब्रह्मा बाबा ने समाज में इतनी प्रतिष्ठा उनकी होते हुए भी इस ज्ञान यज्ञ का विरोध करने वालों, स्वयं को गाली देने वालों, लाखों भवन में आग लगाने वालों को, कलंकित करने वालों को भी क्या किया, क्षमा किया। लोगों की एक धारणा यह भी है कि भारत के गुलामी राजा पुरु और पृथ्वीराज चौहान द्वारा आक्रमणकारियों के लिए नरमी और क्षमा के कारण हुई, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी को क्षमा करने से नहीं, वरन ऐसा होता है आपसी वैमनस्य, और एक होता है कि के कारण लोगों के द्वारा उनके साथ किए गए एक विश्वासघात के कारण ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं क्षमा एक सुंदर अभिव्यक्ति की ओर। दिल को मिलता है बड़ा सुकून, दिल को मिलता है सुकून किस चीज से? क्षमा मांग लेने से और फिर क्षमा प्राप्त हो जाने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जीवन का मन पुष्प समान खिल उठता है, मन मयूर नाच उठता है और शारीरिक बीमारियों पर भी नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति साधु के पास पहुंचा और कहा कि वह बहुत दुखी है,

साधु जानता था कि इसने बहुत सारे अपराध किए। उसका हाथ देखने के बहाने हाँ कहते हैं उन्होंने बताया कि आपकी आयु अब केवल एक पक्ष यानी कि 15 दिन ही शेष रह गए हैं। एक सप्ताह बाद आ जाना, हाँ तुम्हें सुख का मार्ग बता दूंगा। वह व्यक्ति चला गया, परंतु जाने के बाद उसने यह सोचकर कि अब तो जाना ही है तो क्यों ना जिससे भी धन का हिसाब है वह चुका दिया जाए, जिस जिसके साथ अपराध हुए हैं उनसे माफी मांग ली जाए। उसने यही किया। सातवें दिन खुशी खुशी पहुंचा और साधु को बताया कि जिस जिससे के साथ मैंने गलत किया था या उनसे मैं माफी मांग ली है और जिनसे भी मेरा हिसाब किताब था हाँ वो सारे हम चुका दिए हैं और अब मैं पूर्णतः क्या हूँ, निश्चिंत हूँ और खुश हूँ। मौत चाहे अब आ जाए, कोई चिंता नहीं। साधु ने कहा कि अब आप निश्चिंत होकर जियो, यही सुख का मंत्र है। तुम्हारी आयु अभी बहुत शेष है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने मन में अगर किसी के प्रति कुछ गलत भाव रखते भी हैं और हमें पता रहता कि हमने ये गलतियां की, तो उसकी चुप्त हो जाने से हम खुद ब खुद क्या होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंत में यही निवेदन है कि यदि हाँ अवश्य भावी महाभारत को किसी के क्षमा मांगने और क्षमा करने मात्र से रोका जा सकता है तो हे आत्मन क्या करना है। अभी तक जो तुमने लोगों के दंश सहे हैं उन्हें भुलाकर सभी को अपना समझकर स्वयं को और सृष्टि की जितनी भी जीवात्माओं को थोड़े दिनों की हाँ थोड़े दिनों का मेहमान मानकर क्षमा करते चले और जाने अनजाने में भी किसी के प्रति हाँ कुछ स्वयं से गलत हुआ है उसे हृदय से स्वीकार कर माफी क्या करना है माफी लेते चले तो भाव समय द्वारा भी भर जाएंगे और वे हमारी शुभ भावना क्या होगा शुभ भावना रूपी मरहम से तत्काल ही भर जाएंगे। हाँ किसी ने कितना अच्छा कहा है कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी आसान कर ली, किसी को माफ किया, किसी से माफी मांग ली। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। हाँ तो तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसके दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे सेल्फ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के कई कोर्सेस हम करते आ रहे हैं और अगर करियर में है तो बहुत सी बातें जहां स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, एंगर मैनेजमेंट की, लेकिन अब तक हम ये समझ नहीं पाए थे कि सेल्फ को भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं सेल्फ को ही नहीं पहचानते थे। खुद की पहचान के साथ साथ जहां मैनेज करने की बात आई, वहां पहली बात जो आई थी वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपने प्रति सबसे पहले जिम्मेवार हूं और उसके बाद बाकी जिम्मेवारियां मेरे सामने आती हैं। अगर पिछली कड़ी को एक बार थोड़ा सा और देखें तो हमने बात की थी कि अगर मैं अपनी खुशी और अपने दुख की जिम्मेवार हूं तो फिर मैं किसी और की खुशी या दुख की जिम्मेवार नहीं हो सकती। आज थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि मेरे साथ, मैं जो क्रिएट कर रहा हूं, मैं जो भी इमोशन क्रिएट करती हूं, जो भी थॉट फीलिंग क्रिएट करती हूं, उसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। तो अगर मैं खुश हूं अपनी वजह से हूं, मैंने क्रिएट किया, और अगर मैं दुखी हूं तब भी मैंने क्रिएट किया है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जहां हमने ये बात की थी, क्योंकि उसका रिस्पांस भी आया है, बहुत से लोगों के मन में ये बात उठ रही है कि जब दूसरा दुखी होता है और वो वजह मैं बन रहा होता हूं कि मेरी वजह से हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई या कुछ हुआ, तो वो दुखी और वो बार बार मुझे कह रहा है आई एम सैड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूं, तो वो मुझे कैसे इफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ अगर मैं या कोई और किसी और के दुख के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता, तो फिर तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी तरह से करता जाऊं। तो ये दो बातों को थोड़ा हम और चाहेंगे कि अगर हम खुले।
1: पहली बात तो अपने को समझ लें। जब ये फिट एकदम क्लियर हो जाता है कि आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर, एवरीवन इज द क्रिएटर ना। इफ आई एम द क्रिएटर, यू आर योर क्रिएटर, तो हर एक अपना अपना क्रिएटर हो गया ना। हम संकल्प हमारी रचना है। जब सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि मैं अपने संकल्पों का रचयिता हूं, सो आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन आई एम द क्रिएटर ना। यस, सिचुएशन ट्रिगर तो होती ही है, डेफिनेटली है कि जब तक परिस्थिति आती नहीं, इट्स लाइक दिस स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स। तो स्टिम्यूलस तो आएगा, वो व्यक्ति है, परिस्थिति है, वट एवर, स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स, बिटवीन द टू फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स, ये बॉक्स तो आ रहा है ना बीच में। और इसीलिए देखा जाता है एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग हैं लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। एक ही ट्रेजेडी में अलग अलग लोग हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कपल है जिनसे मिलना हुआ कुछ समय पहले। उनके 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा, 2-year-old child died. Stimulus? The death of a child, young baby. बड़ी बात है ना, इससे बड़ी बात कहेंगे तो क्या हो सकती किसी के लिए। लेकिन अब दो लोग हैं, दोनों के सामने सेम स्टिमुलस। अब दोनों कौन है, पेरेंट्स है, तो दोनों के लिए स्टिमुलस जो आया है वो इक्वली हैवी है, इक्वली चैलेंजिंग है। दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अगर स्टिम्यूलस रिस्पॉन्सिबल है तो दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें हमने देखा कि एक जो वाइफ है उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए लॉस बड़ा नहीं है या उसको कुछ लग नहीं रहा कि मेरा बच्चा चला गया। ऑफकोर्स द लॉस इज देयर, लेकिन फिर सिचुएशन को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आप फिर आगे

0: मूव ऑन करेंगे. तो एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड मूव्ड ऑन, यू नो, चाहे वो अपने जॉब में ऑक्यूपाइड है या लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे साथ हुआ है. द फादर ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे अब खुश रहने का कोई हक नहीं है. दैट इज द रिस्पॉन्स. सेम स्टिमुलस, दो रिस्पॉन्स. शी सेज आई हैव अंडरस्टूड, नॉट इन माई कंट्रोल, आई हैव टू मूव अहेड. ही सेज I will never be happy. I have no right to be happy. Same situation, different response. और simple level पर ये तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है. आप एक ऑफिस में देख लो, हम सपोज 10 लोगों की एक टीम है, एक ही बॉस है. एक बॉस ने आज एक एक करके सबको बुलाया, सपोज हम सब ने एक गलती कर ली, एक एक को बुलाया, डांट दिया, एक ही रिस्पॉन्स होगा सबका. स्टिम्यूलस एक ही है, परिस्थिति एक ही है, रिस्पॉन्स हर एक का अलग अलग. तो जब हम हर सीन में ये देखते हैं कि सेम सिचुएशन अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करेगा?
1: हम खुद लोग.
0: जितना भी हम दर्द में जाएंगे, हम सब उस परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हैं. लेट्स से बॉस से डांट पड़ी, तो हम अपने अपनी सीट पर चले गए. किसी को 5 मिनट लगा ठीक होने में, किसी को 5 घंटे लग गए, किसी को तो 5 दिन लग जाते हैं ठीक होने में कि क्यों मुझे डांटा. अलग अलग रिस्पॉन्स, राइट? लेकिन जो 5 मिनट भी अपसेट है या 5 दिन भी अपसेट है, दोनों ब्लेम किसको करते हैं?
1: बॉस.
0: अब दर्द का लेवल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों ब्लेम किसको कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ये सोच रहे हैं कि मेरे दर्द का कारण there. Now here I have to understand, I am the creator, not the boss. The boss is the stimulus which has come from outside. So aap koi bhi paristhiti mein dekh lo.
1: Acha, to matlab baat ye aayi ki kis boss ne daanta, suppose ye example lete hain, boss ne daanta, jaiz matlab ye baat ye kahi jati hai ki it will hit. Okay, jo
0: boss is not going to hit.
1: No, whatever he is going to say comes to me. And of course I will not like, this is the first response, this is my response also, but how do I shield it then? See, if his reaction, matlab whatever he has reacted, main usse affect na hu, aise kaise ho sakta hai?
0: Nahi, ye baat nahi hai. Aapne jo kehna hai wo aapne kiya. Let's say you're my boss just now. Okay, so aapko jo kehna hai aap kahenge. Pehli baat, aap us basis par kahenge jo aapki state of mind hai abhi. Kabhi kabhi galti to itni hoti hai, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं होगा, सो योर्स इज गोइंग टू रिएक्ट. बट मुझे पहली बात ये समझना होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो आपकी क्रिएशन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जो इतना जोर जोर से शोर मचा दिया, दैट्स बिकॉज आप दर्द में हैं, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, नॉट बिकॉज यू हेट मी. द फर्स्ट थिंग वाई आई गो इन टू पेन इज इवन इन अ बॉस कोलीग, इवन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. अब सपोज हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस से आए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस, आके वाइफ को डांट दिया, जोर से कुछ कह दिया, तो वाइफ इफ शी अंडरस्टैंड्स कि ही रिएक्टेड लाइक दिस बिकॉज ऑफ हिज ओन पेन, बिकॉज वो दर्द में है. शोर कौन मचाता?
1: जो दर्द में
0: होता है. लेकिन बुरा उसको इस तरह लगता है, मुझे ऐसा कहा, मतलब वो मुझसे नाराज है, मतलब वो मुझसे नफरत करते हैं, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते, कंक्लूजन हो गया. तो आई गो इन टू पेन. Once I go into pain, I can't understand that you are in pain.
1: अच्छा, और ये जो सारे thoughts थे मैंने create किए थे.
0: Of course.
1: उन्होंने जो कुछ किया वो तो किया है क्या? उनके करने से, उनके creation से मैंने create किया.
0: तो फिर हम वो ही कह रहे हैं ना बार बार. Situation, see, the husband is there, the boss is there, whatever, somebody's death is there. But उसके सामने एक एक thought जो create किया वो किसने create किया?
1: हाँ, वो मैंने. But अब वो situation ही ऐसी है, तो थॉट में दूसरा कैसे क्रिएट?
0: मैं ये थॉट क्रिएट कह रहे हैं ना कि वही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट्स क्रिएट करते हैं.
1: तो मैं बेस्ट रिस्पॉन्ड करूं.
0: दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सिचुएशंस अलग अलग आनी है. लाइफ इज दैट, अलग अलग सीन्स आने हैं. हर परिस्थिति में व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर मी?
1: And if this starts straight to be blaming you, you are responsible.
0: हाँ, क्योंकि अगर मैं दर्द में चली गई, आपने मुझे गुस्सा किया, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई चॉइस है, मैंने दर्द क्रिएट किया, तो मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊंगी? तो आपको जिम्मेवार ठहराऊंगी, तो आपसे नफरत करूंगी. पर चेंज किसको होना चाहिए?
1: मुझे.
0: दैट्स हाउ द होल विशेष साइकिल अगेन गोज.

0: And again, I keep talking about you have to change. And don't bother that I have to change. Because I thought, main jo dard create kiya, uska responsible kaun tha?
1: Wo vyakti tha.
0: इसीलिए हमने कहा बार बार भी ये सेंटेंस अगर ले लो ना दैट यू आर द क्रिएटर यू आर द क्रिएटर
1: उन्होंने तो दे डिडंट बिहेव ही डिडंट बिहेव राइटली विद मी
0: या बट डिड आई रिस्पॉन्ड राइटली
1: हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड ओके
0: यस अग्रीड वी आर नॉट सेइंग कि किसी का बहुत जोर जोर से चिल्लाना या बहुत वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए लेकिन ठीक है उन्होंने जो किया सो किया अब मैंने क्या करना है अटेंशन जब इस तरफ आएगी तभी तो
1: तो उस तरफ तो आती नहीं है ये
0: तो एंड फिर मैंने सोचा कि मैंने जो थॉट्स क्रिएट किए वो सारे इसलिए क्रिएट हो रहे थे क्योंकि उन्होंने गुस्सा किया
1: बिकॉज स्टिमुलेट कहीं हुआ ओह गॉड यस
0: तो फिर किसको चेंज होना चाहिए इट्स वेरी डीप रूटेड क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैं क्रिएट कर रही हूँ ये मैं क्रिएट कर रही हूँ इफ आई कैन से उन्होंने ऐसा क्यों किया उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कैन आई ऑल्सो क्रिएट अ थॉट वो इतने दर्द में है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो मेरे से नाराज नहीं है एक्चुअली वो कोई और पेन में है लेट मी फाइंड आउट दैट इट कुड बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स इट कुड बी अ रिस्पॉन्स कि हाँ वो दर्द में है लेकिन मैं अपना ध्यान रख लूं ताकि अपना ध्यान रख के मैं उनका भी ध्यान रख सकती हूँ डिफरेंट रिस्पॉन्स
1: बट ही इज शाउटिंग एट मी यू नो ही इज अक्यूजिंग मी ही इज सेइंग सो मेनी बैड थिंग्स टू मी ही इज टेलिंग मी
0: ओनली थ्रोइंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन एंड हिज पेन एंड आई consume that pain.
1: So I have to, you know, protect myself. See,
0: I consume and create. And we start with even watching the television, watching a movie. आप देखो ये तो फिर भी हमारे रिश्तेदार है ना वॉट अबाउट वो जो एक्टर्स जो टीवी पर है या जो आप मूवी में है वहाँ वो गुस्सा करते हैं बुरा हमें लगता है यहाँ बैठकर वहाँ कोई शरीर छोड़ता है रोते हम है यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं हाउ मेनी पीपल सिट एंड क्राई विद द मूवी
1: आई डू दैट
0: यू डू दैट सो सी दैट्स फ्रॉम वेयर द हैबिट इज गोइंग वेरी डीप कि कैसे हमारी इमोशंस जो हैं वो हम दर्द को कैसे कंज्यूम कर लेते हैं कि वो दर्द में है लेकिन उन्होंने हमें वो दर्द नहीं दिया वो उनका अपना दर्द था जो उन्होंने बाहर निकाला जब मूवी भी है चलो अब तो सामने तो कोई नहीं ना वो तो स्क्रीन के ऊपर है यहाँ हम क्यों रो रहे हैं ये किसने क्रिएट किया वो एक्टर ने थोड़ी क्रिएट किया आके
1: वो तो हमें आके कुछ भी नहीं कह रहा
0: राइट अब उसी सिनेमा थिएटर के अंदर सब लोग तो नहीं रो रहे ना सो एवरीवन इज क्रिएटिंग देयर ओन थॉट्स इसको आप जितना हर सीन में देखते जाओगे ना यू विल एंजॉय द डे यू विल एंजॉय क्योंकि आप देखते जाओगे आई एम क्रिएटिंग
1: मैंने क्या क्रिएट किया
0: इट्स वेरी नाइस एंड दिस इज सेल्फ अवेयरनेस इट डजंट मीन कि हम फर्स्ट डे में परफेक्ट हो जाएंगे But then the journey begins. कि ये जो अभी अभी मैंने jealousy का thought create किया ये किसने create किया मैंने create किया नहीं ये उसकी वजह से ना मैंने create किया मैंने create किया ये अभी जो
1: hurt responsibility मेरी थी oh yes
0: ये अभी अभी जो hurt हुआ कौन hurt हुआ मैं hurt हुई किसने create किया लेकिन उन्होंने बोला हाँ उन्होंने बोला hurt किसने create किया this is talking to myself. एंड जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे हमारा रिश्ता अपने आप से
1: हाँ वेरी स्ट्रांग हो जाएगा
0: आई स्टार्ट लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ इट डजंट मीन दैट डे वन आई विल बिकम पेन फ्री नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन
1: नो नो यस आई कंटिन्यू टू रिएक्ट
0: बट द जर्नी हैज बिकम द जर्नी हैज बिकम कि हम अपने साथ अपने ऊपर देखना शुरू कर देते हैं अभी भी हर्ट होंगे कभी कभी अभी भी गुस्सा आएगा लेकिन ब्लेम बंद हो जाएगा उसकी वजह से ना मेरा रिस्पॉन्स डू आई हैव अ चॉइस येस वेन डू आई वॉन्ट टू चेंज नाउ कम ऑन यू नो सो यू स्टार्ट वर्किंग आप अपने कोच बन जाते हैं जैसे गिरा कौन गिरा मैं गिरी किसकी वजह से गिरी अपनी वजह से उठो फिर चलो मूव दिस सो कॉन्स्टेंटली फिर आपका अटेंशन किस पर होने लग जाता है
1: अपने
0: ये मेडिटेशन है ना दिस इज वॉट इट इज अभी तो अपने लिए टाइम नहीं था ना क्योंकि सारा ध्यान तो इसको इसको इसको सबको चेंज होना था तो इतने लोगों की तरफ ध्यान था तो अपने ऊपर नंबर ही नहीं आया मेरा अपने ऊपर ध्यान रखने का अब मुझे जब समझ में आया कि और कोई नहीं क्रिएट कर रहा है
1: ओ वेरी गुड यू नो तो सिचुएशन को लेकर जो टेंशन होती है जो इनसिक्योरिटी है वो सब आई कैन स्टॉप डूइंग दैट एक्चुअली
0: ऑफकोर्स
1: यू नो बिकॉज आई एम क्रिएटिंग इट आई एम सो इनसिक्योर आई एम फीलिंग सो टेंस आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट So it's like I can do it, I can stop it now, right now. Because I am creating it.
0: Every time. This is very deep. Isko practice karna, ye ek bahut badi, jisko kahe na liberation ho jati hai. blame culture, say ki dusre zimmedar hain, dusre, I can never be happy then. I can never be happy. Now when I start looking at myself, I am creating. Hoga dard kabhi kabhi, lekin theek hone mein kitna time lagega?
1: Ah, because the moment this thought, but it has to rub in actually.
0: Isliye, every day. Mm-hmm. Every day, I am the creator. Some people say, lekin aapko nahi pata wo kya kar rahe hain. Yes, wo kar rahe hain. Lekin phir bhi response. Kyunki apne jeevan ka zimmedar main hoon. Wo apne jeevan ke zimmedar hain. To wo jo create kar rahe hain, wo uske liye responsible hai. Aur main jo create karunga,
1: मैं अपने रिस्पॉन्स लेकिन अगर वो गलत करते हैं, सपोज हमारे बच्चा है या कोई भी है, वो गलत करता जा रहा है, तो एटलीस्ट बट आई डोंट हैव टू टेक क्रिएट द पेन, बट आई हैव टू क्रिएट दिस थॉट दैट दिस इज रॉन्ग, एक्शन इज रॉन्ग.
0: आई कैन टेल हिम व्हाट इज राइट टू डू, बट दैट डजंट मीन आई हैव टू गो इन पेन. यू नो, फॉर एग्जाम्पल, बच्चा उल्टा जवाब दे दिया, थोड़ा सा रूडली बात कर दिया. I even just recently at a program, we had 2 days program. So ek din humne ye topic discuss kiya ki aaj sara din stable rehna hai, or next day we were going to ask ki what is the result. So ek young mother, she came and she said ki main jaise hi program ke baad ghar pahunchi, to mere ko lagta hai 3 ya 4 saal ki daughter uski, to wo mere sath bahut gussa thi ki main usko program maine leke gayi, main ghar chhod gayi thi usko itne ghante ke liye. To main jaise hi pahunchi, wo mujhse bahut rudely baat karne lagi, kyunki aajkal chote chote bacche bhi. To she said wo itna rudely baat kiya. She said maine ek baar usse pyar se baat kiya ki bacche main tumko sham ko le jaungi. Usne fir se kiya. She said kyunki mujhe yaad tha ki aaj mujhe disturb nahi hona hai. She said usne 3 baar aisa kiya aur maine 3 baar apne upar dhyan rakha ki mujhe disturb nahi hona hai. And she said the magic was wo theek ho gayi. She's saying that was like a realization. Miraculous. Hit me. She said, kyunki pehle agar wo mere sath is tarah se rudely baat karti, I would have shouted back at her. Ki ye koi baat karne ka tarika nahi hai. Ya kabhi to zor se usko ek main lagai deti us time. She's saying, wo theek ho gayi. She said, hamare jeevan ka lakshya kya hai? Bachcho ko theek karna. Lekin hum theek kaise karte hain? जैसे एक बच्चा रूडली बात कर रहा है, हम उससे और रूडली बात करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. हम उसको डांट कर बताते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? रूडली बोलकर उसको बोल रहे हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्स. अब वो बच्चा रूडली बात कर रहा है, वो राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, इज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल. वो स्टिम्युलस है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्स.
1: इन फैक्ट सो राइटली सेड दैट हम रूडली बोल के उनको बोलते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए.
0: वो गुस्सा कर रहे हैं, हम गुस्सा करके उनको बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्रोल जाकर उनको बोलते हैं डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? लेकिन हम उस टाइम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं वो स्टिम्युलस ऐसा है कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब तो होना ही चाहिए. अगर मेरा बच्चा रूडली बात करे तो मैं क्या डिस्टर्ब नहीं हूं? सो मेरे डिस्टर्बेंस का कारण कौन? आप. द डे दिस थिंग स्टार्ट सिंकिंग इन कि आसपास मेरे चाहे कोई कुछ भी करे, फिर भी रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, तो सारा ध्यान किस पर आ जाएगा?
1: अपने ऊपर.
0: माई रिस्पॉन्स. एंड दैट फॉर दैट लेडी दैट डे इट वॉज लाइक she said this is the way to bring up children, I have understood, and it was her practical experience. It was not theory. She said is tarah se to bada karna hai inko, hame sirf apna dhyan rakhna hai, wo to apne aap theek ho gayi. She saying aur yahi main agar usko bol ke theek karne ki koshish karte to dhyan kis par rakhna tha? Responsibility bacche ki nahi leni hai. Humne kya socha? Bacche ko theek karna hamari responsibility hai, apne ko theek rakhna, dusron ko sudharna hamari zimmedari ho chuki hai. Without taking care of myself,
1: my response. Oh, very true. That is what stability is all about. Yeah, एक और बात जो सामने आती है कि जहां हमने ये कहा था कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ उसके क्रिएटर मैं हूँ, वैसे ही दूसरा जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके क्रिएटर मैं नहीं हूँ. अगर वो पेन में है तो चाहे वो बार बार ये कह रहा है कि आपके कारण, आपने ऐसे किया था, आप लेट आए हैं या आप कहीं और थे या आप जो भी थे, आपके कारण मुझे दर्द हो रहा है, तो फिर तो मैं अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं.
0: या दैट्स ट्रू ना. उसको हमें राइट पर्सपेक्टिव में लेना है. लेट्स से कि मेरा एक पर्टिकुलर व्यवहार करने का तरीका आपको पसंद नहीं, लेकिन दर्द आप क्रिएट करते हैं. आई एम गोइंग टू रिमेम्बर दैट. अब आप अगर मुझे बार बार ये बोलने वाले हैं कि आपके दर्द का कारण मैं हूं, I'm not taking it. Mm-hmm.

0: मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपके दर्द का कारण आप हो, मैं स्टिम्युलस हूँ. डेफिनेटली मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर वो आपके लिए स्टिम्युलस हैं, लेकिन रिस्पॉन्स आप क्रिएट कर रहे हो. अब आई हैव टू चेक माई सेल्फ. जैसे आपको अपने को चेक करना है, मुझे अपने को चेक करना है, लेकिन वो मैं तब कर पाऊंगी जब मैं स्टेबल हूँ. अगर मैं गिल्ट में चली गई तो फिर मैं भी क्या रिस्पॉन्स क्रिएट किया?
1: पेन.
0: पेन का. अब पेन में जाने के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खत्म हो गई. एंड देन आई विल नॉट लाइक यू, यू विल नॉट लाइक मी, आई विल नॉट लाइक यू, एंड देन वी स्टार्ट थ्रोइंग दैट नेगेटिव एनर्जी एट ईच अदर. तो अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही है एंड यू आर वेरी वोकल अबाउट इट, आप मुझे सीधा बताते हैं कि आपकी वजह से ये सब, तो मैं सिर्फ आपकी बात सुन सकती हूँ. नॉट गेट डिस्टर्ब्ड. ध्यान सिर्फ ये रखो कि सपोज मैंने कुछ आपको सेंटेंस कहा, आपने दर्द क्रिएट किया, उसके बाद आपने कहा कि मैं उसकी जिम्मेवार हूँ, तो अब ये मेरी परिस्थिति हो गई. नाउ दिस इज माय स्टिम्युलस. यू आर
1: दर्द फेंका ना आपको,
0: नाउ दिस इज माय स्टिम्युलस. अब इस स्टिम्युलस में मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है? पहली चीज मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे दर्द में नहीं चले जाना है.
1: ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है.
0: दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो मैं तब निभा पाऊंगी व्हेन आई अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट गिल्टी ऑफ योर पेन, योर पेन इज योर क्रिएशन. वो स्टेबिलिटी क्रिएट करके अब मैं अपने आप को चेक कर लेती हूँ कि व्हाट कैन आई चेंज अबाउट माय सेल्फ जिससे आपके लिए वो स्टिम्युलस चेंज हो जाए, आपका रिस्पॉन्स नहीं.
1: क्योंकि आप अभी भी उतनी हिम्मत, आप में उतनी ताकत नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे कि आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेवार हो अपने जो आपने दर्द क्रिएट
0: नहीं. लेकिन ये हो सकता है ना कि जब आपका, क्योंकि वी नो वन थिंग कि परिस्थिति आएगी तभी तो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा. लेट्स से मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, मैं जरा जोर जोर से चिल्लाकर आपसे बात करती हूँ, तो ये स्टिम्युलस आपको आता है तभी तो आप दर्द क्रिएट करते हो. अब आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप इस स्टिम्युलस को फेस करो, तो आप स्टिम्युलस को बोलते रहते हो चेंज चेंज चेंज, यू चेंज, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन. तो आपकी ये सेंटेंस को मैं लेती हूँ और अब मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ कि एज अ सिचुएशन मैं अपने आप को कितना चेंज करने के लिए रेडी हूँ. लेकिन मैं ये जिम्मेवारी नहीं लेती कि आपके दर्द का कारण मैं हूँ. दर्द तो फिर भी आपने क्रिएट किया. जब मुझे ये ध्यान में रहेगा तो मैं पहले खुद दर्द में नहीं जाती, और जब मैं दर्द में नहीं जाती तभी मैं अपने को देख पाती हूँ और तब चेंज करने का कोई मार्जिन है. जैसे रिलेशनशिप्स में दो लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं आप मेरे दर्द का कारण हो, द अदर पर्सन डजंट एक्सेप्ट बिकॉज वो जैसे ही हर्ट हो जाता है. He doesn't accept that I am the cause of anything, and then he doesn't change. तो basically मुझे guilt में नहीं जाना है ना, या ना कोई मुझे अपने emotion से मुझे you know बहा कर लेकर जा सकता है. आजकल होता क्या है ज्यादातर कि हम stable न होने के कारण दूसरों की इस तरह की statements की वजह से हम बह जाते हैं you know, और फिर that is also not stability. परिवर्तन, yes, I am ready to change, but with stability. कि क्या परिवर्तन करना है मुझे.
1: एंड आई वॉन्ट टू चेंज,
0: आई वॉन्ट टू चेंज एंड आई हैव टू बी कम्फर्टेबल विद दैट चेंज. ये नहीं कि मैंने चेंज किया और फिर मैंने दर्द क्रिएट कर दिया. आई मीट सम सिस्टर्स, उनके हस्बैंड्स कहते हैं आफ्टर मैरिज डोंट वर्क एनीमोर, आपको जॉब नहीं करना है, आपको घर पे रहना है. और जब तक वो पत्नी नहीं मानती है पूरा घर दर्द में है, इन लॉज हस्बैंड, हमारी खुशी के लिए आपको जॉब छोड़नी है. चलो अब आपके पास चॉइस है कि या आपको जॉब करनी है या आपको जॉब छोड़नी है. आप ये समझकर कि आप उनको खुशी देंगे आप जॉब छोड़ते हैं, लेकिन आपने क्रिएट क्या किया वो जॉब छोड़ने के टाइम? अगर आपने ही दर्द क्रिएट कर दिया तो आप घर पर रहकर खुशी कैसे देंगे किसी को?
1: बिकॉज यू विल नेवर बी हैप्पी,
0: यू विल नेवर बी हैप्पी. सो इम्पोर्टेंट फर्स्ट इज दैट इन ऑर्डर टू गिव any energy out, I will have to create it. And then you have to see these sisters, 20 years they have been sitting at home, aur 20 saal ke baad bhi ye regret kar rahe hain apna
1: wo decision. Aur iski wajah se maine
0: to fir wo ghar rehkar bhi khushi kahan hui? Fir hum kehte hain humne unke liye itna kiya, itna kiya, itna kiya, wo abhi bhi khush nahi hai. Wo kyon khush nahi hai? Kyunki humne kiya kiya kiya bahut kuch, lekin hum khush nahi the. To hum jab khush nahi the to wo khush kaise honge?
1: बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वेरी ट्रू से शिवानी, कि जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं वही दूसरों के प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं
0: विद स्टेबिलिटी,
1: हाँ विद हैप्पीनेस, यू नो
0: दैट इज स्टेबिलिटी. हम डूइंग लेवल पर निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. कहेंगे मैं अपने इन लॉज का ध्यान रखती हूँ, मैं हस्बैंड, मैं तो सारा दिन घूमती रहती हूँ.

दरअसल मेरे कंप्यूटर कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ। इन दिनों हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स की। भाई जीवन में ऐसा क्या हुआ कि हम जीना ही भूल गए? वो स्किल्स जो शायद अभी तक नहीं जानते थे, हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। कितनी तरह के थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट करते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट क्या है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमने बात की थी कि 7 तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और उनके इम्पैक्ट्स हमारे जीवन पर क्या होते हैं। आगे बढ़े और हमने जब राइट थॉट्स की बात की तो 10 रॉन्ग थॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रॉन्ग को राइट कैसे करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक बार फिर रिकैप करते हैं क्योंकि जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है, नई स्किल सीख रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हमारे पास रजिस्टर होने में। वो जो 10 आपने कहे थे कि रॉन्ग थॉट्स हैं जिनको राइट करना जरूरी है, चाहे हम पॉजिटिव नहीं भी सोच रहे लेकिन ये रॉन्ग जो है वो राइट किया जा सकता है, तो कौन से हैं वो थॉट?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार समझ में आ जाए कि ये 10 कौन से हैं, कौन से मिरर्स हम यूज करते हैं, और फिर तब अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से मिरर में मैं अपने को देख रहा हूं। सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना करके देखते हैं। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, हम परिस्थिति को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं, एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो भी बुरा है। वास्तव में परिस्थिति जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे है, उसको सही रूप से देखना चाहिए। तीसरा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ बात हुई तुरंत निर्णय पर आ जाते, फिर उसकी भी बुरी इफेक्ट होती है। हमें थोड़ा वक्त देना है, अच्छी तरह से परिस्थिति को एनालिसिस करे और फिर उसके बारे में आगे हम सोचे तो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। चौथी बात है ऑलवेज मेंटेलिटी, कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब मेरे साथ ही होता है, वो ऑलवेज मेंटेलिटी भी बुरी है। पांचवी बात है वाई मी एटीट्यूड, कि कुछ समस्या हुई तो मुझे ही हुई, हमेशा हमें नहीं होती है। कुछ समस्याएं बल हमें भी होती है लेकिन औरों के सामने भी समस्याएं आती है, उस प्रकार से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए। छठी बात है कि हम

0: कहते हैं कि सर्चिंग नेगेटिविटी, कुछ बात हुई उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ निकालते हैं, बल अच्छा बहुत ज्यादा हुआ है, बुरा तो बहुत थोड़ा हुआ है,
1: तब भी हम
0: ढूंढ रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग में हम पॉजिटिव को ढूंढते हैं, परंतु या सर्चिंग नेगेटिविटी में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। सातवां है नॉटिंग, कि फोर्सिबली कोई बात को भूलने की कोशिश करते हैं, वह हमें नहीं करना है। वास्तव में क्या छोड़ना है वह नहीं सोचो, परंतु क्या पकड़ना है उसको सोचो। हमें कहाँ जाना है उसके बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आठवीं बात है कि डिस्क्वालीफाइंग द गुड, अच्छा ऑलरेडी हुआ है लेकिन आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया। नवीं बात है लेबलिंग, कि हम लोगों को भी लेबल करते हैं और लेबलिंग के कारण भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। और दसवां है फ्लाई मेंटालिटी, कि जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है, मक्खी कैसे गंदगी पर ही बैठती है ऐसे हमें भी आदत हो जाती है, हम गंदे पर ही बैठते हैं। ये 10 बातें अगर व्यक्ति एक बार याद रख ले अच्छे से और सारे दिन में जो भी घटनाएं होती फिर सोच

0: परिवर्तन करे तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव राइट थिंकिंग की भी हमें आदत हो जाएगी।
1: शिवानी, ये जो 10 रॉन्ग सडनली हमारे सामने आए हैं, इट्स एन अमेजिंग रेवल्यूशन, लेकिन अगर नहीं चेंज हुआ सो व्हाट्स रॉन्ग?
2: क्या ये थॉट नहीं चेंज हुआ तो बहुत सारा उसका आगे बहुत सारा इफेक्ट आएगा। सारा दिन में हम, जैसे भाई साहब ने कहा, 35,000 to 50,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और आज दिन तक हम अवेयर भी नहीं थे कि वो 7 टाइप्स की हैं, उस हर टाइप में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम ये भी अवेयर नहीं थे कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर का जो पूरा प्रोसेस था, हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी। एंड फिर जब हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, वी वर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट विदाउट ट्राइंग टू वर्क ऑन द सोर्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट क्रिएट क्यों हुआ। चाहे वो रिजल्ट ये था मैं फील कैसा कर रहा हूं, चाहे वो रिजल्ट ये था मैंने बात ऐसे क्यों कर दी, चाहे वो रिजल्ट ये था कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, चाहे रिजल्ट ये था कि मैं वर्क में क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं होते, फिर भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। सो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग। जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, बिकॉज वी वर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्ट, जब वो अंदर डिवेलप हो रहा था अभी बाहर, तो फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट निकला। तो जब हम अपने ऊपर ये चेकिंग करनी शुरू करते तो हम देखते कि वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता। थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं, इवन जब रात को सो रहे हैं तो भी चल रहे हैं, इवन दो इट्स एट अ लिटिल स्लो स्पीड। जैसे ही थॉट्स क्रिएट होती, इट इज फॉलोड बाय फीलिंग, हमें महसूस होगा। इसीलिए जैसे आपने कहा था कि थॉट तो पता ही नहीं चलती, ये पता चलता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर आ गया। फर्स्ट स्टेज की तो मैं अवेयरनेस ही नहीं थी, ऑलरेडी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से उठ के सेकेंड डिपार्टमेंट पर आ चुका है, फीलिंग के डिपार्टमेंट पर। लेकिन अगर फीलिंग के डिपार्टमेंट पर भी मैंने चेक कर लिया, यू नो इट्स लाइक अ प्रोसेस प्लांट, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर सेकेंड स्टेज पर भी आपको पता चल गया कि फॉल्टी है, इट्स इजी ना। आप तुरंत फर्स्ट स्टेज पर वापस जाएंगे एंड वहीं के वहीं आप अपने प्रोसेस प्लांट को चेंज कर लेंगे। हम फीलिंग पर भी उसको चेक नहीं करते, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कई बार पूरी दुनिया के बारे में, इट डेवलप्स माय एटीट्यूड, मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे, जो कई बार हम कहते हैं इसका एटीट्यूड ही बहुत नेगेटिव है, इसको जो देखो इसको ये नेगेटिव दिखाई देता है,
1: एटीट्यूड चिंता वाला
2: है, हाँ, इसका ये एटीट्यूड है, हाँ। तो ये एटीट्यूड है मतलब क्या कि ये तो है ही ऐसा, यू नो।
1: जब मैंने एक बार एंग्जायटी की फीलिंग क्रिएट की, घबराहट की हुई, उसके बाद आगे भी वही होती जाएगी, आगे भी। सो अल्टीमेटली हर सिचुएशन में मैं घबराऊंगी।
2: इट माइट नॉट बी इन हर सिचुएशन बट इट इज डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन। धीरे धीरे वो जाएगा व्हेन इट विल कम टू हर सिचुएशन। अभी एटीट्यूड मतलब, लेट्स से आपसे मैं जितनी बार मिली, मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट क्रिएट किया, तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति जो एटीट्यूड है वो उस क्वालिटी का बन, हाँ, आपके प्रति। अभी वो सबके प्रति नहीं, अभी सिर्फ वो आपके प्रति है, लेकिन अब जैसा मेरा एटीट्यूड आपके प्रति हो जाएगा वो फिर मेरे एक्शन में आएगा। यू नो, इफ आई से, यू नो, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, नाउ दिस इज माई एटीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली मेरा आपसे बात करने का तरीका, आपकी हर बात को परसीव करने का तरीका, आप कुछ भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, ये बहुत अच्छे है। एंड ये अगर मेरा एटीट्यूड उसका ऑपोजिट हो, आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे मेरे को उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट डेवलप हुआ हुआ है। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम मैंने एटीट्यूड कौन सा डेवलप किया हुआ है आपके बारे में। जैसे भाई साहब ने कहा, कौन से शीशे के थ्रू हम हर चीज को देखते हैं, एटीट्यूड इज अ बिग मिरर दैट वी क्रिएट, जिसके थ्रू हमें हर चीज उस रंग के फिर दिखाई देती है। अब एटीट्यूड लेवल पर जब आ जाती बात, तो हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूं, दिस इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। यू नो, कई बार कहते हैं इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ही बहुत केयरलेस है, ये सीरियसली लेते ही नहीं है, दैट्स माई एटीट्यूड। लेकिन बना कैसे? Thought, feeling, attitude now comes out into action. Action मतलब कोई word या कोई physical कर्म, action। अब जैसा मेरा action होगा, पर कई बार मैं वही action को बार बार बार बार repeat करती, then it becomes my habit. Once it has become my habit, जिसको हम कहें, you know, my संस्कार, then it's not with one person,
1: मैं ऐसे ही हूँ,

0: ये अब मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है। शुरू शायद वो किसी एक से हुआ था, जो कई बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि कई बार हमें आदत है कि ऑफिस में काम कराने का तरीका कैसा है, गुस्सा किया गुस्सा किया गुस्सा किया काम करवाया, तो घर पे भी बच्चों का सेव कुछ करवाने का तरीका कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों के साथ भी कैसा हो जाएगा, वैसा। क्यों? बिकॉज गुस्सा करना ये मेरा संस्कार बन चुका है, गुस्से से काम करवाना ये मेरा संस्कार बन चुका है। देन इट विल नॉट रिमेन विद दैट पर्सन स्पेसिफिक, देन इट इज विद मी, बिकॉज अब ये मेरा पैकेज है, दिस इज हु आई एम। ये हर एक के साथ ये होगा। एंड आई हैव लॉट ऑफ संस्कार्स, तो ये जो मेरे सारे संस्कार हैं, दिस इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो हर थॉट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि फाइनली इट इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी। ये मेरा व्यक्तित्व है, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी। अब हम जाते हैं पर्सनैलिटी वर्कशॉप्स के अंदर, हम जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर, क्या करने के लिए, मेरी पर्सनैलिटी चेंज कर दो। फिजिकल नहीं, इट्स दिस पर्सनैलिटी विच इज रेडी, स्टार्ट हुई थी थॉट से। आपको चेंज करना है कुछ भी, यू हैव टू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ थॉट्स। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि जैसी मेरी पर्सनैलिटी होगी, हर स्टेप पे मैं वो पर्सनैलिटी को लेकर जाऊंगा, तो हर स्टेप पे जैसी मेरी पर्सनैलिटी होगी, वो एनर्जी बाहर जाएगी, जो एनर्जी बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आएगी। जब एनर्जी वापस आती है, हम उसको डेस्टिनी कहते हैं। मेरे साथ जो होता है वो मेरा भाग्य है, तो मेरी थॉट मेरा भाग्य क्रिएट करती है। और अगर मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूं, तो मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूं, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य इज जस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, बट दे आर अ रिटर्न ऑफ द एनर्जी दैट आई हैव सेंट आउट। द मिनट आई अंडरस्टैंड दिस, दैट आई क्रिएट माई डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द थॉट्स आई क्रिएट, अवेयरनेस बहुत ज्यादा होने लग जाती है उसके ऊपर, क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि सारी पावर आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है। चेंज द कंट्रोल, डेस्टिनी विल चेंज टोटली।
1: आई थिंक द वे ही आल्सो सेड कि आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हो उन सारी घटनाओं।
0: बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कैसे वर्क करता है? वो इस तरह से वर्क करता है कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे, धीरे धीरे वो आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब जो कर्म आप करोगे, जब हमें लॉ ऑफ कर्म समझ में आता है कि जो कर्म मैं करूंगा उसी का रिटर्न मुझे मिलेगा। मेरे कर्म की क्वालिटी किस बेसिस पर है? जो मेरी पर्सनैलिटी की क्वालिटी है। तो इसका मतलब कर्म की क्वालिटी पर्सनैलिटी की क्वालिटी से, वो थॉट की क्वालिटी से, तो कर्म का रिटर्न भी थॉट की क्वालिटी से। तो भाग्य अपने आप, आपने ग्रेविटेट कर लिया ना वो भाग्य को अपनी तरफ,
1: जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप दे रहे थे बेसिकली।
0: दैट इज कमिंग
1: मतलब जो मैंने क्रिएट किया वही मैंने पाया।
0: यस, अब थोड़ा सा और एक स्टेप पर देखना है कि अगर थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है, तो थॉट्स की सोर्स क्या है? पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ध्यान से कि नेगेटिव न्यूज़पेपर्स, न्यूज बहुत ज्यादा ना पढ़े, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है थॉट्स पे। गॉसिपिंग की आपने पहले बात की, कि क्यों नहीं गॉसिप करें, इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट करती है। सेकंड है बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। कि जैसे बात हुई कि गुस्से से काम करवाना, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करो तो काम जल्दी हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम है। ये बिलीफ होगा, थॉट उसी क्वालिटी की चलेगी, पर्सनालिटी वही बनेगी, डेस्टिनी भी फिर उसी के हिसाब से होगी। तो इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थॉट्स चेंज होती जाएंगी, भाग्य बदलता जाएगा।
1: बिल्कुल, एक बहुत नया एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं हम कि भाग्य, जिसे हम अभी तक कह रहे थे कि बहुत सारी और बाकी चीजों पर है, सिचुएशंस। तो आज जो बात है कि थॉट की पावर जो है वो चेंज कर सकते हैं।
2: और एक बात ये भी करनी चाहिए कि राइट थिंकिंग अगर हमें डेवलप करना है, सचमुच प्रैक्टिस करनी है, तो एक चार्ट लिखना चाहिए,
1: वो जो रॉन्ग्स हैं, 10 रॉन्ग्स
0: को राइट में करें।
2: हाँ, उसको ऐसे करे कि भी सारे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी पहले पहले लिखो, मेजर न भी लिखो, तो ये 10 घटनाएं हुई, उस समय मुझे फीलिंग्स क्या हुई, कि निराशा की फीलिंग हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, क्या फीलिंग्स आपको हुई। फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि मेरे रॉन्ग थॉट क्या थे,
1: जो मैं 10
2: मिरर्स थे

0: कौन से मिरर में मैंने उसको फिट किया, उसको लिखो कि ये मेरे रॉन्ग थॉट थे। फिर ये लिखो कि भी राइट थॉट क्या होना चाहिए, कि भी ये घटना फ्यूचर में हुई तो मैं ये राइट थॉट करूंगा। उसे फिर रिपीट करिए कि बस फ्यूचर में घटना ही मैं यही करने वाला हूं, तो आत्मा में भी वह जाएगा कि फ्यूचर में होगा। आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया कि मैं यही राइट थॉट करने वाला हूँ। ऐसी प्रैक्टिस 3-4 सप्ताह भी करने लगो, ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग करेंगे।
1: तो ये हर रोज शाम को करें या हर एक घंटे बाद करें?
0: एक्चुअली
1: बिकॉज वो याद ही नहीं रहेंगे घटना।
0: टाइम मिले तो भले 2-3 घंटे बाद भी करो। और कोई कहे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, सारा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो बोले शाम को भी करिए।
2: जो भी एक छोटी सी नोटबुक अगर आपके पास है, बुलेट डाउन इमेज है,
1: क्योंकि याद नहीं रहता।
2: एक्चुअली उसके टाइम अगर करते हैं ना, तो एक तो उस टाइम आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेते हैं। लेट्स से अभी मेरे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुए और मैं आधा पौना घंटा उसी के बारे में सोच रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ माइंड जा रहा, क्यों नहीं लेट मी डू दिस एक्सरसाइज उसी टाइम, सो दैट आई इवन सेव दैट हाफ एन आवर ऑफ एनर्जी ऑफ
1: डिप्रेशन। पहली चीज तो ये कि ये ब्लेम गेम जब खत्म होगा ना, अभी तक भी जो बहुत मेजर वाले इश्यूज आते हैं, इट्स नेवर लाइक कि मैंने क्रिएट किया।
2: सी, इश्यू बहुत बड़ा हो सकता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, किसी ने चीट किया मुझे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो बच्चा है, चीट किया मुझे, इट्स अ बिग इश्यू, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी थॉट तो मुझे क्रिएट करना है ना।
1: वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जो फीलिंग आई है, जो फीलिंग ऑफ हर्ट, रिजेक्शन या जो कुछ भी एंगर जो भी है, वो मैंने क्रिएट की, ये एक्सेप्टेंस और रजिस्टर होना, ये भी अभी वक्त लग रहा है। Why does it take time? I don't want to take the onus or what it is.
2: Because we were not aware also, ना हम देख ही नहीं रहे थे कभी भी। जितना मैं बाहर देखती हूँ, मुझे हर चीज सिर्फ बाहर ही दिखाई देती है। मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, कुछ नॉट सो अच्छा, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा, तो ऑटोमेटिकली मैं कंक्लूजन क्या करूंगी कि ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है, ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है। दिस इज लाइक एन ऑटोमेटेड मोड, कि ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, आपकी कोई चॉइस नहीं है। मशीन और ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क है? मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है। ह्यूमन बीइंग मींस एट एवरी स्टेप अ चॉइस, कि भले किसी ने बटन प्रेस किया भी है, आपको ऑन होना है या ऑफ होना है, इट्स योर चॉइस, नाउ डिसाइड। आपको ऑफ होना है, ऐसे होके बैठ जाना है, ऑन होना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और इस केस में तो सिर्फ दो चॉइसेस नहीं है, ऑन एंड ऑफ, बहुत सारे चॉइसेस है। एंड जितना हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें लगता है कि हर सिचुएशन में एक्चुअली कितनी सारी चॉइसेस थी। हमने हमेशा वो प्रोग्राम्ड चॉइस ले ली कि इन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगना ही है, गुस्सा तो आना ही है। सो वी वर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी, ऑफ एनी अदर चॉइस ऑन दैट।
1: इनोवेशन,
2: क्रिएटिविटी।
0: और कारण अनुप्रिया बहन की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बस मुख्य बात है कि हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इवन मेरे थॉट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, इसकी जिम्मेदारी अगर मैं
0: बस एक ले लो, फिर और सब कुछ
1: सारी हो जाएंगे।
2: और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज स्ट्रगल हो रही है। सी, पेरेंटिंग स्ट्रगल, जॉब स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, हर चीज में तो एक रिलेशनशिप्स स्ट्रगल, हर एक चीज में क्यों स्ट्रगल हो रहा है? क्योंकि मैं जो ये सारी जिम्मेवारियां उठा रहा हूं, मैं पहले अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि वो थॉट बीज है, ये पूरा उसका वृक्ष है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। अभी हम निभा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट तरह से निभ रही है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना, लेकिन शायद मेरा ही थॉट और व्यवहार मेरे बच्चे को इमोशनली वीक कर रहा है, तो देन एम आई फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात, शायद आई एम क्रिएटिंग डैमेज, आई एम क्रिएटिंग अ डैमेज, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल फॉर माई चाइल्ड ग्रोथ, सो दैट आई हैव टू क्वेश्चन। बट वाई विल आई नॉट बी एबल टू डू दैट? पेशेंस नहीं है, कि मैं नहीं प्यार से समझा सकता, मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी ली है।
1: ओके, अपनी जिम्मेवारी नहीं ली, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ, उसकी नहीं ली। इट्स नॉट दैट इजी। सी अगेन, अभी भी मैं अगर सोचूं, मुझे कोई चीज बुरी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, और मैंने थॉट क्रिएट जाने की भी कोशिश की कि मैं जाके देखूं कि क्या है थॉट, तो वो थॉट जो है वो है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो सिचुएशन है। वो अब उसको मुझे ठीक करने के लिए आई विल वेट फॉर द सिचुएशन टू कम, और आई कैन से इधर आई गिव अप देम एंड आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स। लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ है वो इश्यू। ये चेंज

0: कैसे होगा ये थॉट?
1: इसके लिए एक बात जो फाउंडेशन समझना चाहिए कि परिस्थितियों में जान नहीं होती है, जो हम
0: थॉट में जान है,
1: हाँ
2: एनर्जी तो वही
1: है, सिचुएशन आर लाइफलेस, हम जो उसको लाइफ देते हैं अपने थॉट्स से देते हैं, तो बस थॉट्स को मुझे चेंज करना है और वो मेरे कंट्रोल में है,
0: क्योंकि हमने उस पे जाके देखा,
1: एंगल को तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ, कौन से एंगल से मैं आपको देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट लेट मी चेंज द एंगल।
2: और उसके लिए अगर हम कॉन्शियसली प्योर और पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं जबकि कोई परिस्थिति भी नहीं है, अगेन वी थॉट फर्स्ट स्टेप वॉज जब कोई परिस्थिति नहीं है चेक करो कैसी थॉट्स है, दूसरी स्टेप जब कोई परिस्थिति नहीं है कॉन्शियसली पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं, यू नो चैनलाइजिंग माई माइंड इन द राइट डायरेक्शन। गिरीश भाई ने पहले कहा था एक बार कि जिस डायरेक्शन में थॉट्स फ्लो होंगे ग्रूव्स उसी तरह बनते जाएंगे, पानी जैसे फ्लो होगा। तो अब हम कुछ समय रोज निकालें अपने लिए कि हम पानी को डिलिबरेटली उस तरह से चैनलाइज करें जिस तरह से वी वॉन्ट माई माइंड टू वर्क। अपने आप नहीं हो जाता है, सिचुएशन आने पर नहीं हो पाता है, तो तब करना होगा व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट। और इसीलिए मेडिटेशन हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग में कि सुबह उठ के कुछ पढ़े बिना, किसी से बात करे बिना, कुछ भी और करे बिना, क्योंकि जैसे ही आप यू नो एक्टिविटी में चले गए आपका ये माइंड फिर हो जाता है। कई बार तो आप चेक करें जब आप सुबह उठते हैं पिछले दिन की बातें वो ऑटोमेटिक अभी भी चल रहे हैं, लाइक अ कमेंट्री वो माइंड में चलता जा रहा
0: है, पहली आंख खुलती है और वो सारा का सारा बैकलॉग सामने,
2: एक्चुअली वो सारा का सारा बैकलॉग सामने नहीं आया, नींद में भी वो चल रहा था। अभी तो आंखें खुली सिर्फ, इसीलिए उठने के बाद आप रेस्टेड फील नहीं करते, आप फील नहीं करते कि आप चार्ज थे, क्योंकि रात को सोने से पहले हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया था, आंखें बंद हो गई, शरीर सो गया, माइंड अभी भी चल रहा था। सुबह जैसे ही आंखें खुली बीसी के वही सीडी बज रही है अंदर, वही वाले गाने सारे बज रहे हैं अंदर, वो रात भर भी बज रहे थे। आज मेजोरिटी लोगों से आप पूछो सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है, यू नो जो आपने टाइम का अलार्म लगाया है 5 मिनट और किसका मन करता है सोने को, मेजोरिटी विल से यस,
0: सब बोलेंगे
2: यस। नाउ व्हाई आप 5 घंटा 6 घंटा सो लिए उसके बाद 5 मिनट और क्यों सोना है, क्योंकि जैसे ही उठते हैं वी स्टिल फीलिंग वेरी टायर्ड, बॉडी ठीक है बट माइंड अभी भी बहुत थका हुआ क्योंकि वो पूरी रात भी चल रहा था कंटिन्यूसली। तो इसलिए अपनी थिंकिंग पर वर्क करें कॉन्शियसली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठते ही, नींद बहुत अच्छी होगी, सुबह की तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो सारा दिन का काम इजी हो जाएगा उसको करने के लिए।
0: डॉक्टर पटेल, यहाँ हम अलग अलग थॉट्स को देख रहे थे, अभी एलिवेटेड थॉट्स पर हम अभी आ रहे थे कि वो उनमें कौन से थॉट्स शामिल हैं।
1: अभी एलिवेटेड थॉट जैसे हमने देखा टॉक्सिक थॉट, वो नेगेटिव इफेक्ट में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसे ही पॉजिटिव इफेक्ट को देखे तो एलिवेटेड थॉट सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो एलिवेटेड थॉट है वो हाई एनर्जी थॉट है, उसमें ऊर्जा की हमारी एनर्जी भाई होती, आप खुद भी उमंग उत्साह का अनुभव करते। साथ साथ जो एलिवेटेड थॉट्स है वो जैसे टॉक्सिक थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ऐसे एलिवेटेड थॉट्स है वो पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंडोर्फिन्स, नॉर एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सीरोटोनिन, ये सब अच्छे केमिकल्स है कि जिसके कारण ये जो फील गुड की बात थी वह फीलिंग्स आती है, तो एलिवेटेड थॉट्स से ही केमिकल रिलीज होते हैं, इसके कारण ये सबसे ज्यादा पावरफुल है।
0: और इनमें कौन से थॉट्स शामिल होंगे, कौन से वो थॉट्स?
1: अभी एलिवेटेड थॉट्स किसको कहेंगे कि दे यू नो व्हिच आर रियली एलिवेटेड, एक रियल इसमें हम जो डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, उससे भी जो ऊपर के थॉट है, सबसे पहले तो सेल्फ के बारे में कि भी सेल्फ की एलिवेटेड लेवल क्या है, कि मैं रोल कॉन्शियस नहीं हूं, मैं रेस कॉन्शियस भी नहीं हूं, स्किन कॉन्शियस नहीं हूं, आई एम अ सोल, आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, उसमें माइंड को स्टेबिलाइज करना वह सबसे पहला एलिवेटेड थॉट है। फिर उससे आगे अगर देखना है कि उससे आगे एलिवेटेड थॉट है कि आत्मा के गुण मेरे कौन से है, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूं, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है, शांति को कहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम सही चीज को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, शांति

0: ये अच्छी चीज है, परंतु हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वह है हमारे अंदर ही। यह थॉट अगर कि मैं आत्मा ही शांति से भरपूर हूं, आत्मा के सातों गुणों का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है, ये दूसरा एलिवेटेड थॉट है। और थर्ड एलिवेटेड थॉट कि परमात्मा से मेरे संबंध क्या है, मेरा सोर्स है वह परमात्मा ही है, बस परमात्मा से मुझे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है। वह सही सोर्स होगा तो भी सब प्राप्तियां सहज हो जाएगी। आज हम टेम्परेरी छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भी किसी को पानी दे दो, उससे तो अच्छा है कि भी पानी दिया एक दिन प्यास बुझी, उसको नल दिखा दो कि भी नल कहाँ है तो जीवन भर उसकी प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझना, उससे मन बुद्धि का संबंध जोड़ना, वह सबसे बड़ा एलिवेटेड थॉट है।
1: बहुत सारे भाई बहने जो टीवी का प्रोग्राम ये काफी समय से देख रहे हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये थॉट हम जितनी बार अपने साथ क्रिएट करते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग गुड इमिडिएटली। कोई परिस्थिति भी आती है तो हम तुरंत अपने आप को ये थॉट क्रिएट करते, आई एम अ पीसफुल सोल। तो थॉट चेंज के फीलिंग चेंज हो गई, कर्म चेंज हो गया, डेस्टिनी चेंज हो गई, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम। लेकिन ये आई एम अ पीसफुल सोल उस टाइम कैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे, अगर मॉर्निंग में जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो 5 मिनट बैठकर अपने माइंड को ये तरह की थॉट्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कराई थी। एंड एलिवेटेड थॉट्स क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि दे आर द ट्रूथ। तीनों बातें जो बताई कि आई एम अ सोल, सोल की क्वालिटीज और आत्मा का पिता परमात्मा कौन, ये तीनों चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी सारी चीजें लेबल्स हैं, अक्वायर्ड है, ये तीनों चीजें परमानेंट है। बाकी सब चीजें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है, टेम्पररी है, इसलिए हमेशा फियर बना हुआ है। जैसे ही आप ट्रुथ पर आ गए जो इटर्नल है, तो फियर एंड डिपेंडेंसी खत्म हो जाती, ऑटोमेटिकली फीलिंग कैसे आएगी, फील वेरी गुड। तो एवरी मॉर्निंग सिट एंड शेयर विद योर सेल्फ, अपने आप को समझाओ मैं कौन हूँ। गुस्सा करने से काम होता है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल। तो पीसफुल सोल काम कैसे कराए,
2: पीसफुली।
1: दिस इज अ सेल्फ टॉक, सेल्फ लर्निंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइफ स्किल्स। कि अपने आप को वो स्किल्स सिखाना कि आज सारा दिन में मैंने जो कुछ करना है मुझे इन स्किल्स को सीख कर फिर करना है, एवरीथिंग विल चेंज दैट।
2: तो आप दोनों हमारे साथ हैं, थैंक यू।
0: ओम शांति।
2: अभी तक जिस तरह से सचिन शिवानी ने भी कहा कि एक पूरी साइकिल है, तो मेरा अगर एटीट्यूड है, मेरे थॉट्स के कारण मेरा एटीट्यूड है किसी के प्रति, या उस वो कर्म में आता है, उस एटीट्यूड फिर फीलिंग पीछे जाए और थॉट कैसे बनता है वो उसको देखना शुरू करें। ये है वो स्किल, ये है वो टेक्निक जो अभी तक कहीं मिसिंग थी। लेट्स लर्न इट, लर्न करेंगे, उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन परिवर्तित होगा। तो इस परिवर्तन को महसूस करें। कोई बात मन में आ रही है, आप हमारे साथ फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
3: हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org।
2: अब इतनी ड्रामा कुमारी, इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज़ 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हाथों पर खेलेंगे। समझे मेरे भाई हैं? जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे। हम सड़कों पर नाचेंगे, फुटपाथों पर खेलेंगे, उनको आहें भरने दो।

Jarre.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पूरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता या हम खुद चूज करते हैं उठना या उठना, बैठना है, खड़े होना, हाथ ऊपर करना, नीचे करना। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं. यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है. तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए. नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भाग दौड़, तनाव और अशांति से भरे आज के जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता का मार्ग दिखाता है. विषय है ध्यान, मन का मौन और आत्मा का संगीत. आज का मनुष्य बाहर से बहुत व्यस्त है लेकिन भीतर से उतना ही थका हुआ है और अशांत भी है. सुविधाएं बढ़ी हैं पर शांति घटती जा रही है. कारण साफ है, हम बाहरी दुनिया को संवारने में लगे हैं लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का समय नहीं निकाल पा रहे. ध्यान हमें इसी आंतरिक यात्रा पर ले जाता है. ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है. ध्यान एक ऐसी चेतन अवस्था है जहां मन की निरंतर चलने वाली विचार श्रृंखला धीरे धीरे शांत होने लगती है. जब विचार थमते हैं तब मन मौन होता है और इस मौन में जो अनुभूति होती है वही आत्मा का संगीत है. यह संगीत शब्दों से परे है लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन में दिखाई देता है. हमारा मन अक्सर या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में. ध्यान हमें वर्तमान क्षण में लाता है. वर्तमान में रहना ही शांति की पहली शर्त है. जब हम अभी और यहीं को स्वीकार करना सीखते हैं तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है. एक सुंदर उदाहरण है, यदि किसी शांत झील में आप पत्थर फेंक दें तो लहरें उठती हैं और पानी अशांत हो जाता है. लेकिन यदि पत्थर ना फेंका जाए तो झील स्वाभाविक रूप से शांत रहती है. हमारे विचार वही पत्थर हैं. ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें हम विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करते बल्कि उन्हें छोड़ देना सीखते हैं. परिणाम स्वरूप मन स्वयं शांत हो जाता है. जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है. यही आवाज हमें सही और गलत का भेद सिखाती है. यही आंतरिक मार्गदर्शन हमारे निर्णयों को स्पष्ट, संबंधों को मधुर और व्यवहार को संतुलित बनाता है. ध्यान हमें प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि उत्तरदायी बनाता है. ध्यान का प्रभाव केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता. एक शांत व्यक्ति अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में भी शांति फैलाता है. जब भीतर स्थिरता होती है तब बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी हों हम उनसे सहजता से निपट सकते हैं. यह समझना भी जरूरी है कि ध्यान किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या आयु वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ है. बच्चा हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या सन्यासी, ध्यान हर किसी के लिए है. दिन में 5 से 10 मिनट का नियमित अभ्यास भी जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है. ध्यान को हम जीवन में सहज रूप से उतार सकते हैं. सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करना, गहरी और जागरूक श्वास लेना या दिन में किसी भी समय अपने विचारों को देखना, यही सरल ध्यान है. प्रिय श्रोताओं, आज की दुनिया में हमें और अधिक भागने की नहीं बल्कि भीतर ठहरने की आवश्यकता है. मौन से डरने की नहीं बल्कि उसे मित्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है और वहीं से जीवन का वास्तविक संगीत प्रभावित होता है. इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. जब मन मौन होता है तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है और जब यह संगीत जीवन में उतरता है तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है.

0: तो ये था आज का चिंतन, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं, खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न, उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM.
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांती.
2: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग ब्लेस.
3: थैंक यू
2: सिस्टर. कल किसी से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही थी. तो मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा. पहले तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि द यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग यू और ब्लेसिंग यू. एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दैट बिकॉज अगेन इससे कनेक्टेड मैं सवाल पूछना चाहूंगा. द यूनिवर्स इज ओनली रेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल एटीट्यूड दैट यू आर एमिटिंग. यहां तक. वॉट इफ एवरी वर्ड यू सेड were a wish to the universe, would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Now, make sure to only put out one.

0: things that you want back. Yahan law of attraction kehta hai, you don't attract what you want, you attract what you are.
1: Perfect. This is all that we have been discussing since the last so many days. You don't attract what you want, you attract what you are. And what are you? Thoughts, feelings, attitude, starting from belief system. अब जब हमें ये वाली बात समझ में आ जाती है पूरी कंप्लीट, अगर हम समझ लें इस इक्वेशन को कि ये कैसे चल रही है, कैन आई अफोर्ड टू हैव अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम?
0: कैसे पता चले कि मेरा रॉन्ग बिलीफ है कि राइट बिलीफ है?
1: अच्छा, टेंशन इज नेचुरल. एक बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम लिया तो सारा दिन में काम करते हुए मन ने कहा टेंशन तो होती है, टेंशन तो होगी ही, चिंता तो नेचुरल है, तो चिंता होती गई. वो एटीट्यूड में आया, एक्शन में आ गया, पर्सनालिटी वैसे बनती गई, डेस्टिनी मेरी क्या हुई?
0: फुल ऑफ टेंशन,
1: टेंशन से रिलेटेड बीमारियां, टेंशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो मेरा टीम मेंबर्स के साथ आया, क्योंकि टेंशन इज नेचुरल, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही था कि टेंशन इज नेचुरल. आज तो सिर्फ टेंशन इज नेचुरल भी नहीं कहते, टेंशन इज गुड, मतलब स्ट्रेस इज गुड. Because stress is the driving force. Stress नहीं होगा तो हम बहुत passive हो जाएंगे.
0: Use stress.
1: Good stress. तो इतना strong belief system हो जाएगा तो destiny भी वही होगी. अब कह रहे हैं चाहिए खुशी, चाहिए शांति, मतलब destiny को change करना ना. आज मेरे भाग्य में तनाव है, चिंता है, मुझे अपने भाग्य में खुशी चाहिए. तो I'll have to go backwards. कि ये जो टेंशन है ये कौन से बिलीफ सिस्टम से मेरे डेस्टिनी में आई है कि टेंशन इज नेचुरल. अब मुझे खुशी चाहिए, लेट मी ट्राई जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, लेट मी एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू बिलीफ सिस्टम. पहले बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल, अब हमने देखा पीस इज नेचुरल, ब्लिस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज नेचुरल. अब ये बिलीफ सिस्टम लिया,
0: पहले देखा था कि गुस्से से ही काम निकलता है, एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर इज नेचुरल. नेचुरली आप जब तक एक बार बोलो दो बार बोलो नहीं सुनेगा, डांट के बोल दिया काम हो गया.
1: राइट. कितने सारे सारा दिन बिलीफ सिस्टम है ना. जैसे आपने एक बार पहले भी शेयर किया था कि छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा है और अगर वो कुर्सी से टकरा जाए या किसी चीज से टकरा जाए तो उसको हम ये सिखाएंगे नहीं कि ये चलने में गलती थी. और ये लगती है छोटी बात कि हम उसको क्या कहेंगे, कुर्सी को हाथ मारेंगे, कोई बात नहीं लग गया ना कुर्सी गंदी
0: और सब स्टाफ को डांटेंगे हटाओ कुर्सी किसने रखी, ये गंदी कुर्सी है, बेटर नहीं रोना, चलो कुर्सी को निकाल दो,
1: तुम्हारी गलती नहीं, कुर्सी खराब. सीख लिया. अच्छा, बच्चे को खिलौना ला के दिया, बच्चे को मूवी ले गए, सर्कस ले गए, उसको सिखाया दिस इज हैप्पीनेस. वी टॉट द चाइल्ड दिस बिलीफ सिस्टम इज being transmitted from us to other people around us.
0: बच्चा तो मैंने देखा घास लेके खुश हो जाता है, मिट्टी का टुकड़ा लेके खुश होता है, कागज फटे पुराने गंदे कागज को देख के हंसता है, खुश होता है.
1: बच्चा अगर हम फर्स्ट देखे बच्चा तो वो तो ऐसे इतना ओरिजिनली इतना प्योर होता है. बच्चे को फियर नहीं पता होता, बच्चे को एंगर नहीं पता होता, बच्चे को जेलसी नहीं पता होती, बच्चे को कॉम्पिटिशन नहीं पता होता, बच्चे को कंपैरिजन नहीं पता होता. किसने सिखाया? छोटा बच्चे को हम प्री स्कूल में जाने से पहले सिखाते हैं कंपटीशन है, इतने सब बच्चे हैं उसमें आपको आगे जाना है. वी नेवर टीच द चाइल्ड योर ओन परफॉर्मेंस मैटर्स, वी से इट हैज टू बी इन कंपटीशन टू अदर पीपल. बच्चा एग्जाम देके घर आता है, सी हम कैसे सटल तरह से बिलीफ सिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं. बच्चा एग्जाम देके घर आता है, हम कहते कैसा हुआ आपका पेपर आज, कैसा हुआ? कहना ठीक हुआ. सेकेंड क्वेश्चन, ऑलवेज सेकेंड क्वेश्चन, बाकी सबका कैसा हुआ?
0: बहुत अच्छा हुआ
1: ना. अब आपकी परफॉर्मेंस इन रेफरेंस टू बाकी सब, बाकी सबका बहुत अच्छा हुआ, फिर आपका क्यों नहीं अच्छा हुआ? और अगर उसने कह दिया नहीं बाकी सबका तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, फिर ठीक है. कॉम्पिटिशन, कंपेरिजन, ये बिलीफ सिस्टम हम सिखा रहे हैं. छोटे बच्चे को बड़ों के सामने खड़ा करा देंगे, गाना गा के सुनाओ, वो वाली पोइट्री सुनाओ, डांस करके दिखाओ, वो कर देता है छोटा सा बच्चा, सब लोग वाह वाह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. बिलीफ सिस्टम तभी से

0: लगता है, परफॉर्मेंस गेट्स अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी अराउंड मी।
1: कंपैरिजन का तो कोई लिमिट ही नहीं रहा, वो देखो उसकी हेल्थ, देखो वो स्विमिंग में फर्स्ट, देखो ये। मैं अपने बच्चों को भी बोलता था कि भाई अगर कोई किसी और चीज में फर्स्ट है तो क्या वो आपकी तरह इतना अच्छा गा सकता है। आई शुड टेल, मेरी बेटी को मैंने बोला एक दिन, वो बोलने लगी ये इनको दुनिया के आता है, इनको शेयर मार्केट आता है, इनको अकाउंटिंग आती है, इनको पूरा बिजनेस रन करना आता है। मैंने बोला यू एन आर्टिस्ट, तुम जैसे वो पेंटिंग कर सकती है क्या, तुम तुम्हारे जैसा वो गा सकती है, यू आर अ क्लासिकल सिंगर, यू आर अ पेंटर, तो उसमें एक है इसमें एक है। लेकिन नहीं, उसने तुमको मुक्का मारा और तुम चुप क्यों रहे, वो कितना स्ट्रांग है।
0: कंपटीशन एंड कंपैरिजन
1: देते हैं हम,
0: तो ये सारी चीजों से फिर डेस्टिनी में आ रहा है ना प्रभाव उसका, लेकिन क्योंकि भाग्य में आज जेलसी भी होगी, दुख भी होगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा कि अदर पीपल आर बेटर देन मी, क्योंकि बचपन से मुझे ये बिलीफ सिस्टम नहीं किसी ने क्रिएट किया, आई एम अ यूनिक सोल, ये नहीं सिखाया ही नहीं किसी ने। आई एम अ सोल, माई क्वालिटीज आर प्योरिटी पीस लव, बाकी सब तो स्किल्स एंड टैलेंट्स है, ये भी नहीं सिखाया। स्किल्स एंड टैलेंट्स को ही मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरे मार्क्स को मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरी डिग्री को, मेरे प्रोफेशन को मेरी आइडेंटिटी बना दिया, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ये बताया ही नहीं। और फिर जब क्वालिटीज वैल्यूज की बात भी की तो वी थॉट वी हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर, प्यार किसी और से मिलेगा, रिस्पेक्ट औरों से मिलेगी, विश्वास औरों से मिलेगा, मुझे ये करना है, ये मेरी इनहेरेंट नेचर है, ये नहीं सिखाया। तो ये बिलीफ सिस्टम्स होने से आज हम अपने डेस्टिनी को चेक कर लें। अब आपने जो पढ़ के सुनाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन
1: जी,
0: बिकॉज मोस्ट ऑफ अस टुडे आर अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सिर्फ उसको ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं किया। सो वी थॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वट एवर आई वॉन्ट स्ट्रांगली,
1: I have to visualize that.
0: I have to visualize that and I will get it.
1: Hmm.
0: And aapne jo padha ki law of attraction is not what you want.
1: It is what you are.
0: It is what you are. Just look at the line. Means you will attract what you are. Ab agar main kahu mujhe ye banna hai. This is what I want. Mujhe itna paisa kamana hai is what I want. But what I am is a personality of doubt. अब want मेरे अंदर doubt करने की nature है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, हाँ, और मेरे से better है, this is who I am, means this is my thoughts. जब मैं उस target के बारे में सोचती हूँ, I create very powerful positive thoughts. नहीं नहीं, मुझे करना है, मुझे बनना है, लेकिन जो मेरी personality है, मेरी thought process है, वो डाउट करने की है, वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना है अपने बारे में, दूसरों को देखने की आदत है, दूसरों जैसा बनने का संस्कार है, दूसरों को कॉपी करने का संस्कार।
1: ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप जो बात कर रही हैं अभी, तो लाखों करोड़ों रुपए की किताबें बिकती हैं, लाखों करोड़ों रुपए की टिकट्स बिकती हैं, लोग इसके क्या शिविर मतलब जो भी है
0: रिट्रीट्स
1: करते हैं, कि बट उन्होंने यहाँ ये कहा कि आप बस उसको इमेजिन कीजिए कि मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, और ये देखिए अपने आप हो जाएगा।
0: और इसीलिए आज बहुत सारे लोग कहते मैंने वो किया लेकिन वो हुआ नहीं, मैंने विजुअलाइज किया।
1: मुझे ये पॉइंट आपका बहुत पसंद आया कि मैंने क्यों किया, देखा कि बाजू वाले को मिल गई उसकी जेलसी में, I am jealous, but what I want is that car.
0: Right.
1: तो इन्होंने किताबों में ये लिखा है कि एक औरत जाती थी, रोज विजुअलाइज करती थी कि शोरूम में गाड़ी देखी, लाल गाड़ी, कि मैं उस गाड़ी को चला रही हूँ, गाड़ी को चला रही हूँ, एक दिन मुझे वो गाड़ी मिल गई।
0: Right.
1: ये क्या जादू है?
0: See, आप जो एक एम रखेंगे, नहीं जादू नहीं है, जैसे आपने एक एम रखा कि मुझे एक्टर बनना है तो बन गए ना।
1: मैं जेलसी से नहीं बना ना।
0: नहीं, सपोज एक जेन्युइन एम,
1: मैंने मेहनत की ना,
0: तो मेहनत
1: मैंने अपनी फोटो खींची, फोटो खींच के देखा कि वेदर मैं फोटोजेनिक हो के नहीं, बाकी दूसरे फोटोग्राफ लगा के देखे, अपनी हाइट देखी, देखा, फिर रेडियो स्टेशन गया, रेडियो स्टेशन में मैं अपनी वॉइस टेस्ट की, स्टेज शोज की हैदराबाद में, रविंद्र भारती में, लोगों को इन्वाइट किया, उनकी ओपिनियन लिए, फिर फिल्म इंस्टीट्यूट गया।
0: लेकिन ये सब कुछ किया, और ये सपोज बहुत लोग करते हैं,
1: तो
0: यू विल गेट वॉट यू आर, इसको देखें।
1: तो मैं व्हाट एम आई

0: am I
1: is willpower. What am I is determination. Dridhta ki shakti. Strong, strength. Compromise nahi karunga main kahin bhi. You will get what you are, not what you want.
2: Ye shakti to phir usme hai, jab wo admission form tha jisme likha tha. कि क्या नाम है क्या करना चाहते हैं. अगर एक्टिंग कोर्स में सिर्फ 8 सीट थी दो फॉरेनर्स की, मतलब हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में एक्टिंग कोर्स में जाना चाहते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 8.
1: राइट.
2: तो उसमें से मैंने लिखा आइदर एक्टिंग और नथिंग एल्स. नीचे अगर एक्टिंग कोर्स में नहीं मिला तो आप एडिटिंग कर लीजिए, कैमरा कर लीजिए, बाकी के कोर्सेज हैं कर लीजिए. ऐसे नथिंग डूइंग, नो फिल्म अप्रिसिएशन, नथिंग, एक्टिंग ओनली.
1: राइट. सो willpower,
2: clarity,
1: determination and most important self-confidence.
2: ये तो अपने आप को check करके आया ना, test भी तो किया था.
1: तो destiny बनी ना. लेकिन see test तो बहुत लोग करते हैं. बहुत लोग होंगे जो good looking है, talented है, voice भी अच्छी है, कई बार तो influence भी है औरों का कि सब कर देंगे. लेकिन this is what I want, but what am I? अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है साथ में, और किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, कोई भी चीज जो आपको अचीव करनी है, उस चीज को अचीव करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, सिर्फ डिजायर नहीं उस चीज को अचीव करने का, दैट्स व्हाट इट सेज. यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू आर. व्हाट आई वांट एक डिजायर, एक गोल कि ये दिस इज व्हाट आई वांट, बट आई विल गेट ओनली अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम. सपोज मुझे एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिश्ता. पेरेंट कहेंगे मुझे बच्चे के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट. लेकिन व्हाट एम आई? बहुत कंट्रोलिंग, बहुत क्रिटिकल बच्चे के प्रति, बहुत पोजेसिव, सफोकेटिंग. तो आई मे वांट बट आई विल नॉट गेट. आई विल गेट व्हाट आई एम. दिस डिफरेंस मेरे को बहुत.
2: आई वांट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप. If I am friendly,
1: I am accepting, I am non-judgmental, not only I am friendly. Friendly means kya? I accept my child. मैं critical नहीं हूँ, मैं appreciate करता हूँ, मैं उसका comparison नहीं किसी और के साथ करता सारा दिन, मैं उसको हमेशा motivate करता हूँ, मैं उसको accept करता हूँ, मेरा प्यार उसके प्रति unconditional रहता है. ये सब कुछ मैं करूँगा, then I will get that relationship what I want. Lekin want hai ki I want a nice relationship, I want a good friendship. Lekin main doubt karta hu, main ignore karta hu, main control karta hu, main reject karta hu, main criticize karta hu. Na I want
2: aur main wo chahta hu ye bane jo main chahta hu.
1: Absolutely.
2: Uski choice mein mujhe pasand nahi.
1: Yes, yes. Main dusron ko apne
2: profession ki ho ya shaadi ki ho ya uthne baithne ki ho, मेरी चॉइस के फ्रेंड्स हो, मेरी चॉइस के तुम गाड़ी चलाओ, मेरी चॉइस के तुम कपड़े पहनो.
1: कंट्रोलिंग ना, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कुछ और बनाने
2: की.
1: व्हाट आई वांट, व्हाट आई एम. सिर्फ वांट से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट. यू विल नॉट गेट इट बाय वांटिंग. इवन अगर आप दिन में यू नो क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कहे, वो थॉट बार बार क्रिएट करो, बार बार क्रिएट करो, वो विजुअलाइज करो, उसको कागज पे लिखो, अपने सामने रखो, उसमें कोई डाउट भी मत क्रिएट करो. सपोज आई से आई वांट अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, नो डाउट आई वांट, आई वांट, आई वांट. बट व्हाट अबाउट द क्वालिटीज विच आर नीडेड टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप? यू वांट टू बी अ वेरी गुड एक्टर. व्हाट अबाउट द क्वालिटीज विच आर नीडेड टू बिकम अ वेरी गुड एक्टर? स्किल्स एंड टैलेंट्स एक बात है, स्किल्स एंड टैलेंट्स डेवलप भी हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी क्या मैंने डेवलप की जो मुझे वो वांट मिल जाए. तो अब जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ वर्क करेंगे, हमें ये याद रखना होगा, माय थॉट्स बिकम डेस्टिनी, नॉट माय डिजायर्स बिकम डेस्टिनी, नॉट माय टैलेंट बिकम्स डेस्टिनी, माय थॉट्स बिकम डेस्टिनी. तो थॉट को क्लीन करना होगा, थॉट की चेकिंग करनी होगी. आई विल गेट हु आई एम.
2: मेरा एक दोस्त था, बड़ी अच्छी बात उसने कही कि यार मेरा अस्थमा जाता नहीं था, जाता नहीं था. तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि चलो वो फलाने फलाने दादर में एक बहुत अच्छा होम्योपैथ है और उसकी दवा में उसकी खा लो तो आप ठीक हो जाएंगे. तो यार अपनी बीवी के सर में दर्द हो गया था, मेरे को मालूम था कि मैं ठीक नहीं होऊंगा,

0: पास्ट कार्मिक अकाउंट्स का भी है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और ये ध्यान रखना है कि उसको देखते हुए अभी जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें कोई नेगेटिविटी ना आ जाए उस वजह से, तब वो डेस्टिनी इम्प्रूव हो जाए।
1: पॉइंट समझाने, अगर मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है और मैंने पहले जो जो सोचा था, जो भी किया था, आज मेरी सक्सेस में वो बाधा डाल रहा है, तो मैं वीक नहीं हो जाऊंगा? ठीक है यार, मैं तो फेलियर होना था मुझे,
0: नहीं
1: तो उल्टा मैं ना, वो हो जाऊंगा डिप्रेस।
0: सपोज हम पैरामीटर रख के करते हैं इसको वापस। सपोज मुझे 100% चाहिए कुछ चीज में, इक्वेशन में 100%, सब फैक्टर्स परफेक्ट है, मेहनत भी परफेक्ट, मिलना चाहिए 100%, सब बोल रहे हैं आपको 100% मिलना चाहिए।
1: Yes. और मिल कितना रहा, 60-70?
0: चलो 50।
1: 50
0: ओके, मिला 50, फिर मेहनत की 50, फिर मेहनत की 50। अब परेशान अगर हो गए, अब चिंता में चले गए,
1: वहम में चले जाएंगे,
0: वहम में भी चले गए,
1: अंगूठी पहन लो, ये पूजा करा लो,
0: अब जैसे उसमें गए तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस
1: कम हो गया,
0: कम हो रहा, तो लो कॉन्फिडेंस, अपसेट फीलिंग, इनसिक्योरिटी कि शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। अब जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट के, ये जो हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पास्ट का था, लेकिन जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट में क्रिएट होने लग जाए तो प्रेजेंट थॉट्स से भी डेस्टिनी है। तो जो 50 पर हम पहुंचे थे,
1: 60 हो जाएंगे फिर?
0: 50 पर हम पहुंचे थे जब हमारी स्थिति अच्छी थी।
1: अच्छा, मतलब और रिवर्स कर दिया?
0: नेचुरली नो, मेरी स्थिति बिल्कुल अच्छी थी
1: तो और गिर गए।
0: सी आई एम 100%
1: 50 से 40, 40 से 30, हम तो उल्टा गियर में चले गए।
0: नेचुरली हो जाएगा।
1: हाँ।
0: क्योंकि आई एम एकदम कॉन्फिडेंट, मैंने मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन 50 मिला। मतलब जब मेरी स्थिति परफेक्ट थी
1: तब
0: तो
1: ये
0: मुझे
1: मिला।
0: 50 मिला।
1: और जब मैं फुल ऑफ नेगेटिविटी हो गया, निराशा आ गई और लोगों में जाके हाथ दिखाने लग गया, पूजाएं कराने लग गया, अंगूठियां पहनने लग गया,
0: अब मेरी थॉट्स नेगेटिव होने लग गई हैं, तो अब मेरी पास्ट कार्मिक अकाउंट उधर ही है, उसी पैरामीटर पर है, लेकिन प्रेजेंट थॉट्स
1: और नीचे गिरा रहे हैं,
0: तो मेरे को 50 से 40 हो जाएगा और फिर वो मेरे पर प्रभाव डालेगा।
1: ये भी बिलीफ है ना,
0: 30, क्या
1: दिस इज नेचुरल ना? 100 बार फेल होता है बंदा तो गांव गांव गली गली दरगाह से मंदिर से चर्च से गुरुद्वारे से हर जगह जाता ही है ना।
0: सो इस इक्वेशन को याद रखना, देखे थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, 50 को एक्सेप्ट करना पहले,
1: 40 नहीं होने देना।
0: अगर 50 पे भी बने रहे, लेट्स से
1: फाइट करना वाला,
0: तो नो, लेट्स से आई रिमेन एट 50 फॉर एवर, फर्स्ट इज इन दैट ओके?
1: मच बेटर देन गोइंग टू 20।
0: दिस इज इट,
1: ये बड़ी अच्छी लगी बात।
0: दिस इज इट,
1: वेरी नाइस,
0: एक्सेप्टिंग कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, दिस आई हैव टू एक्सेप्ट,
1: मैं अपना बेस्ट देकर 50 पे तो हूँ और मेरे पास कार्मिक अकाउंट जितना भी डिस्टर्ब करे, प्रेजेंट में मैं अच्छा बनाऊंगा।
0: एब्सोल्युटली, और
1: मतलब ये पॉजिटिव बात है,
0: ये पॉजिटिव है, और जो इतना डिटर्मिनेशन से इस पॉजिटिव पे चलेगा ना, वो 50 से 60 पे जाएगा, क्योंकि उसने प्रेजेंट फैक्टर तो बहुत पावरफुल है ना। अगेन मैं डिक्लाइन पे ना चला जाऊं, अगर मुझे ये सारे पैरामीटर्स पता होंगे ना कि ये है मेरी प्रेजेंट क्वालिटीज, सपोज प्रेजेंट मेरे अंदर ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क, यू नो समबडी कैन बी लाइक दैट, मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पास रिसोर्सेज है, परिस्थितियां फेवरेबल है, सब कुछ अच्छा है, तब मुझे 50 मिल रहा है, क्योंकि इन सब फेवरेबल सिचुएशंस और क्वालिटीज में एक फैक्टर है पास्ट कार्मिक अकाउंट, जो मैंने ही क्रिएट किया था मेरी थॉट्स के हिसाब से, वो फैक्टर थोड़ा सा मेरा अभी अनफेवरेबल लग रहा है, चार फैक्टर्स फेवरेबल, एक फैक्टर थोड़ा सा उसको नीचे खींच के 50 पे ले आता है, लेट मी रिमेम्बर मेरे प्रेजेंट चार बहुत फेवरेबल है, अभी भी एक अनफेवरेबल है, लेकिन उस एक अनफेवरेबल फैक्टर को प्रेजेंट के फेवरेबल पर ना प्रभाव डालकर, नहीं तो मेरे सारे पांच अनफेवरेबल हो जाएंगे, मैंने डीमोटिवेट हो गया, सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया, दूसरों को देखकर जेलेसी भी क्रिएट कर ली, इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गया, तो पास्ट अनफेवरेबल था, अब प्रेजेंट अनफेवरेबल हो जाएगा, अगेन थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी।
1: Beautiful.
0: This if I always remember.

0: remember this. I have to do that. Past is a very powerful dominating factor.
1: तो सिस्टर ये बात बहुत पसंद आई मुझे कि पास्ट है,
0: है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए.
1: एक्सेप्ट नहीं, देखिए मैंने नई गाड़ी खरीदी आज, मैंने खुद ही एक्सीडेंट मार दिया. उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि कोई मेरा दोस्त चला के मार दे या ड्राइवर ठोक के आ जाए तो मैं चिढ़ता रहूंगा. जब मैंने समझ गया, जैसे आपने समझा दिया मुझे अभी, कि जो कुछ मेरे पास्ट मैंने ही किया था, मेरी वजह से ही जो 50 पे अटका हूँ, तो एक तो वहाँ इतना गुस्सा और इतनी टेंशन और इतनी वो परेशानी नहीं, एक्सेप्टेंस आ गया. अब यहाँ से मुझे 50 का 60 करना है और 40 पे नहीं जाना है कि भाई हाथ दिखाने जाऊं, कुंडली दिखाने जाऊं, पूजाएं करूं, नजर उतारूं.
0: नॉट ओनली दैट, यहाँ पर ब्लेम, निराशा, निराशा नहीं आना चाहिए.
1: निराशा के साथ साथ मैं ब्लेम गेम मेरा दूर हो गया. कोई और मुझे गिरा रहा है, लोग मुझे गिरा रहे हैं, यहाँ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, यहाँ कोई दूसरे लोग सिफारिश से आगे बढ़ गए मुझे पीछे.
0: वेरी ब्यूटीफुल.
1: ये सारी, मतलब आपसे बात करते करते ये मुझे पॉइंट मिल रहे हैं.
0: ये सारी चीजें मेरे प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है? ये सारे थॉट्स जो आपने बोले, दूसरों से कंपैरिजन, ये सोचना कि दूसरे मुझे गिरा रहे हैं या दूसरे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, जिस ये सारे मेरे प्रेजेंट की थॉट्स.
1: मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो कहते हैं आम भाषा में,
0: ऑफिस में बोलते हैं. ये मेरी प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं?
1: एक्सेप्टेंस हो गया, ब्लेम करना छोड़ दिया. अब हम अपने थॉट्स को
0: और पावरफुल बनाए, जिधर अभी है उससे और. और जब भी अगर परिस्थिति अनफेवरेबल होगी, यू नो सिचुएशंस मेरी फेवर में नहीं जा रही है और फिर भी मैं स्ट्रांग रहूं, तो हम अपनी शक्ति को कितना ऊपर उठा के ले जा रहे हैं.
1: ये स्ट्रांग कैसे रहूं, मैं अगले एपिसोड में पूछूंगा आपसे. बहुत इंटरेस्टिंग है. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू. ओम शांति.
1: थैंक यू सो मच. ओम शांति. नमस्कार.
2: Law of attraction does not mean you get what you want. It actually means you get what you are. Our thoughts and words are what we are. These vibrate to the universe and we get them back. What you are is a soul carrying sanskars and karmic accounts. So, what we are going to get will be according to our sanskars and karmic accounts. Thoughts create destiny is always true for the soul, whether in this costume or an earlier one. Costumes may change, but the thoughts created then will still create our destiny. Destiny is created according to our qualities and skills of the present and also karmic accounts of the past. Even if we are not getting the desired result, do not let any of the present qualities and karmas decline. If we create jealousy, insecurity, anxiety, then we are creating a negative present. Accept the past carry forward and keep yourself strong and motivated in the present. If the present remains powerful and positive, we will gradually settle the past and create beautiful karmas, which will influence our present and our future.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: suffer a very good sad. 50 and 60s के उन मेलरी
1: जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा।
2: बड़े अरमान से रखा है कलम तेरी कसम, वो कलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
0: हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास गाने।

0: सफर आयोजित करने के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। तो आइए दोस्तों, इस सफर को बहुत खूबसूरत यादगार सफर बनाते हैं और कहते हैं उस रोज दिवाली होती है जब मन में हो मौज बहारों की, चमकाए चमक सितारों की, जब खुशियों के शुभ घेरे हो, तन्हाई में भी मेले हो, आनंद की आबा होती है उस रोज दिवाली होती है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको 50s और 60s के ओल्ड मेलोडी सुनाता हूँ। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना है 50s और 60s में जो रिलीज हुई थी, और उस समय जो लोग मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकला, और इसलिए उस दौर को हिंदी फिल्मों का सुनहरा दौर कहा जाता था। जीवन में हर एक बात का कोई मतलब जरूर होता है। समय बलवान है, समय पर ही पता चलता है क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब ये हसरत होती है तो गीत का सार याद आता है। और चलिए मैं उस गीत की तरफ इशारा करता हूँ जो 1951 में रिलीज हुई थी, जिसमें अर्जुन और शम्मी कपूर को पिक्चराइज किया गया था। शम्मी कपूर को तो आप सभी जानते हैं ही, लेकिन अर्जुन का पता नहीं चला बाद में क्या हुआ इस फिल्म के बाद।

जी हाँ, ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए मुकेश और लता जी ने इस गीत को गाया है। इंदिवर साहब ने इसे बहुत अच्छी तरह से लिखा है और रोशन साहब ने इसे संगीत से सवारा है। फिल्म मल्हार 1951 का ये खूबसूरत गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM। कहते हैं जब प्रेम के दीपक जलते हो, सपने जब सच में बदलते हो, मन में हो मधुरता भावों की, जब लहके फसले छाओ की, उत्साह की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं 1950s के कुछ गाने मैं सिलेक्टेड आपको सुना रहा हूँ, और खास 50s और 60s का, वो भी जो अक्षर बी से शुरू हो जाता है।

है उसकी दो लड़कियों से प्रेम हो जाता है और दोनों भी उससे शादी करना चाहते हैं। अब बात आती है कि शादी करे तो किससे करे। तो इसमें एक बहुत ही कॉमेडी बताया गया है, कॉमेडी फिल्म है और जिसे गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया है और इसका म्यूजिक और संगीत दिया था ओपी मैयर साहब ने उस समय, और इसके गीत जो लिखे थे मज्जू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये जो उसमें फिल्मों में जो काम करने वाले लोग थे जैसे जॉनी वॉकर, श्यामा, शकीला, जगदीप, जगदीश शेट्टी, राज खोसला, आत्माराम, गुरुदत्त खुद, और इस तरह से गुरुदत्त की इस फिल्म को असिस्ट कर रहे थे उनके ही ब्रदर। तो शायद आपको याद हो एक खूबसूरत गाना है जिसके बोल आपको अभी भी याद होगा, जैसे मैं गाना चलाऊंगा।

जी हाँ, ये खूबसूरत गाना है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस गीत को सुनते हैं। मजरू सुल्तानपुरी का ये खूबसूरत गीत और गीता दत्त ने इसे गाया है और संगीतकार ओपी नय्यर। आर पार का 1954 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, कहते हैं जब प्रेम से मीत बुलाते हो, दुश्मन भी गले लगाते हो, जब कहीं किसी से वैर न हो, सब अपने हो कोई गैर न हो, अपनत्व की आभा होती है उस रोज दिवाली होती है। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आज के सफर को बहुत यादगार बनाएंगे ओल्ड मेलोडीज जो आपको सुना रहा हूँ 50s और 60s के। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत।

जो अक्षर बी से शुरू होता है। किसी को क्या बताए कि कितने मजबूर है हम, चाहा था एक तुमको और तुमसे ही दूर है हम। आइए बचपन की मोहब्बत को ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूं का लिखा, नौशाद साहब का संगीत से सजा, बैजू बावरा का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुणे आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आप अभी सुन रहे थे। नौशाद साहब का संगीत बैजू बावरा। जी हाँ, इसके गाने सभी हिट थे और हम लोग सुना रहे हैं आपको अक्षर बी से। तो ये खूबसूरत गाना आपके लिए अभी था, 1952 का ये खूबसूरत गाना आपने अभी सुना। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, कहते हैं जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाए, महकाए खुशबू खुशियों की, मुस्काए चंदनियां संधियों की, तृप्ति की आवा होती है उस रोज दिवाली होती है। आप समय है रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत गाना मुझे याद आ रहा है जो अक्षर बी से शुरू होता है। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण का लिखा, सुमन कल्याणपुरी और रफी का गाया ये खूबसूरत गीत, जिसको संगीत से सवारा है मदन मोहन ने। 1964 का ये फिल्म है जिसका नाम जहां आ रहा था। और इस फिल्म में एक बहुत ही सुंदर जो कहानी है, प्रेम कहानी है,

जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे पल आते हैं जाते हैं, खुशी के, गम के और साधारण पल भी आते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या किया जाए, कभी कभी हम सोचते हैं अरे कितना कुछ करना है और कितना मैं कर सकता हूं। तो ऐसे कहीं कश्मकश हमारे जीवन में आते जाते हैं और उसमें ऐसे मुश्किल घड़ी में या फिर ऐसे तन्हा में किसी का आगमन हो जाता है तो जीवन में बड़ा सुकून मिलता है। बात मुद्दत की ये घड़ी आई है। जी हाँ, ये खूबसूरत गाना अभी आपको सुनाते हैं। तो चलिए, जहां आ रहा 1964 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। हमसे दीवाने कहीं तरके वफा करते हैं, जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं, जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सभी से बातें हो रही हैं और आप बहुत ही पुराने 1950s और 60s के गानों का आनंद उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इन पुरानी फिल्मों के बारे में या फिर इनकी कुछ जीवन कहानियों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि बस बातें सुनते जाए कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन को छू जाते हैं ये सारी चीजें। तो आइए ऐसा ही कुछ एक और फिल्म के बारे में बात करूंगा, चांद और सूरज। हुआ ऐसे कि 1965 में ये मूवी गंगा चित्रा ने प्रोड्यूस किया था, जिसको डायरेक्ट किया था दलाल गुहा ने। फिल्म के जो कलाकार थे धर्मेंद्र, अशोक कुमार, निरुपमा रॉय, तनुजा और अजित सेन, और इस पूरे फिल्म को संगीत से संवारा था सलील चौधरी ने, और इसमें एक बहुत ही पॉपुलर गाना था बागों में कली खिली। और हुआ ऐसा कि इस गाने को गाया आशा भोसले जी ने और सलील चौधरी ने संगीत दिया था। अब बिल्कुल यही सारा म्यूजिक, यही सारा कंपोजिशन जो है, एक 1966 में फिल्म आई थी मलयालम मूवी क्षेमम करके, और उसमें ये गाना बिल्कुल एज इट इज उसका म्यूजिक कंपोजिशन कॉपी किया था। तो वहां पर 1966 के इस फिल्म क्षेमम को नेशनल अवार्ड मिला इस म्यूजिक के। तो समझ सकते हैं कि आपने ये खूबसूरत जो गाना है दूसरे स्टेट में इसको कितना पॉपुलैरिटी मिली। कहते हैं जब तक मानव नहीं उठेगा, अपने हक को लेकर नहीं लड़ेगा, होगा तब तक उसका अपमान, कब तक मदद करेगा भगवान। जी हाँ, कभी कभी हमें अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, और फिर बात

में हम उसे अपनाना भी पड़ता है। तो ऐसा कहीं कश्मकश जीवन में आते हैं तो किसी न किसी मोड़ पे हम अपने जीवन में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भी हम अपने हक को पा सकते हैं। लेकिन पहले विधि विधान को समझे, नियम संयम को समझे, उस अनुसार करते हैं तो वो सभी के लिए एक प्रेरणा मिल सकता है। अगर कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि काम बनने के बजाय और बिगड़ जाए। तो चलिए बातें कम करके सीधे मैं ले चलता हूँ आपको इस फिल्म की गीत की ओर, बागों में कली खिली। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM।

0: लोगों का सफर अलग सने के साथ रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही खूबसूरत गीत का आप आनंद उठा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गीतों का सिलसिला जारी रहेगा और गीतों के बीच में फिल्मी दुनिया की कुछ खास बातें, जो कुछ कही हैं और कुछ अनकही बातें भी हैं। तो आइए, 1960s में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी, और ये फिल्म के प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी थे और इसके डायरेक्टर थे राम मुखर्जी। और इस फिल्म में जो कलाकार थे वो सुनील दत्त, जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, जागीरदार, हेलन, लीला चिटनिस, प्रेम चोपड़ा और संजीव कुमार। अब ये फिल्म जो बनी 1960 में हम हिंदुस्तानी, इसमें एक बहुत ही पॉपुलर गाना था छोड़ो कल की बातें, लेट गो ओल्ड स्टोरीज, यानी पुरानी बातों को छोड़कर नई चीजों को अपनाए, नया हिंदुस्तान बनाए। तो ये पॉपुलर गाना रहा इस फिल्म का। अब इस फिल्म के बारे में बता रहा था, 1960 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, 1952 में एक बंगाली फिल्म आई थी जिसका नाम था बासु परिवार, और ये फिल्म का ये रीमेक हिंदी में बना 1960 में हम हिंदुस्तानी। इसके साथ एक और छोटी सी स्टोरी जुड़ी हुई है, हेलन। हेलन इसमें अच्छा रोल किया एक डांसर का, तो उसके बाद उन्हें कैरेक्टर रोल कभी नहीं मिला। उसके बाद जो भी फिल्में हेलन को मिली उन सब में वो एज ए डांसर ही कास्ट किया गया। उषा खन्ना ने इस फिल्म को संगीत दिया था और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बिजनेस इसने किया था। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, जैसे कि ये गाना,
2: बाल मामूरी लट सुन जाते, बाल मामूरी लट सुन जाते।
1: आशा भोसले की आवाज में उषा खन्ना का संगीत, फिल्म हम हिंदुस्तानी, 1960s का ये खूबसूरत गाना। आप सुना है ख्वाबों का सफर रेडियो प्रोग्राम, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गानों का आनंद उठा रहे हैं। 1950s और 60s के ये खूबसूरत सिलेक्टेड गाने जो अक्षर बी से शुरू होता है, मैं आपको सुना रहा हूँ। आइए 1960s के बाद 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आरती, और इस फिल्म में अशोक कुमार को पिक्चराइज किया गया था, साथ में मीना कुमारी, आरती गुप्ता, प्रदीप कुमार, दीपक, शशिकला, सुरेखा और राम निरंजन शर्मा, रमेश देव, प्रवीण और केशव मुखर्जी, इसके साथ ही मास्टर अनिल, इन सभी पर यह फिल्म आया गया था। तो एक इसमें गीत है जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार तुहे क्या समझा। इस बात को सुनने के बाद मुझे लगा आज के समय में हर बात को बार बार बताना पड़ता है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो या नशा मुक्ति की बात हो, इन सभी के लिए एक अभियान छेड़नी पड़ती है, उसके जरिए लोगों को बताना पड़ता है। फिर भी लोक कल्याण की बात, लोक कल्याण के हित में बार बार बताने के बावजूद वो चीजें जो है उतना होता नहीं जितना होना चाहिए। तो चलिए अब बात आती है जब मोहब्बत के, इस गाने में मोहब्बत से जुड़ी बातें हैं, तो मोहब्बत की बात भी मुझे लगता है कि जब से मोहब्बत शुरू हुई तब से इसे बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि कोई इसे आज तक ठीक से नहीं समझा है। अगर आपने समझा हो तो जरूर मुझे समझा देना। तो चलिए गीत ये आपके लिए खास।

मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत लता मंगेशकर और रफी साहब ने गाया है। रोशन साहब ने इसे संगीत दिया था फिल्म आरती 1962 का। तो चलिए इसी के साथ मैं एक और गाना आपको सुनाना चाहूंगा, बैक टू बैक दो गाने। एक और 1968 में फिल्म आई थी, राजकुमार पर पिक्चराइज किया गया था और पूरी फिल्म में फोकस फैदा रेमन पर किया गया था। नीलकमल में एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, बाबुल की दुआ लेती जा। तो ये गाना भी बहुत पॉपुलर रहा 60s में और लोगों ने काफी हद तक आज भी इसे बहुत प्यार करते इस गीत को सुनते हैं। रवि साहब का संगीत, नीलकमल फिल्म का, साहिद लुधियानवी साहब का ही लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, आपके लिए सुनाते हैं बैक टू बैक दो गाने। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। न जाने कैसा रिश्ता है इस दिल का तुझसे, धड़कना भूल सकता है पर तेरा नाम नहीं। हमारी आरजुओं ने हमें इंसान बना डाला, वरना जब जहां में आए थे बंदे थे खुदा के।

तो चलिए बहुत ही खूबसूरत दो बैक टू बैक खूबसूरत गानों का आनंद उठाया है। मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे गीत जो है आज के इस कार्यक्रम में सुनने को मिला। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप समय है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, सोने का टुकड़ा क्यों ना हो जाए कीमत कम नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इन लाइनों के साथ साथ ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि हम कभी कभी अपने मूल्य को या अपने वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाते कई बार लालच लोग या जल्दबाजी के कारण उसे पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंसानियत कम हो जाती है और हमारी वैल्यू गिर जाती है। इसलिए मूल्यों को सामने रखिए, आप खुद मूल्यवान बन जाएंगे। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर, मैं आपका हम सफर सनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूँ।

ये बहारें फिर भी आएगी, ये एक फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था गुरुदत्त ने। इसके साथ ही इस फिल्म में जो कलाकार थे, माला सिन्हा, धर्मेंद्र, तनुजा रहमान और इन सभी लोगों ने इसमें काम किया। ओपी नैयर साहब ने संगीत दिया था। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि क्या अब क्या होगा, ऐसे में कुदरत उस जगह किसी और को रिप्लेस कर देता है और कार्य चलता है, वो काम हो जाता। तो हमें भी कभी कभी कुछ मुश्किलें आती हैं तो रुकना नहीं है, बस कोशिश करना है, प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। प्यार आज भी तुझसे उतना ही है, तुझे एहसास भी नहीं और हमने जताना भी छोड़ दिया। उन्हें शौक था अखबारों के पत्रों पर बने रहने का, वक्त ऐसा गुजरा कि वो रद्दी के बाव बिक गए। आप समय है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। महेंद्र कपूर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा, ओपी नैयर का संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए।

मुझे 1966 का ये खूबसूरत गाने के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ख्वाबों के सफर में और एक नया यादगार सफर बनाएंगे इसी वादे के साथ। जख्म तो आज भी ताजा है, बस वो निशान चला गया। मोहब्बत तो आज भी बेपना है, बस वो इंसान चला गया। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज, इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हाय नाना तेरी।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। और आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे

0: सोलंकी है, मैं एमपी से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम कशिश सोलंकी, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
3: अरे वाह, तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
4: हाँ दीदी।
3: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो? रात को देखते हो। अच्छा तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
5: मेरे एक सपना में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
3: अच्छा मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना है, तो आप संगीत सीखने लगे?
5: हाँ दीदी।
3: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया है ना। और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखिए नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
5: मैंने देखी थी,
3: देखी थी। तो कोई सपना आया आपको?
5: हाँ।
3: उसको देखने के बाद
5: जग गए
3: नींद से? जग गए, इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे वो करेंगे, हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
2: मैं डॉक्टर बनूंगी।
3: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
2: किसी मरीजों का इलाज,
3: मरीजों का इलाज करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान आप बड़े होके क्या बनोगे?
1: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
3: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
4: हाँ।
3: और कशिश आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
2: टीचर।
3: और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
2: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
3: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो बड़े होके क्या बनोगे?
6: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
3: बड़ा होके सोचेंगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के कुछ भी नहीं? ठीक है चलो, शिवम बड़ा होकर डिसाइड करेगा, पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है।
7: संगीत कलाकार।
3: संगीत कलाकार, अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
7: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जगह कि मुझे जाना ही है इसलिए।
3: अच्छा मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के, कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
7: आधा घंटा था थोड़ा सा दो के लिए।
3: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष आप बताओ, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
8: बड़ा होकर CID बनना चाहते।
3: CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है मैं बताओ तो?
8: वो देश की रक्षा के लिए कानून होता है।
3: अच्छा तो आप क्या करोगे CID बन के?
8: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है और उसको मैं मिटाऊंगा।
3: देश में जुर्म बढ़ रहा है उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी न किसी की सेवा होती है। और ईश्वरी आप क्या बनना चाहते हो?
9: टीचर।
3: टीचर, टीचर क्यों बनना चाहते हो?
9: दीदी बच्चों को पढ़ाने के लिए।
3: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं। ईश्वरी आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं। अच्छा अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं, कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी किसी नहीं। अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मन है, काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी? क्या सोचते हो बताओ?
7: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
3: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ वही सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
9: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ख्याल रखना।

0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और फाइल?
1: बोर्ड पर लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पर लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
2: बोर्ड पर लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पर लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
1: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
3: मैं हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
1: किसी को लगता है पर हमें से नहीं।
0: आप से किसी को भी नहीं लगता?
1: नहीं लगता।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है।
3: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
3: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज है।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोग को क्या लगता है?
1: दी हमको भी नहीं लगता
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
1: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे? और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
4: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करके ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे तो? बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें याद रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। और पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएंगी। और युग?
5: बड़ा सा घर बनाऊंगा, उसमें वो आराम से रहेंगे।
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, अरे वाह। और हर्ष?
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
2: मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होकर उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे?
6: आप क्या करोगे? दीदी
0: आप भी सेवा करोगे। ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ फैमिली में कौन कौन है घर पे?
1: मम्मी पापा दादी दादाजी चाची।
0: अरे वाह, आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
1: दीदी मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना, सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना? और आप बताओ,
5: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं,
0: इसलिए वो
5: मैंने कैसी हो मंगा था उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा पापा नहीं? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा, तो
5: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं।
0: दादी दादा, अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: मम्मी पापा दादा दादी।
0: और सबसे अच्छा?
1: जी मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा?
1: मम्मी।
0: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
1: दीदी अगियादा एंड मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
1: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छी क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
1: तो मुझे एक कल ही चप्पल मांगी थी प्राइज ले आई।
0: अच्छा, और मुस्कान?
2: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाचा।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
2: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
2: वो हमें बहुत प्यार करते
0: हैं। प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तभी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
5: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, और आप बताओ?
1: दीदी हमको भी
5: जैसे कि

0: जिसे दौड़ना नहीं आता वो मुश्किल हो जाए तो हमको हमारी दीदी दौड़ दे।
1: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की, कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
0: कभी होती है।
1: होते हो?
0: दीदी
1: क्यों होते हो, क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
0: एक कोला टीला है होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
1: अच्छा जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा नहीं? क्यों लड़ते हो आप, कहाँ आपको मारती है? अच्छा क्यों मारते हो, उसका क्या करते हो आप, ऐसे शरारत करते हो? बताओ ऐसे ही मारते हो, क्या शरारत करते हैं मुस्कान बताओ?
2: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
1: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवा? नहीं तो दीदी की चीजें ले लेंगे ऑफिस सही जगह पे रख देना है ना, तो फिर दीदी नहीं डांटेगी। ठीक है आयुक बोलो।
0: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
1: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
0: भाई?
1: आप नहीं जीतते हो,
0: टीम में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम मेरा।
1: अच्छा टीवी के लिए लड़ाई होती है?
0: हमारे घर में तो है ही नहीं और मैं एक ही हूँ।
1: अच्छा तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
0: चुप हो जाते
1: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वर आप कभी गुस्सा होते?
3: नहीं।
1: लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं, मम्मी जब कहते हैं सब मानते हो?
3: हाँ मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
1: झगड़ा होता
3: है? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
1: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
3: टीवी के लिए मेरी दो बहन है वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
1: टीवी के लिए झगड़ा हो जाता है आप टीवी बंद कर देते हो? और फिर जो दोबारा ऑन होता है फिर
3: रिमोट लेके भाग जाता हूँ।
1: अच्छा और आप लोग बताओ कशिश कभी झगड़ते हो?
0: हाँ दीदी।
1: क्यों झगड़ते हो?
0: दीदी मेरी छोटी बहन है वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती तो हम झगड़ते तो दीदी फिर कुछ भी करते
1: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
3: हाँ।
1: अरे वाह ये तो सब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
0: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है फिर ऐसे करने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है।
1: क्या प्लान बनाते हो?
0: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
0: कोई बना रहे होगा पर ये तो कह रहे हैं।
1: अच्छा और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
0: और कोई टीवी देख रहा हो पानी पीने के लिए जा रहा हो तब भी कोई रिमोट ले लेना है।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं। और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ जी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।

0: मतलब लड़ाई होती है फिर हमसे मतलब दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान
1: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं है ना, तो फिर आप क्या करते हो?
1: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
1: फिर टीचर से बोल देती है तो टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
1: बन जाते हैं
0: फिर अंत में। अरे वाह है ना, तो उनका क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए है ना। और ईश्वरी आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड्स मुझे धक्का देते फिर मैं भी फिर हम फ्रेंड्स बन जाते।
0: अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है, लेकिन जोर से नहीं देना नहीं तो लगता है कि चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी है ना। और आप बताओ,
3: कभी झगड़ा हो जाता है?
0: क्यों?
3: बातचीत करते हुए।
0: बातचीत करते हुए झगड़ा हो जाता है?
3: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
3: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
3: कभी सीक्रेट हम किसी और को बताते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
3: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
3: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड से हमें बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बतानी चाहिए। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
3: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
3: उसकी भी जगह बता देते।
0: उसकी भी जगह बता देते हो?
3: वो तो पता कैसा चलता है की उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: तो भूल गए। कशिश
4: दीदी हमारे फ्रेंड की
0: क्या होता है?
4: दीदी कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शॉर्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है उसके बाद क्या करते हो?
4: जी कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। और यू?
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकत है ना, मैं ही ताकत हूँ, सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे सब साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं?
5: तो टीम रुकते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया और आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
3: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा जब गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
3: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
3: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
3: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
3: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मामा कह रहे थे ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर मेरे फिर क्या चल चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से जितने लगते ले जाते हैं।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में थे तो मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाते हैं उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरा माँ के साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष आपको बताओ।
7: मेरा एडवेंचर बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है?
7: हाँ।
0: क्या करते हो आप?
7: पीछे मैं एडवेंचर सीखूंगा तो बड़ा होकर भी बड़े बड़े एडवेंचर करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
7: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है।

0: हाँ, कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ,
0: क्या लिया है बताओ।
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के। अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर। और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको?
2: नहीं।
0: क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो। अच्छा, पायल आप?
3: मुझे भी डांस में बहुत मजा।
0: डांस में बहुत मजा। आप किस गाने पे डांस करते हो?
3: दीदी, सारे गाने पे करते हो? सारे गाने।
0: सारे? बहुत सारे। मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
3: हाँ।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
4: दीदी, मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा?
5: दीदी, मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत इंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, कहीं गए हो घूमने? नहीं?
5: हाँ।
0: बताओ।
5: बार एक योगा में कॉम्पिटिशन किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। ये दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता तो मजा आता ही है?
5: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
5: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना। हम ऐसा सोचे कि वो हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा, ये बताओ आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
2: नहीं।
0: नहीं, किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
2: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
6: कभी खाने में अच्छा नहीं लगता करेला।
0: क्या होता है?
6: कभी खाने में करेला का साग होता है ना, इसलिए।
0: करेला? अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
6: फिर खा लेते हैं थोड़ा
0: थोड़ा। थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
6: रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
3: दीदी, किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला कभी भी नहीं?
3: नहीं
0: लगता। और आपको?
5: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
2: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फैमिली और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग बात करेंगे करियर इन कंप्यूटर साइंस में। जी हाँ, करियर इन कंप्यूटर साइंस की बात अगर हम लोग करें तो कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा विकल्प है, जहां पर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन सारी चीजों से जुड़ते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, वेब डेवलपिंग, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सुरक्षा विश्लेषक, एआई, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, यूआईई, यूएक्स डिजाइनर और आईटी कंसल्टेंट, जैसे बहुत सारे विकल्प इसमें कंप्यूटर साइंस में आते हैं। आप सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से लेकर डेटा एनालिसिस, सुरक्षा और नए एआई आधारित सिस्टम के निर्माण तक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। तो इसका मुख्य विकल्प, जैसे करियर की बात करूं मैं, सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सुरक्षा विश्लेषक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनर, आईटी कंसल्टेंट, गेम डेवलपर, डेक्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियरिंग, ये सारे विकल्प इसमें आते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो साथियों, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे विकल्प हैं और आज के समय में इसका प्रचलन है और हर व्यक्ति जो है इस फील्ड में आगे बढ़कर काम करना चाहता है। मैं चाहूंगा कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करने के लिए इसको ठीक से समझे, पढ़े और आगे बढ़े। और ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और विकल्प है करियर का, जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। तो आइए इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे कुछ ही पलों में। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इस करियर के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला जो इसका एक पार्ट आता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में या वेब डेवलपर के रूप में। तो आइए इसमें बात करते हैं, इसकी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं ये है क्या चीज। वेब डेवलपर वेबसाइट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वेब डेवलपर मुख्य रूप से वेबसाइटों के लिए HTML, CSS और JavaScript जैसे तकनीकों का प्रयोग करके कोड लिखते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपर की भूमिका अधिक व्यापक होती है और वे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर जटिल एप्लीकेशन तक किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो वे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप या जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने पर काम करते हैं। उनकी भूमिका में समस्या समाधान और उचित स्तरीय इंजीनियरिंग कार्य शामिल होते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो वेब डेवलपर, ये विशेष रूप से वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि वे HTML, CSS और JavaScript जैसे भाषाओं का प्रयोग करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर भी होते हैं इसमें, वेबसाइट के उपकरणों, इंटरफेस, UI और ग्राहक के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है उस पर काम करते हैं। और एक साइड होता है बैकएंड डेवलपर, जो सर्वर साइट लॉजिक, डेटाबेस और सुरक्षा पर काम करते हैं, जिसमें वेबसाइट को कार्यक्षमता मिलती है। तीसरा एक विकल्प होता है यहाँ पर फुल स्टॉक डेवलपर, ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर काम करते हैं, जिसमें ये दोनों तरह के विकल्पों पर अच्छी तरह से अपनी पकड़ रखते हैं। और यहाँ पर एक और बात आता है समस्या और समाधान, दोनों भूमिकाओं के लिए मजबूत समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है। रख रखाव, वे बनाए गए सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों के निरंतर रख रखाव, परीक्षण और डिबिंग के लिए जिम्मेवार होते हैं। तीसरा सहयोग, टीम में काम करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। निरंतर सीखना इसका एक विकल्प है, डिजिटल परिदृश्य में बदलाव के कारण उन्हें लगातार कई तकनीकों और भाषाओं की सीखने की आवश्यकता होती है, जो वेब डेवलपर को या सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपको। आइए आगे बढ़ते हुए एक और विकल्प के बारे में बातें करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

इस करियर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसमें एक और ऑप्शन आता है विकल्प, वो है डेटा साइंटिस्ट। तो एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जो बड़े डेटा सेट से मूल्यांकन जानकारी निकालने के लिए डेटा को इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या करता है। वे गणित, सांख्यिकी और प्रोग्रामिंग कौशल का उपयोग करके व्यावसायिक समस्याओं को हल करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं, जैसे कि रुझानों की पहचान करना, अल्गोरिदम में सुधार करना और भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी भी करना है। जैसे हम लोग देखें तो डेटा एकत्रित और साफ करते हैं, वे डेटाबेस से सही डेटा निकालते हैं और उसे विश्लेषण के लिए तैयार करते हैं, मॉडल बनाते हैं, वे मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग करते हैं ताकि पैटर्न और भविष्यवाणियों की बातें की जा सके। इसके साथ विश्लेषण और व्याख्या करते हैं, वे डाटा में छुपी हुई अंतर्दृष्टि को समझते हैं और व्यावसायिक निर्णयों के लिए निष्कर्ष भी निकालते हैं, परिणाम संप्रेक्षित करते हैं, वे हितधारकों को डेटा विजुअल एप्लीकेशन तकनीकों का उपयोग करके निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। डेटा साइंटिस्ट के लिए आवश्यक कौशल की अगर मैं बात करूं तो तकनीकी कौशल प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे पाइथन, आर, सांख्यिकी और मशीन लर्निंग बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल की बात करें तो महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, संचार और रचनात्मक, ये चीजें भी उनके लिए बहुत काम आती हैं। तो डेटा वैज्ञानिकों को विशेष वित्तीय, विपणन, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और कई अन्य उद्योगों में काम मिलता है जो वहां पर अच्छी सैलरी उनको मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं एक और विभाग जिसमें एक और करियर विकल्प है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट है, उसके बाद आता है साइबर सुरक्षा विश्लेषण। ये भी कंप्यूटर साइंस के ही एक भाग है और साइबर सुरक्षा विश्लेषक कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों और डिजिटल खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे सुरक्षा उल्लंघन के लिए सिस्टम को निगरानी करते हैं, कमजोरियों का पता लगाते हैं, खतरों की पहचान करते हैं और हमलों को रोकने और प्रक्रिया देने के लिए रणनीति विकसित करते हैं। इस भूमिका में फायरवॉल और एप्लीकेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने में भी इनकी विशेषता होती है। अगर आप देखेंगे सुरक्षा की निगरानी की बात करें तो साइबर हमलों से बचाव के लिए नेटवर्क और सिस्टम की लगातार देखरेख और निगरानी करना, खतरों की पहचान करना, संभावित कमजोरियों और खतरों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना है। तीसरी बात आती है सुरक्षा रणनीतियां बनाना, संगठन के डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के लिए निवारण उपायों और रणनीतियों का विकास और कार्य करना, घटनाओं पर आधारित प्रक्रिया को जानना, सुरक्षा उल्लंघनों का साइबर हमलों की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना, जांच करना और समाधान प्राप्त करना है। रिपोर्टिंग की बात करें तो यहां घटनाओं और सुरक्षाओं की स्थिति के बारे में विशेष रिपोर्ट तैयार करना और हितधारकों को सूचित करना है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, फायरवॉल और एप्लीकेशन जैसे विभिन्न उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। इस क्षेत्र में करियर कैसे बनाएं अगर आप सोच रहे हैं तो शिक्षा आपकी होनी चाहिए, इसमें कंप्यूटर साइंस ले लें, साइबर सुरक्षा में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करें तो आप इस विभाग की दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न उद्योग मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से भी आपको काफी काम मिलता है। मजबूत विश्लेषक और संचार कौशल विकास करें जिसके बारे में आपको खुद को काम करना है, ठीक है। तो ये एक और विकल्प है साइबर सुरक्षा विश्लेषण जो कंप्यूटर साइंस में ही आता है। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और फिर बात करते हैं इसके बारे में आगे। आप सुन रहे हैं रिगवेद 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और बातें कर रहे थे हम लोग कंप्यूटर साइंस के विकल्पों के बारे में, जानकारी आपको दे रहे थे। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में एक और पार्ट आता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के समय में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कहते हैं उसे, तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वर्कआउट कर रहा है और आज के समय में बहुत करंट जिसको कहते हैं टॉपिक है, जहां पर लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है। तो ये अगर बात करें तो आर्टिफिशियल लर्निंग और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें तो इंजीनियर ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और काम करने में सक्षम बनाती है। एआई इंजीनियरिंग व्यापक एआई सिस्टम बनाते हैं, जबकि एमएल इंजीनियरिंग विशेष रूप से डेटा से सीखने और पूर्व अनुमान लगाने के लिए एआई सिस्टम के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर शॉर्ट में कहें तो एआई एक बड़ा क्षेत्र है और एमएल इसका एक उप क्षेत्र है, और दोनों इंजीनियरों का लक्ष्य मशीनों को स्मार्ट और स्वचलित बनाना है। तो इसको अगर हम लोग देखें, इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसा सिस्टम बनाना जो मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल कर सके, और जैसे कि सूचना, निर्णय लेना और समस्याओं को हल करना। दूसरा कार्य, मशीन लर्निंग टेक्निक्स और अन्य तकनीकों को मिलाकर संपूर्ण एआई सिस्टम बनाना। उदाहरण के तौर पे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें जो सड़क पर निर्णय लेती है और स्वचलित है कमांड के आधार पर। दूसरा एमएल की बात करें तो मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीनों को डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने की क्षमता प्रदान करना, ताकि वे समय के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सके। अल्गोरिदम बनाना और उनका उपयोग एआई सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए करना है, और यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम जो आपको आपके देखे गए वीडियो के आधार पर सुझाव देता है, तो ये भी एक एआई या मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और जिसको आप आए दिन नए नए चीजें, नए नए सॉफ्टवेयर जो एआई के टूल्स है वो मोबाइल में बच्चे और बड़े यूज कर रहे हैं। तो इसी का एक नतीजा चैट जीपीटी भी है और बहुत सारे इसके विकल्प है। तो आइए आगे बढ़ते हुए, इसमें एक और भाग आता है कंप्यूटर साइंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वो आईटी पेशेवर होते हैं जो क्लाउड आधारित इंटर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं और रखरखाव करते हैं। वे व्यवसायों को कुशल, सुरक्षित और स्टेबल क्लाउड समाधान प्रदान करने में मदद करते हैं, जिसमें क्लाउड और उस पर माइग्रेशन, प्रदर्शन और लागत का अनुकूल और समस्याओं का निवारण इसमें शामिल है। इस क्षेत्र में आर्किटेक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स जैसे कई विशेषताएं बनी हुई हैं।

यहाँ पर आते हैं कुछ चीजें जैसे कि डिजाइन और कार्य। व्यवसाय व्यवसायिकों को समझाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए क्लाउड समाधानों को डिजाइन करते हैं। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट और रखरखाव, प्रबंधन और रखरखाव। क्लाउड संसाधनों का प्रबंधन करना, निगरानी करना और उसको देखरेख करके ठीक से प्रभावी ढंग से हमेशा उसको उसके द्वारा काम लेना। समस्या निवारण की बात करें तो ये भी एक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर आने वाले समस्याओं को हल करते हैं और डेटा की सुरक्षा सुरक्षित करते हैं और क्लाउड प्रदर्शन को और अच्छी तरह से अनुकूल बनाते हैं। और आखिरी में इसमें ऑटोमेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लाउड संसाधनों के प्रबंधन और स्वचालित करने के लिए DevOps और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जैसी पद्धतियों का उपयोग करके ऑटोमेशन मोड पे चीजें होने लगती है। क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड स्पोर्ट इंजीनियर और शिक्षा, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर इसको आपको करना है कंप्यूटर साइंस का ये एक भाग में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो यहाँ पर आपको अपना जो है अक्सर आईटी क्षेत्र में कुछ विशेष प्रमाण पत्रों के माध्यम से भी आप इन चीजों को कर सकते हैं या आप प्रॉपर डिग्री लेकर भी इस पे अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई अलग अलग विभागों के बारे में। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपको वो सारी चीजें मोटे तौर पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो खास चीजें थी वो मैंने आपको जानकारी दी है। फिर भी कभी इस पर और एक एपिसोड जरूर बनाएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर इन कंप्यूटर साइंस। इस विषय को लेकर हमने काफी बातें की और यहाँ पर जो अलग अलग चीजें हैं, और एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो था वीडियो गेम बनाना। गेम डेवलपर जिनको कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है विकल्प है आज के समय में, क्योंकि आप देखते हैं बच्चे वीडियो गेम बहुत खेलते हैं और कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, किसी न किसी तरह से लैपटॉप हो, उसमें वो गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी एक भाग आता है जहां पर आप गेम डेवलपर वीडियो गेम बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें कोडिंग, प्रोग्रामिंग और गेम के सभी घटनाओं को एक साथ शामिल करते हैं। वे गेम डिजाइन के विचारकों को कोड और अन्य तकनीकों का उपयोग करके एक खेलने योग्य गेम में बदलते हैं। इसके लिए गेम इंजन का उपयोग किया जाता है, C++ या C जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान आपको है तो आप इन्हें अच्छा कर सकते हैं। तो गेम बनाना, वे गेम के विजुअल और मैकेनिक्स को कोड करके वास्तविकता में लाते हैं। दूसरा, वे डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान तकनीकी चुनौतियों का समाधान करते हैं और वे डिजाइनरों, कलाकार और परीक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि गेम बनाना और उसे यूज करना ये एक समूह का काम है। वे गेम के नियम, पात्रों की हरकतों और अन्य यांत्रिकों को प्रोग्राम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है गेम डेवलपर कौशल है, जिसको जितना अच्छी तरह से आप सीखेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे और आप उतना अच्छा कमा पाएंगे। तो साथियों, कंप्यूटर साइंस में बस इतना ही आज के लिए, और मैं चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजों को जानना चाहते, करना चाहते हैं या रुचि रखते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा विकल्प है जिससे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। तो चलिए, आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते एक नए करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन

0: बात आई, बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
4: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
3: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड।

0: कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ. डू आई वॉन्ट देन नाउ वॉट हेज हैपनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट वेन वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएटेड.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप रेडियो पुलिरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कटायत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन।

0: है तो कौन से हैं वो थॉट?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा, एक बार समझ में आ जाए कि ये 10 कौन से है, कौन से मिरर्स हम यूज करते हैं, और फिर तो अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से मिरर में मैं अपने को देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना करके देखते हैं। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, हम परिस्थिति को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं, एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो भी बुरा है। वास्तव में परिस्थिति जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे है, उसको सही रूप से देखना चाहिए। तीसरा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ बात हुई तुरंत निर्णय पर आ जाते, फिर उसकी भी बुरी इफेक्ट होती है। हमें थोड़ा वक्त देना है, अच्छी तरह से परिस्थिति को एनालिसिस करे और फिर उसके बारे में आगे हम सोचे तो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। चौथी बात है ऑलवेज मेंटेलिटी, कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब मेरे साथ ही होता है, वो ऑलवेज मेंटेलिटी भी बुरी है। पांचवी बात है वाई मी एटीट्यूड, कि कुछ समस्या हुई तो मुझे ही हुई, हमेशा हमें नहीं होती है। कुछ समस्याएं बल हमें भी होती है, लेकिन औरों के सामने भी समस्याएं आती है, उस प्रकार से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए। छठी बात है कि हम देखते हैं कि सर्चिंग नेगेटिविटी, कुछ बात हुई उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ निकालते हैं, बल अच्छा बहुत ज्यादा हुआ है, बुरा तो बहुत थोड़ा हुआ है,
0: तब भी हम ढूंढ रहे हैं।
1: हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग में हम पॉजिटिव को ढूंढते हैं, परंतु या सर्चिंग नेगेटिविटी में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। सातवां है नॉटिंग, कि फोर्सिबली कोई बात को भूलने की कोशिश करते, वह हमें नहीं करना है। वास्तव में क्या छोड़ना है वह नहीं सोचो, परंतु क्या पकड़ना है उसको सोचो, हमें कहाँ जाना है उसके बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आठवीं बात है कि डिस्क्वालीफाइंग द गुड, अच्छा ऑलरेडी हुआ है लेकिन आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया। नवी बात है लेबलिंग, कि हम लोगों को भी लेबल करते हैं और लेबलिंग के कारण भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। और दसवां है फ्लाई मेंटेलिटी, कि जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है, मक्खी कैसे गंदगी पर ही बैठती है ऐसे हमें भी आदत हो जाती है, हम गंदे पर ही बैठते हैं। ये 10 बातें अगर व्यक्ति एक बार याद रख ले अच्छे से और सारे दिन में जो भी घटनाएं होती, फिर सोचो कि उसमें से मैंने कौन से मिरर में अपने आप को देखा। कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि एक परिस्थिति में एक के साथ दो या तीन मिरर में भी आप अपने आप को देख रहे हैं, वो तीनों को पहले पहचाने और फिर उसमें परिवर्तन करे, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव राइट थिंकिंग की भी हमें आदत हो जाएगी।
0: शिवानी, ये जो 10 रॉन्ग सडनली हमारे सामने आए हैं, इट्स एन अमेजिंग रेवोल्यूशन, लेकिन अगर नहीं चेंज हुआ तो व्हाट्स रॉन्ग?
2: क्या ये थॉट नहीं चेंज हुआ तो बहुत सारा उसका आगे बहुत सारा इफेक्ट आएगा। सारा दिन में हम, जैसे भाई साहब ने कहा, 35,000 to 50,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और आज दिन तक हम अवेयर भी नहीं थे कि वो 7 टाइप्स की हैं, उस हर टाइप में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम ये भी अवेयर नहीं थे कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर का जो पूरा प्रोसेस था हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी। एंड फिर जब हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, वी वर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट विदाउट ट्राइंग टू वर्क ऑन द सोर्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट क्रिएट क्यों हुआ। चाहे वो रिजल्ट ये था मैं फील कैसा कर रहा हूं, चाहे वो रिजल्ट ये था मैंने बात ऐसे क्यों कर दी, चाहे वो रिजल्ट ये था कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, चाहे रिजल्ट ये था कि मैं वर्क में क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं होते, फिर भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। सो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग, जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, बिकॉज वी वर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्ट जब वो अंदर डिवेलप हो रहा था अभी, बाहर तो फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट निकला। तो जब हम अपने ऊपर ये चेकिंग करने शुरू करते तो हम देखते कि वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता। थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूअसली क्रिएट कर रहे हैं, इवन जब रात को सो रहे हैं तो भी चल रहे हैं, इवन दो इट्स एट अ लिटिल स्लो स्पीड। जैसे ही थॉट्स क्रिएट होती, इट इज फॉलोड बाय फीलिंग, हमें महसूस होगा। इसीलिए जैसे आपने कहा था कि थॉट तो पता ही नहीं चलती, ये पता चलता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर आ गया, फर्स्ट स्टेज की तो मैं अवेयरनेस ही नहीं थी। ऑलरेडी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से उठ के सेकेंड डिपार्टमेंट पर आ चुका है, फीलिंग के डिपार्टमेंट पर। लेकिन अगर फीलिंग के डिपार्टमेंट पर भी मैंने चेक कर लिया, यू नो इट्स लाइक अ प्रोसेस प्लांट, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर सेकेंड स्टेज पर भी आपको पता चल गया कि फॉल्टी है, इट्स इजी ना, आप तुरंत फर्स्ट स्टेज पर वापस जाएंगे एंड वहीं के वहीं आप अपने प्रोसेस प्लांट को चेंज कर लेंगे।

0: हम फीलिंग पर भी उसको चेक नहीं करते, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कई बार पूरी दुनिया के बारे में, इट डेवलप्स माय एटीट्यूड, मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे, जो कई बार हम कहते हैं इसका एटीट्यूड ही बहुत नेगेटिव है, इसको जो देखो इसको ये नेगेटिव दिखाई देता है,
1: एटीट्यूड चिंता वाला है,
0: हाँ, इसका ये एटीट्यूड है, तो ये एटीट्यूड है मतलब क्या कि ये तो है ही ऐसा, यू नो,
1: तो मैंने एक बार एंग्जाइटी की फीलिंग क्रिएट की, घबराहट की हुई, उसके बाद आगे भी वही होती जाएगी, आगे भी, सो अल्टीमेटली हर सिचुएशन में मैं घबराऊंगी,
0: इट माइट नॉट बी इन हर सिचुएशन बट इट इज डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन, धीरे धीरे वो जाएगा व्हेन इट विल कम टू हर सिचुएशन. अभी एटीट्यूड मतलब लेट्स से आपसे मैं जितनी बार मिली मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट क्रिएट किया, तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति जो एटीट्यूड है वो उस क्वालिटी का बन, हाँ, आपके प्रति, अभी वो सबके प्रति नहीं, अभी सिर्फ वो आपके प्रति है, लेकिन अब जैसा मेरा एटीट्यूड आपके प्रति हो जाएगा वो फिर मेरे एक्शन में आएगा, यू नो, इफ आई से यू नो शी इज अ वंडरफुल पर्सन, नाउ दिस इज माय एटीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली मेरा आपसे बात करने का तरीका, आपकी हर बात को परसीव करने का तरीका, आप कुछ भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, ये बहुत अच्छे है, एंड ये अगर मेरा एटीट्यूड उसका ऑपोजिट हो, आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे मेरे को उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट डेवलप हुआ हुआ है, तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम मैंने एटीट्यूड कौन सा डेवलप किया हुआ है आपके बारे में, जैसे भाई साहब ने कहा कौन से शीशे के थ्रू हम हर चीज को देखते हैं, एटीट्यूड इज अ बिग मिरर दैट वी क्रिएट, जिसके थ्रू हमें हर चीज उस रंग के फिर दिखाई देती है. अब एटीट्यूड लेवल पर जब आ जाती बात तो हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, यू नो, कई बार कहते हैं इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ही बहुत केयरलेस है, ये सीरियसली लेते ही नहीं है, दैट्स माई एटीट्यूड, लेकिन बना कैसे, thought, feeling, attitude, now comes out into action. Action मतलब कोई word या कोई physical कर्म, action. अब जैसा मेरा action होगा, पर कई बार मैं वही action को बार बार बार बार repeat करती, then it becomes my habit. Once it has become my habit, जिसको हम कहें, you know, my संस्कार, then it's not with one person. हाँ, ये अब मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है, शुरू शायद वो किसी एक से हुआ था, जो कई बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि कई बार हमें आदत है कि ऑफिस में काम कराने का तरीका कैसा है, गुस्सा किया, गुस्सा किया, गुस्सा किया, काम करवाया, तो घर पे भी बच्चों का से वो कुछ करवाने का तरीका कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, दोस्तों के साथ भी कैसा हो जाएगा, वैसा, क्यों, बिकॉज गुस्सा करना ये मेरा संस्कार बन चुका है, गुस्से से काम करवाना ये मेरा संस्कार बन चुका है, देन इट विल नॉट रिमेन विद दैट पर्सन स्पेसिफिक, देन इट इज विद मी, बिकॉज अब ये मेरा पैकेज है, दिस इज हु आई एम, ये हर एक के साथ ये होगा, एंड आई हैव लॉट ऑफ संस्कार्स, तो ये जो मेरे सारे संस्कार्स हैं, दिस इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी. तो हर थॉट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि फाइनली इट इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी, ये मेरा व्यक्तित्व है, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी. अब हम जाते हैं पर्सनालिटी वर्कशॉप्स के अंदर, हम जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर, क्या करने के लिए, मेरी पर्सनालिटी चेंज कर दो, फिजिकल नहीं, इट्स दिस पर्सनालिटी विच इज रेडी, स्टार्ट हुई थी थॉट से, आपको चेंज करना है कुछ भी, यू विल हैव टू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ थॉट्स, एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि जैसी मेरी पर्सनालिटी होगी, हर स्टेप पे मैं वो पर्सनालिटी को लेकर जाऊंगा, तो हर स्टेप पे जैसी मेरी पर्सनालिटी होगी वो एनर्जी बाहर जाएगी, जो एनर्जी बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आएगी, जब एनर्जी वापस आती है हम उसको डेस्टिनी कहते हैं, मेरे साथ जो होता है वो मेरा भाग्य है, तो मेरी थॉट मेरा भाग्य क्रिएट करती है, और अगर मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूं तो मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूं, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य इज जस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, बट दे आर अ रिटर्न ऑफ द एनर्जी दैट आई हैव सेंट आउट. द मिनट आई अंडरस्टैंड दिस दैट आई क्रिएट माय डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द थॉट्स आई क्रिएट, अवेयरनेस बहुत ज्यादा होने लग जाती है उसके ऊपर, क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि सारी पावर आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है, चेंज द कंट्रोल, डेस्टिनी विल चेंज.

0: टोटली
1: आई थिंक वे ही ऑल्सो सेड कि आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हो उन सारी घटनाओं.
2: बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो ये कैसे वर्क करता है. वो इस तरह से वर्क करता है कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी मतलब जो कर्म आप करोगे. जब हमें लॉ ऑफ कर्मा समझ में आता है कि जो कर्म मैं करूंगा उसी का रिटर्न मुझे मिलेगा. मेरे कर्म की क्वालिटी किस बेसिस पर है, जो मेरी पर्सनालिटी की क्वालिटी है. तो इसका मतलब कर्म की क्वालिटी पर्सनालिटी की क्वालिटी से, वो थॉट की क्वालिटी से, तो कर्म का रिटर्न भी थॉट की क्वालिटी से. तो भाग्य अपने आप आपने ग्रेविटेट कर लिया ना वो भाग्य को अपनी तरफ,
1: जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप दे रहे थे बेसिकली.
2: दैट इज कमिंग बैक टू
1: मतलब जो मैंने क्रिएट किया वही मैंने पाया.
2: यस अब थोड़ा सा और एक स्टेप पर देखना है कि अगर थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है तो थॉट्स की सोर्स क्या है. पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ध्यान से कि नेगेटिव न्यूज़पेपर्स न्यूज बहुत ज्यादा ना पढ़े. इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है थॉट्स पे. गॉसिपिंग की आपने पहले बात की कि क्यों नहीं गॉसिप करें. इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट करते हैं. सेकेंड है बिलीफ सिस्टम्स. बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. कि जैसे बात हुई कि गुस्से से काम करवाना, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करो तो काम जल्दी हो जाता है. एक बिलीफ सिस्टम है. ये बिलीफ होगा थॉट उसी क्वालिटी की चलेगी, पर्सनालिटी वही बनेगी, डेस्टिनी भी उसी के हिसाब से होगी. तो इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थॉट्स चेंज होती जाएंगी, भाग्य बदलता जाएगा.
1: बिल्कुल, एक बहुत नया एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं हम कि भाग्य, जिसे हम अभी तक कह रहे थे कि बहुत सारी और बाकी चीजों पर है सिचुएशंस. तो आज जो बात है कि थॉट्स की पावर जो है वो चेंज कर सकती है.
3: और एक बात ये भी करनी चाहिए कि राइट थिंकिंग अगर हमें डेवलप करना है, सचमुच प्रैक्टिस करनी है, तो एक चार्ट लिखना चाहिए.
1: वो जो रॉन्ग है, 10 रॉन्ग
2: को राइट
3: करें. हाँ, उसको ऐसे करे कि भी सारे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी पहले लिखो, मेजर न भी लिखो. तो ये 10 घटनाएं हुई, उस समय मुझे फीलिंग्स क्या हुई, कि निराशा की फीलिंग हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, क्या फीलिंग्स आपको हुई. फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि मेरे रॉन्ग थॉट क्या थे,
1: जो मैंने 10
3: मिरर्स थे वो कौन से मिरर में मैंने उसको फिट किया, उसको लिखो कि ये मेरे रॉन्ग थॉट थे. फिर ये लिखो कि भी राइट थॉट क्या होना चाहिए, कि भी ये घटना फ्यूचर में हुई तो मैं ये राइट थॉट करूंगा. उसे फिर रिपीट करिए कि बस फ्यूचर में घटना ही मैं यही करने वाला हूं. तो आत्मा में भी वह जाएगा कि फ्यूचर में होगा, आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया कि मैं यही राइट थॉट करने वाला हूं. ऐसी प्रैक्टिस 3-4 सप्ताह भी करने लगो, ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग करेंगे.
1: ये हर रोज शाम को करें या हर एक घंटे बाद करें?
3: एक्चुअली
1: बिकॉज वो याद ही नहीं रहेंगी घटना.
3: टाइम मिले तो भले 2-3 घंटे बाद भी करो. अगर कोई कहे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, सारा दिन मैं बिजी रहता हूं, तो बोले शाम को भी करी.
2: बेसिकली एक छोटी सी नोटबुक अगर आपके पास है, यू शुड जस्ट स्क्रिबल इट डाउन इमीजिएटली.
1: याद नहीं रहता फिर.
2: एक्चुअली उसी टाइम अगर करते हैं ना, तो एक तो उस टाइम आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेते हैं. लेट्स से अभी मेरे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई और मैं आधा पौना घंटा उसी के बारे में सोच रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ माइंड जा रहा. क्यों नहीं, लेट मी डू दिस एक्सरसाइज उसी टाइम, सो दैट आई इवन सेव दैट हाफ एन आवर ऑफ एनर्जी ऑफ डिप्रेशन.
1: पहली चीज तो ये कि ये ब्लेम गेम जब खत्म होगा ना, अभी तक भी जब बहुत मेजर वाले इश्यूज आते हैं, इट्स नेवर लाइक कि मैंने क्रिएट किया.
2: सी, इश्यू बहुत बड़ा हो सकता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट. किसी ने चीट किया मुझे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो बच्चा है, चीट किया मुझे, इट्स अ बिग इश्यू, देर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन फिर भी थॉट तो मुझे क्रिएट करना है ना.
1: वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जो फीलिंग आई है, जो फीलिंग ऑफ हर्ट, रिजेक्शन या जो कुछ भी, एंगर जो भी है, वो मैंने क्रिएट की, ये एक्सेप्टेंस और रजिस्ट्री होना, ये भी अभी वक्त लग रहा है. Why does it take time? I don't want to take the onus or what it is.
2: Because we were not aware also, na? हम देख ही नहीं रहे थे कभी भी. जितना मैं बाहर देखती हूँ, मुझे हर चीज सिर्फ बाहर ही दिखाई देती है. मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, कुछ नॉट सो अच्छा, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा. तो ऑटोमेटिकली मैं कंक्लूजन क्या करूंगी कि ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है, ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है. दिस इज लाइक एन ऑटोमेटेड मोड, कि ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, आपकी कोई चॉइस नहीं है. मशीन और ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क है? मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है. ह्यूमन बीइंग मींस एट एवरी स्टेप अ चॉइस, कि भले कि

0: किसी ने बटन प्रेस किया भी है, आपको ऑन होना है या ऑफ होना है, इट्स योर चॉइस, नाउ डिसाइड। आपको ऑफ होना, ऐसे होके बैठ जाना है, ऑन होना, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और इस केस में तो सिर्फ दो चॉइसेस नहीं है, ऑन एंड ऑफ बहुत सारी चॉइसेस है। एंड जितना हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें लगता है कि हर सिचुएशन में एक्चुअली कितनी सारी चॉइसेस थी। हमने हमेशा वो प्रोग्राम्ड चॉइस ले ली कि इन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगना ही है, गुस्सा तो आना ही है। सो वी वर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी, ऑफ एनी अदर चॉइस ऑन दैट।
1: इनोवेशन,
0: क्रिएटिविटी।
2: और कारण है कनुप्रिया बहन की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बस मुख्य बात है कि हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इवन मेरे थॉट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, इसकी जिम्मेदारी अगर मैं ले लूँ,
2: एक ले लो फिर और सब कुछ
1: सारे हो जाएंगे।
0: और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज स्ट्रगल हो रही है। सी, पेरेंटिंग स्ट्रगल, जॉब स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, हर चीज में तो एक रिलेशनशिप्स स्ट्रगल, हर एक चीज में क्यों स्ट्रगल हो रहा है? क्योंकि मैं जो ये सारी जिम्मेवारियां उठा रहा हूं, मैं पहले अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि वो थॉट बीज है, ये पूरा उसका वृक्ष है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। अभी हम निभा रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट तरह से निभ रहे हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना, लेकिन शायद मेरा ही थॉट और व्यवहार मेरे बच्चे को इमोशनली वीक कर रहा है, तो देन एम आई फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात, शायद आई एम क्रिएटिंग डैमेज, आई एम क्रिएटिंग अ डैमेज, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल फॉर माई चाइल्ड ग्रोथ, तो दैट आई हैव टू क्वेश्चन। बट वाई विल आई नॉट बी एबल टू डू दैट? पेशेंस नहीं है कि मैं नहीं प्यार से समझा सकता, मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी ली है।
1: ओके, अपनी जिम्मेवारी नहीं ली, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ उसकी नहीं ली। इट्स नॉट दैट इजी। सी अगेन, अभी भी मैं अगर सोचूं, मुझे कोई चीज बुरी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, और मैंने थॉट क्रिएट जाने की भी कोशिश की कि मैं जाके देखूं कि क्या है थॉट, तो वो थॉट जो है वो है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो सिचुएशन है। वो अब उसको मुझे ठीक करने के लिए आई विल वेट फॉर द सिचुएशन टू कम, और आई कैन से इधर आई गिव अप देम एंड आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ है वो इशू। ये चेंज कैसे होगा ये थॉट?
2: इसके लिए एक बात जो फाउंडेशन समझना चाहिए कि परिस्थितियों में जान नहीं होती है, जो हम
1: थॉट में जान है।
2: हाँ,
0: एनर्जी तो वही
2: है, सिचुएशन आर लाइफलेस, हम जो उसको लाइफ देते हैं अपने थॉट्स से देते हैं, तो बस थॉट्स को मुझे चेंज करना है और वो मेरे कंट्रोल में है,
1: क्योंकि हमने उस पे जाके देखा।
2: एंगल को तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ, कौन से एंगल से मैं आपको देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट लेट मी चेंज द एंगल।
0: और उसके लिए अगर हम कॉन्शियसली प्योर और पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं जबकि कोई परिस्थिति भी नहीं है, अगेन वी थॉट फर्स्ट स्टेप वॉज जब कोई परिस्थिति नहीं है चेक करो कैसी थॉट्स है, दूसरी स्टेप जब कोई परिस्थिति नहीं है कॉन्शियसली पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं, यू नो, चैनलाइजिंग माई माइंड इन द राइट डायरेक्शन। गिरीश भाई ने पहले कहा था एक बार कि जिस डायरेक्शन में थॉट्स फ्लो होंगे ग्रूव्स उसी तरह बनते जाएंगे, पानी जैसे फ्लो होगा। तो अब हम कुछ समय रोज निकालें अपने लिए कि हम पानी को डिलिबरेटली उस तरह से चैनलाइज करें जिस तरह से वी वॉन्ट माई माइंड टू वर्क। अपने आप नहीं हो जाता है, सिचुएशन आने पर नहीं हो आता है, तो तब करना होगा व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट। और इसीलिए मेडिटेशन हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, कि सुबह उठ के कुछ पढ़े बिना, किसी से बात करे बिना, कुछ भी और करे बिना, क्योंकि जैसे ही आप यू नो एक्टिविटी में चले गए आपका ये माइंड फिर हो जाता है। कई बार तो आप चेक करें, जब आप सुबह उठते हैं पिछले दिन की बातें वो ऑटोमेटिक अभी भी चल रहे हैं, लाइक अ कमेंट्री वो माइंड में चलता जा रहा है।
1: पहली आंख खुलती है और वो सारा का सारा बैकलॉग सामने,
0: एक्चुअली वो सारा का सारा बैकलॉग सामने नहीं आया, नींद में भी वो चल रहा था। अभी तो आंखें खुली सिर्फ, इसीलिए उठने के बाद आप रेस्टेड फील नहीं करते, आप फील नहीं करते कि आप चार्ज थे, क्योंकि रात को सोने से पहले हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया था, आंखें बंद हो गई, शरीर सो गया, माइंड अभी भी चल रहा था। सुबह जैसे ही आंखें खुली वी सी के वही सीडी बज रही है अंदर, वही वाले गाने सारे बज रहे हैं अंदर, वो रात भर भी बज रहे थे। आज मेजोरिटी लोगों से आप पूछो सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है? यू नो, जो आपने टाइम का अलार्म लगाया है

0: 5 मिनट और किसका मन करता है सोने को, मेच्योरिटी विल से यस,
1: सब बोलेंगे
0: यस। नाउ व्हाई आप 5 घंटा 6 घंटा सो लिए, उसके बाद 5 मिनट और क्यों सोना है? क्योंकि जैसे ही उठते हैं वी स्टिल फीलिंग वेरी टायर्ड, बॉडी ठीक है बट माइंड अभी भी बहुत थका हुआ, क्योंकि वह पूरी रात भी चल रहा था कंटिन्यूसली। तो इसलिए अपनी थिंकिंग पर वर्क करें कॉन्शियसली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठते ही। नींद बहुत अच्छी होगी, सुबह की तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो सारा दिन का काम इजी हो जाएगा उसको करने के।
1: मिस्टर पटेल, यहाँ हम अलग अलग थॉट्स को देख रहे थे, अभी एलिवेटेड थॉट्स पर हम अभी आ रहे थे कि वो उनमें कौन से थॉट्स शामिल हैं।
2: अभी एलिवेटेड थॉट जैसे हमने देखा टॉक्सिक थॉट, वो नेगेटिव इफेक्ट में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट को देखे तो एलिवेटेड थॉट सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो एलिवेटेड थॉट है वो हाई एनर्जी थॉट है, उसमें ऊर्जा की हमारी एनर्जी भाई होती, आप खुद भी उमंग उत्साह का अनुभव करते। साथ साथ जो एलिवेटेड थॉट्स है वो जैसे टॉक्सिक थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ऐसे एलिवेटेड थॉट्स है वो पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंडोर्फिन्स, नॉर एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सीरोटोनिन, ये सब अच्छे केमिकल्स है कि जिसके कारण ये जो फील गुड की बात थी वह फीलिंग्स आती है। तो एलिवेटेड थॉट से ये केमिकल रिलीज होते हैं, इसके कारण ये सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: और इनमें कौन से थॉट शामिल होंगे, कौन से वो थॉट?
2: अभी एलिवेटेड थॉट्स किसको कहेंगे कि वी नो वीच आर रियली एलिवेटेड, एक रियल इसमें हम जो डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, उससे भी जो ऊपर के थॉट है, सबसे पहले तो सेल्फ के बारे में कि भी सेल्फ की एलिवेटेड लेवल क्या है, कि मैं रोल कॉन्शियस नहीं हूं, मैं रेस कॉन्शियस भी नहीं हूं, स्किन कॉन्शियस नहीं हूं, आई एम अ सोल, आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, उसमें माइंड को स्टेबिलाइज करना वह सबसे पहला एलिवेटेड थॉट है। फिर उससे आगे अगर देखना है कि उससे आगे एलिवेटेड थॉट है कि आत्मा के गुण मेरे कौन से हैं, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूं, शांति का खुट खजाना मेरे में समाया हुआ है, शांति को कहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम सही चीज को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। शांति अच्छी चीज है परंतु हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वह है हमारे अंदर ही। यह थॉट अगर कि मैं आत्मा ही शांति से भरपूर हूं, आत्मा के सातों गुणों का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है, ये दूसरा एलिवेटेड थॉट है। और थर्ड एलिवेटेड थॉट कि परमात्मा से मेरे संबंध क्या है, मेरा सोर्स है वह परमात्मा ही है, बस परमात्मा से मुझे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है, वह सही सोर्स होगा तो भी सब प्राप्तियां सहज हो जाएगी। आज हम टेम्परेरी छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भी किसी को पानी दे दो उससे तो अच्छा है कि भी पानी दिया एक दिन प्यास बुझी, उसको नल दिखा दो कि भी नल कहाँ है तो जीवन भर उसकी प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझना, उससे मन बुद्धि का संबंध जोड़ना, वह सबसे बड़ा एलिवेटेड थॉट है।
0: बहुत सारे भाई बहने जो टीवी का प्रोग्राम ये काफी समय से देख रहे हैं वो अपना अनुभव शेयर करते कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये थॉट हम जितनी बार अपने साथ क्रिएट करते हैं वी स्टार्ट फीलिंग गुड इमीडिएटली। कोई परिस्थिति भी आती है तो हम तुरंत अपने आप को ये थॉट क्रिएट करते आई एम अ पीसफुल सोल। तो थॉट चेंज की फीलिंग चेंज हो गई, कर्मा चेंज हो गया, डेस्टिनी चेंज हो गई, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम। लेकिन ये आई एम अ पीसफुल सोल उस टाइम कैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे, अगर मॉर्निंग में जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो 5 मिनट बैठकर अपने माइंड को ये तरह की थॉट्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कराई थी। एंड एलिवेटेड थॉट्स क्यों अच्छी लगती हैं, क्योंकि दे आर द ट्रूथ। तीनों बातें जो बताई कि आई एम अ सोल, सोल की क्वालिटीज और आत्मा का पिता परमात्मा कौन, ये तीनों चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी सारी चीजें लेबल्स हैं, अक्वायर्ड हैं, ये तीनों चीजें परमानेंट हैं। बाकी सब चीजें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है, टेम्पररी है, इसलिए हमेशा फियर बना हुआ है। जैसे ही आप ट्रुथ पर आ गए जो इटर्नल है तो फियर एंड डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ऑटोमेटिकली फीलिंग कैसे आएगी, फील वेरी गुड। तो एवरी मॉर्निंग सिट एंड शेयर विद योर सेल्फ, अपने आप को समझाओ

0: कौन हूँ, गुस्सा करने से काम होता है? नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल. तो पीसफुल सोल काम कैसे कराएगा?
1: पीसफुली.
0: दिस इज सेल्फ टॉक, सेल्फ लर्निंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइफ स्किल्स. कि अपने आप को वो स्किल्स सिखाना कि आज सारा दिन में मैंने जो कुछ करना है मुझे इन स्किल्स को सीख कर फिर करना है, एवरीथिंग विल चेंज दैट.
1: तो आप दोनों हमारे साथ हैं, थैंक यू. अभी तक जिस तरह से जैसे शिवानी ने भी कहा कि एक पूरी साइकिल है, तो मेरा अगर एटीट्यूड है, मेरे थॉट्स के कारण मेरा एटीट्यूड है किसी के प्रति या उस वो कर्म में आता है, उस एटीट्यूड फिर फीलिंग पीछे जाए और थॉट कैसे बनता है वो उसको देखना शुरू करें. ये है वो स्किल, ये है वो टेक्निक जो अभी तक कहीं मिसिंग थी. लेट्स लर्न इट. लर्न करेंगे, उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन परिवर्तित होगा. तो इस परिवर्तन को महसूस करें. कोई बात मन में आ रही है, आप हमारे साथ फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org.
2: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: मुगल हुकूमत के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर। क्रांति के लिए नायक की जरूरत होती है, मगर 1857 की क्रांति का नायक कौन बनता? भारत में कोई ताकत ऐसी न थी जो अंग्रेजों का सामना कर पाती। ऐसे में क्रांतिकारियों की निगाहें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर पर जा टिकी और उन्हें क्रांति का नायक बना दिया गया। बादशाह के नेतृत्व में 4 महीने तक जंगी आजादी के मतवालों ने अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया। हर कदम पर खूनरेज मुकाबला हुआ। जब अंग्रेजी फौजें लाल किले की तरफ बढ़ने लगी तो बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पनाह लेनी पड़ी, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ युद्ध में शिकस्त की बात होती तो और बात थी। अंग्रेजों ने बर्बरता की सभी सीमाओं को पार करते हुए उनके चारों शहजादों को कत्ल कर दिया और उनके सिर बादशाह के सामने भिजवा दिए। बादशाह ने अपना जज्ब नहीं खोया। शहजादों की लाशें शहर कोतवाली के सामने लटका दी गई और उनके कटे हुए सिर जेल खाने के सामने खूनी दरवाजे पर। जफर, जो एक शायर भी थे, सिर्फ इतना ही कह सके, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बादशाह को कैद करके बर्मा भेज दिया गया। बादशाह से कहा गया था कि यदि वे अंग्रेजी हुकूमत से दया की याचना करें तो उनकी सजा माफ हो जाएगी, मगर बादशाह ने ऐसा अपमानित और गैर शाही कदम उठाने से इंकार कर दिया। रंगून के जेलखाने में भारतवर्ष के अंतिम मुगल बादशाह ने 7 नवंबर 1862 को प्राण त्याग दिए।
2: अरे राजू, आज दूध वाला नहीं आया अब तक?
3: अरे नुक्कड़ तक देखा हूँ काका।
2: अरे तू रहने दे भाई, तू रहने दे, नहीं तो वहाँ जाके तू भी वहीं बैठ कर रह जाएगा। अरे लो आ गया राम रतन, तू दूध ले ले, मैं जरा उन लोगों से दुआ सलाम करके आता हूँ। बाबूजी लोग आज काफी दिन बाद आए।
4: अरे कैसे हो काका जी?
2: बस हुजूर कृपा है आपकी, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ आप लोगों का।
5: हाँ, मेरी तबीयत जरा गड़बड़ चल रही थी तो बस मेरे ही घर पे संभाल लेते थे बेटे, बाहर निकलना ही नहीं हुआ। और आप कैसे हैं काका?
2: आप लोग आते रहा करो रजा भाई। अरे उम्र तो मेरी हो चली है, बस ये ढाबा ही जिंदगी हसीन कर देता है।
5: बड़ा शायराना अंदाज हो रहा है, क्या बात है मियां।
2: अरे बस, वैसे आपने ठीक पकड़ लिया रजा भाई। असल में इन दिनों बहादुर शाह जफर के ऊपर एक किताब पढ़ रहा हूँ। अरे वो अपने नाटक वाले बच्चे आते रहते हैं ना, उनमें से एक तो बड़ा ही अच्छा लड़का है, हर बार मेरे लिए काम की कोई न कोई चीज पढ़ने को जरूर ले आता है। वो इस बार बहादुर शाह जफर पर कुछ दे गया, बस शायद वो ही दिमाग पर सवार है।
5: तो आज कल जफर के बारे में पढ़ रहे हैं? क्यों मियां?
2: हाँ। अरे आइए आइए मुकेश भाई, कैसे मिजाज हैं?
4: अरे काका जी, ढाबा तो बड़ा खूबसूरत हो गया है।
2: मुकेश भाई, आपका गाना सुने अरसा हो गया है। पहले तो आप लोग जब भी आते थे तो मेरे ढाबे पे क्या महफिल जमती थी।
5: हाँ यार मुकेश, कुछ सुनाओ यार आज तो।

0: काका, असल में तीन चार लोग तो तबादले में बाहर चले गए हैं, दो एक लोगों ने घर इतनी दूर बना लिए हैं कि बस।
1: अरे भाई, शहर आज जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हम आप पल भर मिल लेते हैं, ये क्या कम है।
0: मुकेश यार, कुछ मूड बन रहा हो तो सुना दो।
2: अरे अब क्या गाना वाना यार, उम्र हो चली है, अब ऐसे मैं कहाँ सुनना और सुनाना, मुझे भी गाए हुए काफी दिन हो गए। अच्छा चलो, आज जफर की बात उठी है तो उन्हीं की एक गजल सुनाता हूँ।
3: गई यक बयक जो हवा पलक, नहीं दिल को मेरे करार है, करूं इस सितम का मैं क्या बयां, मेरा गम से सीना पिदार है।
0: वाह वाह मुकेश भाई वाह, सच में जब इंसान नेकी और इल्म से खराबोर होता है तो जाकर इतनी सुंदर रचनाएं बनती है।
2: हाँ, बहादुर शाह जफर एक ऐसी ही शख्सियत थे असल में, जिन्होंने न सिर्फ अच्छी शायरी लिखी बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ उठी पहली बगावती आवाज को बुलंद करने में अपना पूरा दमखम लगा दिया।
1: असल में मुकेश भाई, मैं तो सिर्फ उनकी शायरी के बारे में ही ज्यादा जानता हूँ, पर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या योगदान दिया प्लीज थोड़ा बताओ।
0: हाँ काका, बिल्कुल ठीक है। बहादुर शाह जफर की शायरी और गजलों को लोग पसंद तो करते ही हैं, पर सूफी दर्शन, फारसी का विद्वान इब्राहिम ज़ोक और मिर्ज़ा ग़ालिब जैसे महान शायरों का शागिर्द एक शहंशाह इतनी अच्छी सियासी सूझबूझ भी रखता था, ये बात वाकई दिलचस्प। क्यों भाई मुकेश?
2: हाँ, पर जमाने का दस्तूर देखो कि सब कुछ जब दिलचस्प होने लगे और अच्छे से गुजरने लगे तो जैसे कोई नजर सी लग जाती। हाँ, नजर ही लग गई थी हमारे लिए।
4: सच ही कहते हैं कि तारीख अपने आप को जरूर दोहराती है। देखो ना, बाबर और अकबर की ही तरह आज हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हमारे हाथ पे है।
5: आलम पना, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की जमीन को अपनी मां से बढ़कर समझा, इसकी इज्जत का सौदा उन्होंने कभी नहीं होने दिया, हर तरह से अपना फराइज अदा किया। अब शायद फर्ज निभाने की बारी हमारी है।
4: ठीक कहते हो जमा वक्त, हम अपनी इस पाक सरजमी का सौदा हरगिज नहीं कर सकते, पर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान का सौदा क्यों ना तय करना पड़े।
6: आने वाली तारीख इस बात की गवाह रहेगी अब्बा हुजूर कि वतन की आन बान और उसके वजूद को बरकरार रखने के लिए शहंशाह बहादुर शाह जफर ने बददिमाग फिरंगियों से लोहा लिया था, और वो भी तब जब तकदीर की डोर दुश्मनों के हाथ थी।
4: आमीन आमीन, ऐसा ही होगा मेरे बच्चों, ऐसा ही होगा।
7: हुजूर आलम, नाना साहब हुजूर से मुलाकात करना चाहते हैं।
4: उन्हें आने दिया जाए।
2: कानपुर के पेशवा नाना साहब उन दिनों अपने खास सहयोगी अजीमुल्ला खान की सलाह पर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। दरअसल वो तीर्थ यात्रा यात्रा न होकर एक कूटनीतिक यात्रा थी, लेकिन अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने यात्रा पर धार्मिक चोला चढ़ा दिया था।
8: बिठूर का नाना धुंधुपंत साक्षात बादशाह के दर्शन कर धन्य हुआ।
4: आइए नाना साहेब आइए, रौनक तो इस लाल किले की बड़ी जो आपके मुबारक कदम यहाँ पड़े, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
8: शर्मिंदा ना करें श्रीमान, दरअसल अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान आपके दर्शन की अभिलाषा हुई, हम यहाँ आ गए।
4: हम अक्सर आपकी इस यात्रा के बारे में सुनते रहते हैं।
8: जहाँ पना, भारत का कण कण आज सुलग रहा है, गोरों ने हमारे देश पर ही नहीं एक एक देशवासी की आत्मा पर हमला किया है।

0: उन्होंने हमारी स्वतंत्रता पर सवाल उठाया है। वो शायद भारतवासियों की शांति प्रियता को उनकी कमजोरी समझ बैठे, किंतु वे शायद भूल गए हैं कि शांति प्रिय देशवासियों के हृदय में धधकती हुई ज्वाला है, जो समय आने पर उन्हें राख के ढेर में तब्दील कर सकती है।
1: आप ठीक कहते हैं नाना साहब। आज सारे हिंदुस्तानी ये बात समझ चुके हैं कि हिंदू, मुसलमान, मुगल, मराठे, इन सबसे अलग हमारे एक और वजूद है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की आबरू के लिए हम जान लड़ा देंगे।
0: आलमपना, आज हर धर्म, जाति और तबके के लोग फिरंगियों से असंतुष्ट हैं। किसी को अपना धर्म भ्रष्ट होते दिखता है तो किसी को अपना व्यापार नष्ट होते दिखता है। प्रजा व सामान्य जन का कष्ट तो छुपा नहीं है, और फिर हम राजाओं, जागीरदारों पर जो गुजर रही है उससे आप तो भली भांति परिचित हैं ही।
1: अब्बा हुजूर, मेरठ, लखनऊ और इलाहाबाद के साथ ही दूसरी छावनियों से भी खबर है कि कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर अंग्रेज हिंदुस्तानियों के जज्बात से खेल रहे हैं। छावनियों में इस बात के खिलाफ बेहद गुस्सा और बेचैनी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है।
2: जी अब्बा हुजूर, गोरों के खिलाफ आवाज अब बुलंद होती जा रही है। बगावत करने वाले अब आवाज अपना सर उठा रहे हैं, और बगावत की बयार का कुछ ऐसा असर है कि उनके जरिए अब कोई भी खबर सिर्फ 3 दिनों में हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जा सकती है।
0: आलमपना, ये तो सच है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी उठ रही है, लेकिन चिंगारियों को शोलों में तब्दील करने के लिए एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। वो नेतृत्व जिसका हुक्म हर हिंदुस्तानी को कबूल हो।
1: आलमपना, आज सारे हिंदुस्तान की निगाहें आप पर हैं।
2: जी अब्बा हुजूर, आप हमारे खानदान की रवायत को और आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान की आजादी पर घिराए अब्रू को हटाएं। आज सारा हिंदुस्तान आपसे यही चाहता है।
1: लेकिन हमारी तो उम्र हो चली है और हम अपना दिल बस उस खुदा की इबादत में लगाना चाहते हैं जिसने ये सारी कायनात बनाई है। आज आपको उसी खुदा का वास्ता, उसी की बनाई कायनात के इन बंदों को आपकी जरूरत है।
0: अपनी प्रजा को निराश मत कीजिए जहाँ बना।
2: मान जाइए अब्बा हुजूर, आज नाना साहब की आवाज में पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। मान जाइए।
1: ठीक है, हमें मंजूर है। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो हम आजादी की मशाल जलाएंगे। बस एक शर्त है कि उस मशाल की आग से बेगुनाहों को नहीं झुलसाया जाए। हमारी लड़ाई अंग्रेजी निजाम से है, सारे अंग्रेजों से नहीं। हम उनकी औरतों और बच्चों से कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि इंसानियत के उसूलों के खिलाफ हो।
0: आप फिक्र ना करें आलमपना, भारतीय परंपरा पर हम कोई कलंक नहीं लगने देंगे। अब आज्ञा दें जिससे हम जल्दी स्वतंत्रता के सैनिकों को खबर पहुंचा सकें कि उन्हें आपका कुशल नेतृत्व मिल चुका है। विजय हमारी होगी।
1: आमीन।
3: बादशाह सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर की सहमति के बाद आजादी के परवानों की हिम्मत और बढ़ गई। कंपनी सरकार के खिलाफ बागियों के तेवर तेज हुए तो अंग्रेजों को भी खबर लग ही गई कि बादशाह और शाही महल के बाशिंदे अब बागियों के साथ हैं। लिहाजा जल्दी ही शाही महल अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गया और असर अब महल के अंदर भी दिखाई दे रहा। महल के बाहर अब अंग्रेजी पहरा था और बादशाह अपने ही महल में नजरबंद थे।

0: आदाब अम्मी जान।
1: आओ कमर, अंदर आ जाओ। क्या बात है बेटी, परेशान दिख रही हो।
0: परेशान तो हमें सारे लोग नजर आते हैं अम्मी। क्या हुआ है लाल किले को? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। ये आपकी पेशानी पर पड़ी सलवटें, ये किले पर छाया अजीब सा खामोशी का साया, और हुजूर की कलम से निकलता दर्द का ये दरिया, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है मानो कयामत आने वाली हो।
1: कयामत ही आने वाली है बेटी, सच कहती हो।
0: ऐसा क्यों कहती हैं अम्मी?
1: और नहीं तो क्या, ये सब क्या कयामत से कम है? आज हम शाही नहीं बल्कि कैदी हैं, अपने ही महल में नजरबंद कैदी। फिरंगियों ने किले को चारों तरफ से घेर रखा है, और शहजादे मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर को अंग्रेज गिरफ्तार कर किले से ले गए हैं बेटी।
0: या अल्लाह, लेकिन क्यों अम्मी जान?
1: बेटी, जिल्ले इलाही ने हिंदुस्तान की सरजमी को गुलामी के अंधेरे से निकालने के लिए खुद आगे बढ़कर जिहाद की मशाल थामी। क्या मुगल, क्या मराठे, हिंदू मुसलमान सब ने साथ मिलकर सामना किया अंग्रेजों का, और रंग लाई मेहनत।

निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया ये इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये होंठ सूखे सूखे ये भाल रुखे रुखे बोलो छाई उदासी क्यों यारो यारो नीलाम करो तुसी हमसे उधार ले लो मस्ती अरे हसी का नाम तंदुरुस्ती अरे यारो नीलाम करो तुसी हमसे उधार ले लो मस्ती अरे हसी का नाम तंदुरुस्ती यारो नीलाम करो तुसी।

0: एक राह पर चला दो ना। अरे हवा सीधी सीधी सांझ पीरी पीरी देखो समा सुहाना कैसा यारो यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती अरे हस्ती का नाम तंदरुस्ती यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती अरे हस्ती का नाम तंदरुस्ती यारो नीलाम करो सुस्ती
1: आँख ना चुराओ ना चुराओ रूठ कर न जाओ आँख ना चुराओ रूठ कर न जाओ ए न जाओ आँख ना चुराओ।

0: तीर मार गोरी।
1: अरे हाँ, चोरी चोरी
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है। और ये स्व स्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति। और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है टोटली? ये टोटली मेरी चॉइस है। और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: रहा. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांती.
2: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग ब्लेस.
3: थैंक यू
2: सिस्टर. कल किसी से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही थी. तो मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा. पहले तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि द यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग यू और ब्लेसिंग यू. एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दैट बिकॉज अगेन इससे कनेक्टेड मैं सवाल पूछना चाहूंगा. द यूनिवर्स इज ओनली रेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल एटीट्यूड दैट यू आर एमिटिंग. यहां तक. वॉट इफ एवरी वर्ड यू सेड were a wish to the universe, would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Now, make sure to only put out ones that you want back. Yahan law of attraction kehta hai, you don't attract what you want, you attract what you are.
3: Perfect. This is all that we have been discussing since the last

0: many days. You don't attract what you want, you attract what you are. And what are you? Thoughts, feelings, attitude, starting from belief system. अब जब हमें ये वाली बात समझ में आ जाती है पूरी कंप्लीट, अगर हम समझ लें इस इक्वेशन को कि ये कैसे चल रही है, कैन आई अफोर्ड टू हैव अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम?
1: कैसे पता चले कि मेरा रॉन्ग बिलीफ है कि राइट बिलीफ है?
0: अच्छा, टेंशन इज नेचुरल. एक बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम लिया तो सारा दिन में काम करते हुए मन ने कहा टेंशन तो होती है, टेंशन तो होगी ही, चिंता तो नेचुरल है, तो चिंता होती गई. वो एटीट्यूड में आया, एक्शन में आ गया, पर्सनालिटी वैसे बनती गई, डेस्टिनी मेरी क्या हुई?
1: फुल ऑफ टेंशन,
0: टेंशन से रिलेटेड बीमारियां, टेंशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो मेरा टीम मेंबर्स के साथ आया, क्योंकि टेंशन इज नेचुरल, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही था कि टेंशन इज नेचुरल. आज तो सिर्फ टेंशन इज नेचुरल भी नहीं कहते, टेंशन इज गुड, मतलब स्ट्रेस इज गुड. Because stress is the driving force. Stress नहीं होगा तो हम बहुत passive हो जाएंगे.
1: Use stress.
0: Good stress. इतना strong belief system हो जाएगा तो destiny भी वही होगी. अब कह रहे हैं चाहिए खुशी, चाहिए शांति, मतलब destiny को change करना ना. आज मेरे भाग्य में तनाव है, चिंता है, मुझे अपने भाग्य में खुशी चाहिए. So I'll have to go backwards. कि ये जो टेंशन है ये कौन से बिलीफ सिस्टम से मेरे डेस्टिनी में आई है कि टेंशन इज नेचुरल. अब मुझे खुशी चाहिए, लेट मी ट्राई, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, लेट मी एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू बिलीफ सिस्टम. पहले बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल, अब हमने देखा पीस इज नेचुरल, ब्लिस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज नेचुरल. अब ये बिलीफ सिस्टम लिया,
1: पहले देखा था कि गुस्से से ही काम निकलता है, एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर इज नेचुरल. नेचुरली आप जब तक एक बार बोलो दो बार बोलो नहीं सुनेगा, डांट के बोल दिया काम हो गया.
0: राइट. कितने सारे सारा दिन बिलीफ सिस्टम है ना, जैसे आपने एक बार पहले भी शेयर किया था कि छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा है और अगर वो कुर्सी से टकरा जाए या किसी चीज से टकरा जाए तो उसको हम ये सिखाएंगे नहीं कि ये चलने में गलती थी, और ये लगती है छोटी बात कि हम उसको क्या कहेंगे, कुर्सी को हाथ मारेंगे, कोई बात नहीं लग गया ना कुर्सी गंदी,
1: और सब स्टाफ को डांटेंगे हटाओ कुर्सी, किसने रखी ये गंदी कुर्सी, बेटर नहीं रोना, चलो कुर्सी को निकाल दो,
0: तुम्हारी गलती नहीं, कुर्सी खराब. सीख लिया. अच्छा, बच्चे को खिलौना ला के दिया, बच्चे को मूवी ले गए, सर्कस ले गए, उसको सिखाया दिस इज हैप्पीनेस. वी टॉट द चाइल्ड दिस बिलीफ सिस्टम इज being transmitted from us to other people around us.
1: बच्चा तो मैंने देखा घास लेके खुश हो जाता है, मिट्टी का टुकड़ा लेके खुश होता है, कागज फटे पुराने गंदे कागज को देख के हंसता है, खुश होता है
0: बच्चा. अगर हम फर्स्ट देखे बच्चा तो वो तो ऐसे इतना ओरिजिनली इतना प्योर होता है. बच्चे को फियर नहीं पता होता, बच्चे को एंगर नहीं पता होता, बच्चे को जेलसी नहीं पता होती, बच्चे को कॉम्पिटिशन नहीं पता होता, बच्चे को कंपैरिजन नहीं पता होता. किसने सिखाया? छोटा बच्चे को हम प्री स्कूल में जाने से पहले सिखाते हैं कंपटीशन है, इतने सब बच्चे हैं उसमें आपको आगे जाना है. वी नेवर टीच द चाइल्ड योर ओन परफॉर्मेंस मैटर्स, वी से इट हैज टू बी इन कंपटीशन टू अदर पीपल. बच्चा एग्जाम देके घर आता है, सी हम कैसे सटल तरह से बिलीफ सिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं. बच्चा एग्जाम देके घर आता है, हम कहते हैं कैसा हुआ आपका पेपर आज, कैसा हुआ? कहना ठीक हुआ. सेकंड क्वेश्चन, ऑलवेज सेकंड क्वेश्चन, बाकी सबका कैसा हुआ?
1: बहुत अच्छा हुआ
0: ना. अब आपकी परफॉर्मेंस इन रेफरेंस टू बाकी सब, बाकी सबका बहुत अच्छा हुआ, फिर आपका क्यों नहीं अच्छा हुआ? और अगर उसने कह दिया नहीं बाकी सबका तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, फिर ठीक है. कॉम्पिटिशन, कंपेरिजन, ये बिलीफ सिस्टम हम सिखा रहे हैं. छोटे बच्चे को बड़ों के सामने खड़ा करा देंगे, गाना गा के सुनाओ, वो वाली पोइट्री सुनाओ, डांस करके दिखाओ, वो कर देता है छोटा सा बच्चा, सब लोग वाह वाह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. बिलीफ सिस्टम तभी से पड़ता है, परफॉर्मेंस गेट्स अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी अराउंड मी.
1: कंपैरिजन का तो कोई लिमिट ही नहीं रहा, वो देखो उसकी हेल्थ, देखो वो स्विमिंग में फर्स्ट, देखो ये. मैं अपने बच्चों को भी बोलता था कि کوئی کسی اور چیز میں فرسٹ ہے تو کیا وہ آپ کی طرح

0: होना है
1: तो नहीं
0: कितना कॉम्प्लिकेशन है.
1: एब्सोल्युटली. तो ये सारा दिन अब चेक करना है क्योंकि थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. जब ये क्लियर हो जाता है तो अब अपने भाग्य में अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति के पास जाना है.
0: मेरे पास.
1: अपने पास आना है और कहीं नहीं जाना है.
0: मेरे पास जाऊं.
1: एब्सोल्युटली.
0: आई लव दिस.
1: और कहीं नहीं जाना है और किसी से नहीं पूछना है. बस देख लेना है क्या चाहिए भाग्य में और उसको करते जाना है.
0: आज की सबसे अच्छी बात लगी है मुझे.
1: दिस इज बट वेरी इम्पोर्टेंट एंड दिस मेक्स अस वेरी पावरफुल कि मेरा भाग्य मेरी अपनी रचना है.
0: मैं कहाँ भीख मांगता फिरता हूँ.
1: अब जब हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू गेट नॉट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर. अब हु आर यू? आत्मा. मैं कौन हूँ? जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो मैं हूँ वो मुझे मिलेगा. तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, बंडल ऑफ संस्कार एंड कार्मिक अकाउंट.
0: आत्मा.
1: मैं कौन हूँ?
0: संस्कार.
1: आत्मा. आत्मा जिसके बहुत सारे संस्कार हैं एंड जिसके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट हैं.
0: जी.
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट भी आर व्हाट आई एम. मैंने ही क्रिएट किए थे.
0: और प्रेजेंट में भी तो बना रहा हूँ ना.
1: प्रेजेंट में बना रहा हूँ, पास्ट के कैरी फॉरवर्ड भी तो कर रहा हूँ.
0: तो दोनों भी है ना.
1: जब हम
0: वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ फिर बना रहा हूँ,
1: भी बना रहा हूँ. अब क्या होता है, कई भाई बहने फिर लिखते हैं कि हमने अच्छी थॉट क्रिएट की, क्लीन थॉट क्रिएट की, सिंसियरिटी, मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फिर भी वो डेस्टिनी वो नहीं बने जो चाहिए. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. ये मेरे साथ हर क्षण वर्क हो रहा है, ऑलवेज वर्क हो रहा है. अब कब वर्क हो रहा है? जब से मैं आत्मा इस यात्रा पर हूँ. सिर्फ मैं जब से इस शरीर में हूँ तब से नहीं. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी ये फॉर्मूला सिर्फ इस शरीर में प्रवेश होने के बाद नहीं वर्क हुआ मेरे साथ. थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी ऑलवेज.
0: ये पॉइंट मैंने कभी सोचा ही नहीं.
1: ऑलवेज. अब मैंने पिछले कॉस्ट्यूम्स में भी थॉट्स हैव रिटन माय
0: डेस्टिनी. अर्लियर जन्म.
1: अर्लियर जन्म मीन्स पहला कॉस्ट्यूम. कॉस्ट्यूम बदला था पर थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी इक्वेशन तो तब भी वैलिड थी. तब
0: वो
1: भी
0: सारा कैरी फॉरवर्ड हो क्या रहे?
1: वो तब से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. अब क्योंकि वो तब से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस एलिमेंट को अपने इक्वेशन के अंदर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. मेरा कार्मिक अकाउंट है कुछ. सपोज मेरा कार्मिक अकाउंट है कि मैं कुछ मैंने किया है पास्ट में जिस वजह से अब मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे उतनी सफलता नहीं मिलती है. नहीं मिलती है. किसी और का कार्मिक अकाउंट है, वो मेहनत नहीं करता ज्यादा, उसे सफलता आती जाती है, आती जाती है, मिलती जाती है. ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको डिलीट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं करना चाहिए. क्योंकि इग्नोर करने से अभी दुखी हो जाते हैं और अब दुखी होकर अब का थॉट्स भी चेंज हो जाता है. इफ लेट्स से मेहनत करूं सफलता नहीं मिल रही, मेहनत करूं सफलता नहीं मिल रही, पॉजिटिव थॉट्स भी अब क्रिएट कर रहा हूं, क्लीन भी हो, ऑनेस्ट भी हो, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही उतनी जितनी आई वांट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई वांट इतनी सक्सेस. मेरे को डाउट भी नहीं है कुछ भी उसमें, 100% कन्विक्शन है. सिचुएशंस फेवरेबल है, सब कुछ प्रेजेंट में 100% से ज्यादा परफेक्ट है, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे. क्योंकि एक फैक्टर और है और वो है मेरा पास्ट कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट. ये पास्ट कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट मेरी सक्सेस उतनी नहीं ला रहा जितनी मुझे चाहिए. अब ये देखकर मन डिस्टर्ब होता है. जैसे ही मन डिस्टर्ब होता है अब जो थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, दुख, चिंता, निराशा, होपलेस फीलिंग के व्हाट इज दिस, हाउ मच एम आई गोइंग टू वर्क हार्ड एंड नॉट गेट रिजल्ट. इफ एट दैट टाइम आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस के थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी. अभी जो मेरी डेस्टिनी हो रही है इसमें एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर मेरी पास्ट थॉट्स का भी है. एंड पास्ट मीन्स पास्ट पास्ट पास्ट पास्ट कार्मिक अकाउंट्स का भी है. उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और ये ध्यान रखना है कि उसको देखते हुए अभी जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें कोई नेगेटिविटी ना आ जाए उस वजह से.

0: तब वो डेस्टिनी इम्प्रूव हो जाए।
1: पॉइंट समझा नहीं, अगर मेरा पास कार्ड में अकाउंट है और मैंने पहले जो जो सोचा था जो भी किया था आज मेरी सक्सेस में वो बाधा डाल रहा है, तो मैं वीक नहीं हो जाऊंगा? ठीक है यार मैं तो फेल ही होना था मुझे,
0: नहीं
1: तो उल्टा मैं वो हो जाऊंगा डिप्रेस।
0: सपोज हम पैरामीटर रख के करते हैं इसको वापस, सपोज मुझे 100% चाहिए कुछ चीज में, इक्वेशन में 100%, सब फैक्टर्स परफेक्ट है, मेहनत भी परफेक्ट, मिलना चाहिए 100%, सब बोल रहे हैं आपको 100% मिलना चाहिए।
1: Yes. और मिल कितना रहा, 60-70?
0: चलो 50,
1: 50
0: ओके okay, मिला 50, फिर मेहनत की 50, फिर मेहनत की 50, अब परेशान अगर हो गए, अब चिंता में चले गए,
1: वहम में चले जाएंगे,
0: वहम में भी चले गए,
1: अंगूठी पहन लो ये पूजा करा लो,
0: अब जैसे उसमें गए तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस
1: कम हो गया,
0: कम हो रहा, तो लो कॉन्फिडेंस, अपसेट फीलिंग, इनसिक्योरिटी कि शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। अब जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट के, ये जो हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पास्ट का था, लेकिन जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट में क्रिएट होने लग जाए तो प्रेजेंट थॉट्स से भी डेस्टिनी है। तो जो 50 पर हम पहुंचे थे
1: 60 हो जाएंगे फिर,
0: 50 पर हम पहुंचे थे जब हमारी स्थिति अच्छी थी।
1: अच्छा मतलब और रिवर्स कर दिया?
0: नेचुरली नो, मेरी स्थिति बिल्कुल अच्छी थी
1: तो और गिर गए।
0: सी आई एम 100%
1: 50 से 40, 40 से 30, हम तो उल्टा गियर में चले गए,
0: नेचुरली हो जाएगा।
1: हाँ।
0: क्योंकि आई एम एकदम कॉन्फिडेंट, मैंने मेहनत की सब कुछ किया लेकिन 50 मिला, मतलब जब मेरी स्थिति परफेक्ट थी
1: तब
0: तो मुझे
1: मिला।
0: 50 मिला,
1: और जब मैं फुल ऑफ नेगेटिव हो गया, निराशा आ गई और लोगों में जाके हाथ दिखाने लग गया, पूजाएं कराने लग गया, अंगूठियां पहनने लग गया,
0: अब मेरी थॉट्स नेगेटिव होने लग गई हैं, तो अब मेरी पास्ट कार्मिक अकाउंट उधर ही है, उसी पैरामीटर पर है, लेकिन प्रेजेंट थॉट्स
1: और नीचे गिरा रहे हैं
0: तो मेरे को 50 से 40 हो जाएगा और फिर वो मेरे पर प्रभाव डालेगा।
1: ये
0: तो 40 से 30, क्या
1: दिस इज नेचुरल ना? 100 बार फेल होता है बंदा तो गांव गांव गली गली दरगाह से मंदिर से चर्च से गुरुद्वारे से हर जगह जाता ही है ना।
0: सो इस इक्वेशन को याद रखना, लाइक थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, 50 को एक्सेप्ट करना पहले,
1: 40 नहीं होने देना।
0: अगर 50 पे भी बने रहे, लेट्स से
1: फाइट करने वाले,
0: तो नो, लेट्स से आई रिमेन एट 50 फॉर एवर, फर्स्ट इज इन दैट ओके?
1: मच बेटर देन गोइंग टू 20।
0: दिस इज इट,
1: ये बड़ी अच्छी लगी बात।
0: दिस इज इट,
1: वेरी नाइस,
0: एक्सेप्टिंग कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, दिस आई हैव टू एक्सेप्ट,
1: मैं अपना बेस्ट देकर 50 पे तो हूँ और मेरे पास कार्मिक अकाउंट जितना भी डिस्टर्ब करे प्रेजेंट में मैं अच्छा बनाऊंगा।
0: एब्सोल्युटली, और
1: मतलब ये पॉजिटिव बात है,
0: ये पॉजिटिव है, और जो इतना डिटर्मिनेशन से इस पॉजिटिव पे चलेगा ना वो 50 से 60 पे जाएगा, क्योंकि उसने प्रेजेंट फैक्टर तो बहुत पावरफुल है ना। अगेन मैं डिक्लाइन पे ना चला जाऊं, अगर मुझे ये सारे पैरामीटर्स पता होंगे ना कि ये है मेरी प्रेजेंट क्वालिटीज, सपोज प्रेजेंट मेरे अंदर ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क, यू नो समबडी कैन बी लाइक दैट, मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, परिस्थितियां फेवरेबल है, सब कुछ अच्छा है, तब मुझे 50 मिल रहा है, क्योंकि इन सब फेवरेबल सिचुएशंस और क्वालिटीज में एक फैक्टर है पास्ट कार्मिक अकाउंट जो मैंने ही क्रिएट किया था मेरी थॉट्स के हिसाब से, वो फैक्टर थोड़ा सा मेरा अभी अनफेवरेबल लग रहा है, 4 फैक्टर्स फेवरेबल, एक फैक्टर थोड़ा सा उसको नीचे खींच के 50 पे ले आता है। लेट मी रिमेम्बर, मेरे प्रेजेंट 4 बहुत फेवरेबल हैं अभी भी, एक अनफेवरेबल है, लेकिन उस एक अनफेवरेबल फैक्टर को प्रेजेंट के फेवरेबल पर ना प्रभाव डालकर, नहीं तो मेरे सारे 5 अनफेवरेबल हो जाएंगे। मैंने डीमोटिवेट हो गया, सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया, दूसरों को देखकर जेलेसी भी क्रिएट कर ली, इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गया, तो पास्ट अनफेवरेबल था, अब प्रेजेंट अनफेवरेबल हो जाएगा। अगेन थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी,
1: ब्यूटिफुल,
0: दिस इफ आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस, आई हैव टू डू दैट, पास्ट इज अ वेरी पावरफुल डोमिनेटिंग फैक्टर।
1: तो सिस्टर ये बात बहुत पसंद आई मुझे कि पास्ट है,
0: है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
1: एक्सेप्ट नहीं, देखिए मैंने नई गाड़ी खरीदी आज, मैंने खुद ही एक्सीडेंट

0: कर दिया, उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि कोई मेरा दोस्त चला के मार दे या ड्राइवर ठोक के आ जाए तो मैं चिढ़ता रहूंगा। जब मैंने समझ गया, जैसे आपने समझा दिया मुझे अभी, कि जो कुछ मेरे पास मैंने ही किया था, मेरी वजह से ही जो 50 पे अटका हूँ, तो एक तो वहाँ इतना गुस्सा और इतनी टेंशन और इतनी वो परेशानी नहीं, एक्सेप्टेंस आ गया। अब यहाँ से मुझे 50 का 60 करना है और 40 पे नहीं जाना है कि भाई हाथ दिखाने जाऊं, कुंडली दिखाने जाऊं, पूजाएं करूं, नजर उतारूं।
1: नॉट ओनली दैट, यहाँ पर ब्लेम, निराशा, निराशा नहीं आ रही,
0: निराशा के साथ साथ मैं ब्लेम गेम मेरा दूर हो गया।
1: सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
0: कोई और मुझे गिरा रहा है,
1: एब्सोल्युटली
0: लोग मुझे गिरा रहे हैं, यहाँ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, यहाँ कोई दूसरे लोग सिफारिश से आगे बढ़ गए मुझे पीछे।
1: वेरी ब्यूटीफुल,
0: ये सारी मतलब आपसे बात करते करते ये मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं।
1: ये सारी चीजें मेरे प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है, ये सारे थॉट्स जो आपने बोले, दूसरों से कंपैरिजन, ये सोचना कि दूसरे मुझे गिरा रहे हैं या दूसरे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, जिस ये सारे मेरे प्रेजेंट के थॉट्स,
0: मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है जो कहते हैं आम भाषा में,
1: ऑफिस में बोलते हैं, ये मेरी प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में ले जा रही
0: है। एक्सेप्टेंस हो गया, ब्लेम करना छोड़ दिया, अब हम अपनी थॉट्स को
1: और पावरफुल बनाए जिधर अभी है उससे, और जब भी अगर परिस्थिति अनफेवरेबल होगी, यू नो सिचुएशंस मेरी फेवर में नहीं जा रही है और फिर भी मैं स्ट्रांग रहूं, तो हम अपनी शक्ति को कितना ऊपर उठा के ले जाते
0: हैं। ये स्ट्रांग कैसे रहूं मैं अगले एपिसोड में पूछूंगा आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, ओम शांति।
0: थैंक यू सो मच, ओम शांति, नमस्कार।
2: लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट मीन यू गेट व्हाट यू वांट, it actually means you get what you are. Our thoughts and words are what we are. These vibrate to the universe and we get them back. What you are is a soul carrying sanskars and karmic accounts. So what we are going to get will be according to our sanskars and karmic accounts. Thoughts create destiny is always true for the soul, whether in this costume or an earlier one. Costumes may change, but the thoughts created then will still create our destiny. Destiny is created according to our qualities and skills of the present and also karmic accounts of the past. Even if we are not getting the desired result, do not let any of the present qualities and karmas decline. If we create jealousy, insecurity, anxiety, then we are creating a negative present. Accept the past, carry forward and keep yourself strong and motivated in the present. If the present remains powerful and positive, we will gradually settle the past and create beautiful karmas which will influence our present and our future.
3: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल, आप सभी रेडियो पुलेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुलेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे, नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे, रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ।

0: ऐसे पररत काव्य भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ, नोन मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, कम्भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
1: अच्छा,
0: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है।
1: अच्छा,
0: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say.
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपके बीच लेकर आई हूँ ज्ञान की कुछ बातें। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं जिसकी एक सुंदर सी अभिव्यक्ति है, क्षमा। हर मनुष्य की अपनी एक अभिव्यक्ति होती है जिसमें क्षमा एक मुख्य अभिव्यक्ति है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि मेरे बहुत पहले मेरे पास एक मेरी एक फ्रेंड है जो कि जैन धर्म से बिलोंग करती है। उसके कुछ मैसेज आए जिसमें उनके द्वारा पूरे साल किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या न देना और दूसरों को मतलब क्षमा याचना की गई थी। तो दरअसल जैन पंथ का एक पर्युषण पर्व मनाया जाता है जिसके इसके लिए 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा होता है, जिसके अंतर्गत सभी मातावलंबी जो है क्षमा की भावना रखने का प्रयास करते हैं। हम पाते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में भी अपने गुनाहों की तौबा करने की और सभी की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए शब इबारात पर्व, जिसका अर्थ होता है मुक्ति की रात, मनाया जाता है। उनका मानना है कि इस रात को साल भर का लेखा जोखा अल्लाह के लिए पेश किया जाता है। लोग रात भर जाकर इबादत करते हैं। और ईसा मसीह जी ने भी उनका भी कहा है कि वह बाइबल में इस प्रकार से उनका मिलता है कि जिन लोगों ने पाप तुम क्षमा करोगे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब जिन लोगों के पाप को आप क्षमा करेंगे तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिन लोगों के पाप तुम क्षमा नहीं करोगे तो वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब ईसा मसीह जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। तो यानी कि हर धर्म में, हर पंथ में क्षमा की बात करता ही है। हर धर्म क्षमा मांगे

कोई छोटा नहीं हो जाता। कहा तो ये भी जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। नहीं, परंतु हम समझते हैं कि बड़ों को ही नहीं छोटों को भी क्षमा चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं अब तक पश्चिमी देशों में से सुनने में आती थी, वैसी ही अब भारत वर्ष में भी सुनाई देने लगी है। एक नगर में एक 9 वर्षीय स्कूली छात्रा द्वारा अपनी शिक्षिका की चाकू से हत्या कर दी गई। इसमें तो मतलब इसमें तो यही पता चलता है ना कि क्षमा करने और क्षमा लेने का महत्व छोटे बड़े सभी के लिए बराबर का है। क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए विशाल हृदय चाहिए, सभ्य और विराट हृदय। संस्कृति की एक सुंदर अभिव्यक्ति है क्षमा। क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए भी विशाल हृदय चाहिए। सामान्य शिष्टाचार के कारण या बिना दिल की गहराई के किसी से छोटी मोटी भूल या गलती होने पर क्षमा मांग लेना या कर देना या खेद प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रास्ते चलते कभी स्पर्श हो तो या किसी की बात समझ न आने पर, अन्य दैहिक कार्य व्यवहार में छोटी गलती होने पर सॉरी कहना अच्छे संस्कार है। परंतु होता क्या है जब किसी से जानबूझकर अपमानित करने के संकल्प से काम क्रोध लोभ अहंकार या विकार व शारीरिक दुर्व्यवहार किया या हृदय भेदी शब्द वाणों की बौछार की, तब क्या हम दिल के स्नेह की गहराई से क्षमा कर पाते हैं क्या? गलती फिर न होगी ऐसा स्वीकार करने के बाद भी गलती करने पर क्या स्नेह का सागर बन स्नेह की रत्नों का भेद कर दे सकते हैं क्या? हाँ, वृक्ष की तरह पत्थर स्वीकार करके फल दे सकते हैं क्या? यदि इसका उत्तर हाँ है तो सचमुच हम क्षमा और स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा शिव की सच्ची देवी संतान है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आगे की चर्चा हम जारी रखते हुए एक सुंदर अभिव्यक्ति क्षमा की ओर। सक्षम होते हुए भी क्षमादान महानता है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अर्थात क्षमा उसे ही शोभा देती है जिसके पास विश्व हो। जहाँ हम सक्षम नहीं थे वहाँ मजबूरी वश दिल पर पत्थर रखकर किसी को क्षमा कर देना या क्षमा मांग लेना, यह भी अच्छी बात है क्या? परंतु सक्षम होते हुए भी किसी के दुर्व्यवहार व्यवहार पर भी उसे ना समझ समझ कर क्षमा दान देना, आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भावनाएं स्वतः ही दिल की गहराई को से जागृत हो जाना वास्तव में महानता है। ऐसे सच्चे संत वास्तव में उस चंदन की लकड़ी की तरह है जो सर्वगुणों से सुगंधित है, जिस पर अनेक विषधर लिपटे रहने पर भी वह सुगंध देने की गुणों का त्याग नहीं करती। एक है समदर्शी समव्यवहारी और एक है समदृष्टा ही क्षमाशील। जितना दुरूह है काम की कालीमा के वश, दुशासन कीचक या भस्मासुर वन नारी का अपमान करने पर क्षमा कर पाना, धरती माँ की तरह गड्ढा करने वाले को भी धारिणी बनकर रत्न फल प्रदान करना कितना विराट हृदय चाहिए। आज गाली देने वाले को गले लगाना तो दूर की बात है, जिन्हें हम स्वजन मानते हैं उनके प्रति एक शब्द भी किसी अन्य द्वारा कहे जाने पर अधिकतर हम शुभ भावना के पुष्प छिपा कर रख लेते हैं। कई बार बात तक करना पसंद नहीं करते, वह जीवन पर्यंत वह क्रम चलता है, तो यह तो क्रम चलता रहता है। मेरा कोई अपना नहीं, कोई पराया भी नहीं, सभी के लिए समदर्शी समव्यवहारी समदृष्टा भाव वाला ही किसी को भी किसी भी गलती पर क्षमा कर सकता है। एक होता है दया भाव, अपकारी पर भी उपकार करने की भावना दया भाव से ही जागृत होती है, होगी ना? अभी नादान है, ना समझ है, भले ही बुद्धिमान है, लेकिन कहते हैं किसी अवगुण की वशीभूत है। ऐसे स्मरण मात्र से गलती करने वाले को क्षमा करने के लिए का भी भाव आ जाते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक साधु पुराने से फटे हुए कपड़े पहनकर राग शरीर में लपेटे एक गांव से गुजर रहा था। गांव के शैतान बच्चों ने उस पर रेत कंकड़ फेंकने शुरू कर दिए, परंतु साधु ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और चलता रहा। तो आगे एक व्यक्ति ने भी एक पत्थर बच्चों की तरह साधु के ऊपर फेंक दिया जो सिर में जाकर लगा। साधु रोने लगा। एक समझदार व्यक्ति ने पूछा कि जब बच्चे धूल कंकड़ मार रहे थे तब आपने कुछ भी नहीं कहा, जब अब आप रो रहे हैं तो क्या? कहता है साधु ने कहा कि बच्चे तो नादान थे, ना समझ थे, परंतु यह तो बड़ा था, समझदार था। हम समझते हैं कि ऐसे स्थिति में समझदार और उम्र में बड़े में को नादान समझकर क्षमा कर देने में बड़ी आत्मिक संतुष्टि होती है। एक होता है विश्व बंधुत्व के भाव, एक होता है विश्व बंधुत्व के भाव मतलब किसी के द्वारा क्रोध में आकर दुर्व्यवहार या शारीरिक उत्पीड़न किए जाने पर क्षमा केवल वही कर सकते हैं जो समस्त संसार को अपना समझते हैं, हर कदम पर शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने ही माता पिता बंधु बहन बांधव द्वारा कुवचन कहे जाने पर जिस प्रकार सहन कर लिया जाता है उसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भाव जागृत होने पर क्षमा स्वतः ही कर दिया जाता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। क्षमा एक सुंदर अभिव्यक्ति, सभी के प्रति सम्मान भाव, सम्मान भाव या समान भाव होने पर ही क्या होता है, अवगुण जीत पर नहीं आएगा, यानी कि और क्षमा कर सकेंगे, मतलब परम पिता परमात्मा शिव के अव्यक्त महावाक्यों के अनुसार सम्मान देने वाला सबके दिल में मान्य स्वतः बन जाता है। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को सम्मान देना देना नहीं, लेना है। ब्रह्मा बाबा ने आदि देव होते हुए भी, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सभी बच्चों को सदा सम्मान दिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह के बीज होने। विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी आत्मा भी हम तभी बन सकते हैं, तभी हम इसका अनुभव करते हैं जब हम आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। सम्मान देने वाले बच्चे ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान वाला सम्मान में सहज ही स्थित हो सकता है, क्योंकि जिनको सम्मान देता है उन द्वारा दिलों की क्या होती है, दुआएं मिलती है जो सहज सम्मान याद में दिलाती है। और अगर सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं तो सम्मानदाता बनो। हाँ, कोई कैसा भी है इसे सम्मान देना है, ऐसे नहीं कोई सम्मान दे तो मैं दूं, नहीं, यह तो बिजनेस हो गया ना, दाता नहीं हुआ। सम्मान दो तो मन में संकल्प रहता है, हाँ, यह हो, यह बदले में, यह ऐसा करे, वह करने लगे लग जाए। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करना। एक होता है, एक है क्षमा करना, दूसरा है क्षमा मांग लेना। तो इसमें क्या होता है, केवल क्षमा करना ही नहीं लेकिन गलती होने पर क्षमा मांग लेने के लिए देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। हाँ, और हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हम तो बड़े हैं, यह कोई हमारा बॉस है क्या, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचने वाले लोग गलत होने पर भी क्षमा मांगना तो दूर, झुकना भी पसंद नहीं करेंगे। केवल मुख द्वारा क्षमा मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु हृदय से अपनी कमी को स्वीकार कर क्षमा मांग लेने वाले ही अधिक प्रकार के टकराव और तनाव से सहज मुक्ति मिल जाती है उन्हें। गलती स्वीकार करने पर गलतियों को कई बार क्या होता है, माफ भी हो जाती है। कितनी गलतियां जो होती है वो माफी भी हो जाती है उसकी, जो दिल से अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। और जिन्हें पश्चाताप होता है ऐसे क्या होता है, सहज हृदय माफी मांगने में संकोच करते हैं, नहीं करते हैं। और लोग उन्हें क्या करते हैं, उन्हें माफी कर देते हैं। कभी कभी हम गलतियों पर पर्दा डालने के लिए क्या करते हैं, झूठ छल कपट का सहारा लेते हैं। बाद में उस गलती को सार्वजनिक हो जाने पर हम क्या करते हैं, कोई भी माफ करने पर संकोच करता है। लोग भले ही स्वयं कैसे भी हों, हाँ, परंतु दूसरों से सच्चाई की अपेक्षा अवश्य रहती है। नारियों में भक्त शिरोमणि मीरा हो या पश्चिमी विद्वान सुकरात, दोनों ने ही जहर के क्या कहते हैं, जहर के प्याले को खुशी से पी लिया था और क्षमा कर दिया।

प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक आदिदेव ब्रह्मा बाबा ने समाज में इतनी प्रतिष्ठा उनकी होते हुए भी इस ज्ञान यज्ञ का विरोध करने वालों, स्वयं को गाली देने वालों, लाखों भवन में आग लगाने वालों को, कलंकित करने वालों को भी क्या किया, क्षमा किया। लोगों की एक धारणा यह भी है कि भारत के गुलामी राजा पुरु और पृथ्वीराज चौहान द्वारा आक्रमणकारियों के लिए नरमी और क्षमा के कारण हुई, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी को क्षमा करने से नहीं, वरन ऐसा होता है आपसी वैमनस्व, और एक होता है कि के कारण लोगों के द्वारा उनके साथ किए गए एक विश्वासघात के कारण ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं क्षमा एक सुंदर अभिव्यक्ति की ओर। दिल को मिलता है बड़ा सुकून, दिल को मिलता है सुकून किस चीज से? क्षमा मांग लेने से और फिर क्षमा प्राप्त हो जाने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जीवन कमल पुष्प समान खिल उठता है, मन मयूर नाच उठता है और शारीरिक बीमारियों पर भी नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति साधु के पास पहुंचा और कहा कि वह बहुत दुखी है। साधु जानता था कि इसने बहुत सारे अपराध किए हैं। उसका हाथ देखने के बहाने हाँ कहते हैं उन्होंने बताया कि आपकी आयु अब केवल एक पक्ष यानी कि 15 दिन ही शेष रह गए हैं, एक सप्ताह बाद आ जाना, हाँ तुम्हें सुख का मार्ग बता दूंगा। वह व्यक्ति चला गया, परंतु जाने के बाद उसने यह सोचकर कि अब तो जाना ही है तो क्यों ना जिससे भी धन का हिसाब है वह चुका दिया जाए, जिस चीज के साथ अपराध हुए हैं उनसे माफी मांग ली जाए। उसने यही किया, सातवें दिन खुशी खुशी पहुंचा और साधु को बताया कि जिस चीज से के साथ मैंने गलत किया था या उनसे मैं माफी मांग ली है और जिनसे भी मेरा हिसाब किताब था हाँ वो सारे हम चुका दिए हैं और अब मैं पूर्णतः क्या हूँ, निश्चिंत हूँ और खुश हूँ, मौत चाहे अब आ जाए कोई चिंता नहीं। साधु ने कहा कि अब आप निश्चिंत होकर जियो, यही सुख का मंत्र है, तुम्हारी आयु अभी बहुत शेष है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने मन में अगर किसी के प्रति कुछ गलत भाव रखते भी हैं और हमें पता रहता है कि हमने ये गलतियां की तो उसकी चुप्पी हो जाने से हम खुद ब खुद क्या होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंत में यही निवेदन है कि

यदि हम अवश्य भावी महाभारत को किसी के क्षमा मांगने और क्षमा करने मात्र से रोका जा सकता है तो हे आत्मन क्या करना है। अभी तक जो तुमने लोगों के दंश सहे हैं उन्हें भुलाकर सभी को अपना समझकर स्वयं को और सृष्टि की जितनी भी जीवात्माओं को थोड़े दिनों की हाँ थोड़े दिनों का मेहमान मानकर क्षमा करते चले और जाने अनजाने में भी किसी के प्रति हाँ कुछ स्वयं से गलत हुआ है उसे हृदय से स्वीकार कर माफी क्या करना है माफी लेते चले तो भाव समय द्वारा भी भर जाएंगे और वे हमारी शुभ भावना क्या होगा शुभ भावना रूपी मरहम से तत्काल ही भर जाएंगे। हाँ किसी ने कितना अच्छा कहा है कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी आसान कर ली किसी को माफ किया किसी से माफी मांग ली। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। हाँ तो तब तक के लिए गाते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए नमस्कार।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: हाय हाय हाय तुम हो हसी कहाँ के
1: हम चांद आसमां के
0: हाय हाय गुरूर इतना
1: हाँ हाँ गुरूर इतना
0: उफ ये अदा है ये नया

लेना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।